सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। स्टूडियो घड़ी में इस वक्त सुबह के 7 बज रहे। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक संत ने एक विश्वविद्यालय आरंभ किया। इस विद्यालय का उद्देश्य था ऐसे संस्कारी विद्यार्थियों का निर्माण जो समाज के विकास में सहभागी बन सकें। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि को निर्धारित वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की तभी सेवा कर सकते हैं जब हमारे पास उनके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ छात्रों की राय ये भी थी कि सेवा के लिए संसाधन नहीं भावना का होना जरूरी है। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए आया ही नहीं था। ये देखकर अन्य विद्यार्थियों और शैक्षिक सदस्यों में रोष उत्पन्न होने लगा। संत सबको शांत कराते हुए बोले, प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए मैंने प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उस द्वार से अंदर आए पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। ये अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हो, वो पुरस्कार पाने के योग्य नहीं है। चरण छोड़िए, आचरण पकड़िए।
0: जीवन सौरभ।

रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। अलूरी सीताराम राजू, इनकी जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम वतन का राग।

इतिहास के पन्नों से। यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। खेरला का गौण राज्य। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। युग संवाद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:00। युग वशिष्ठ, काल का प्रभाव और जीवन की अन्वियतता विषय पर होगा कार्यक्रम। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम भारत विभूति। मनीषा चतुर्वेदी और दीपेश बरगले के स्वर होंगे कार्यक्रम में। सुबह 10:00 का समय होगा रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा का। हिंदुस्तान हमारा, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। विजय लक्ष्मी पंडित पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सुर सागर सुनिए सुबह 11:00। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने। सुबह 11:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: अत्राते रूपमुत्तम पश्यम जिगीष माणमिष आ पदे गोह यदा ते मर्तो अनु भोग मानडा दिद्ग्रसिष्ठ ओषधी रजी गह। हे अश्व, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्य मंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। अनुत्वा रथो अनुमरियो अर्वन्ननु गावोनु भगह कनीनाम अनुव्राता सस्तव सख्य मीयुरनु देवा ममिरे वीर्यन्ते। हे अर्वन, रथ आपके अनुगामी है। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौएं हैं। मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया है। हिरण्य श्रृंगो यो अस्य पादा मनोजवा इवर इंद्र आसीत देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्र देव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान हैं। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। ईर्मान्तासः सिलिक मध्यमासः सम शूरणासो दिव्यासो अत्याह हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदा क्षिशुर दिव्य मज्ममश्वाह। जब पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले मध्य भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। तव शरीरम पतयिष्ण वर्वन्तव चित्तम वात इव ध्रजीमान तव श्रृंगाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति। हे चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागाच्छसनम वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः अजह पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात कवयो यंतिरेभाः। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व ऊपर की ओर देवमार्ग को जाता है। अज आगे चलता है, नाभि उसका अनुगमन करता है, पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं। उपप्रागात् परमं यत् सद्यस्थ मर्वा अच्छा पितरं मातरं च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुसे वार्याणि। शक्तिशाली चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उत्पन्न करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम लड़े अपनी तादाद से हथियार बंद राजाओं के खिलाफ, समय की पगडंडियों पर चलते हुए इसी तरह इतिहास रचते गए। पुरखों के नाम पत्थर गाड़कर हम तैयार होते गए नए मोर्चे पर लड़ाई के लिए। इस लड़ाई में हमारे जंगल की कहानी है, हमारी खेती की कहानी है, अपनी धरती को बचाने की कहानी है। स्वाधीनता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में ऐसी ही एक कहानी के महानायक थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वो मद्रास वन अधिनियम सन 1882 के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए और रंपा विद्रोह के प्रणेता बने। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई सन 1897 को विशाखापट्टनम के एक गांव में हुआ था। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचि से ज्योतिष शास्त्र के साथ ही एक वैद्य के रूप में भी स्वयं को शिक्षित किया। इस कारण जनजातीय समाज में उनका बहुत आदर था तथा वो बहुत लोकप्रिय थे। राजू के पिता का नाम अल्लूरी वेंकर रमा राजू और माता का नाम सूर्य नारायणम्मा था। कम आयु में ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। लेकिन बचपन में ही पिता ने उनके भीतर ये कहते हुए क्रांतिकारी संस्कार डाले थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है और वो लगातार हमें लूट रहे हैं। पिता का साथ तो छूट गया, लेकिन उनकी बातें राजू के मन में बनी रही। टेलर हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मिसेज LVN कॉलेज विशाखापट्टनम में प्रवेश लिया, लेकिन चौथे वर्ष उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आसपास के लोगों के दुख दर्द देखने लगे। 2 वर्ष तक उन्होंने सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में योग और अध्यात्म साधना की। वो वहाँ के स्थानीय लोगों का सटीक उपचार करते, भविष्य की जानकारियाँ देते। एक वैद्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। जनजातीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव था। वो एक पवित्र आत्मा और उद्धारक की तरह पूज्य हो गए। यही वो समय था जब राजू ने गिरिजनों की पीढ़ी को समझा। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया।

अंग्रेजी राज के विरुद्ध क्रांति के बीज सीताराम राजू के मन में शुरू से ही दबे हुए थे। जनजातीय समाज की दशा और गांधी जी के प्रभाव ने उसे और अधिक पल्लवित होने का अवसर दिया। सीताराम राजू इस बात पर बल देने लगे कि उनके लोग मदिरापान ना करें, स्वच्छता से रहें, स्वावलंबी हों और अपने विवादों का निपटारा पंचायतों में करें, ना कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। असहयोग आंदोलन के समय वो भी इस अभियान से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया, तब सीताराम राजू ने सशस्त्र क्रांति की ओर अपनी दिशा की। उन्होंने अपना बैरागी स्वरूप त्याग दिया, मंदिरों में उपदेश देने, कीर्तन करने बंद कर दिए और अपने प्रदेश के जनजातीय समाज को सशस्त्र क्रांति के लिए संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया। अब राजू के संगठन का विस्तार दृढ़ गति से होने लगा। अपने लोगों की भलाई और सामाजिक हितों के लिए समर्पित होकर कार्य करते थे वो, इसीलिए अपने क्षेत्र में वो देवता की तरह पूजे जाते थे। लोगों ने अब उनके राजनीतिक विचारों पर भी विश्वास किया और उनकी सेना में भर्ती होने लगे। संपूर्ण क्षेत्र उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहाड़ियों वाला ये क्षेत्र छापामार युद्ध शैली के लिए भी उपयुक्त था। उनके प्रभावशाली लोगों का सहयोग अब उन्हें प्राप्त था। गुदीम के दो प्रभावशाली नेता गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डोरे उनके लेफ्टिनेंट बन चुके थे। राजू की सेना में डोरे बंधुओं के शामिल हो जाने से उनकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। अब समस्या हथियारों की थी। तीर कमान आदि तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे, लेकिन इनसे पुलिस बल का सामना नहीं किया जा सकता था। अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने के लिए राजू ने पहला बड़ा हमला रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली पुलिस थाने पर किया। उस हमले में उनके साथ 300 लोग थे। हमला करके उन्होंने बहुत सी राइफलें और पिस्तौल लूट ली। अगला हमला कृष्णा देवी पेट के थाने पर किया गया। इसी तरह थानों से अस्त्र लूटने का काम आगे बढ़ता रहा। सीताराम राजू की सक्रियता ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अब तक सीताराम राजू के संगठन की घटनाओं को अंग्रेज सामान्य लूटपाट समझ रहे थे। लेकिन थानों से शस्त्र एकत्रित करने की इस घटना ने उन्हें नींद से जगा दिया। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये सुसज्जित सेना के साथ अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का एक अभियान है। ये स्वराज की लड़ाई है, स्वाधीनता समर है।

अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में मनसबदारों की मनमानी, उनके भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के रंपा जनजातीय समाज के लोगों का विद्रोह लगातार चलता रहा। सीताराम राजू सन 1882 के मद्रास वन अधिनियम के दुष्प्रभावों से अत्यंत आहत थे। जंगलों में जनजातीय समाज की मुक्त आवाजाही पर लगे प्रतिबंध ने सभी को आक्रोशित कर रखा था। रंपा विद्रोह के नेतृत्व के कारण स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम वीरूण अर्थात जंगल का नायक कहने लगे थे। राजू की गतिविधियों से परेशान ब्रिटिश शासन ने स्कॉट और आयर नाम से दो लेफ्टिनेंट नियुक्त किए। इन अफसरों की सेना से 24 सितंबर सन 1922 को राजू का मुकाबला हुआ। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में स्कॉट और आयर दोनों मारे गए। खुशी से सीताराम राजू ने क्षेत्र में इश्तिहार लगवा दिया कि अंग्रेजों को अब आंध्र भूमि छोड़नी ही होगी। तिलमिलाई ब्रिटिश सत्ता ने अपना अभियान और तेज कर दिया। सीताराम राजू को पकड़वाने या मारने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन सीताराम राजू अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। अपने लोगों के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उनका भेद देने के स्थान पर उनकी सेना में भर्ती होते जा रहे थे। राजू ने कई और स्थानों पर हमला किया और हथियार लूट लिए गए। इसी बीच बाबा पृथ्वी सिंह आजाद को अंडमान से वापस लाकर आंध्र प्रदेश की जेल में रखे जाने की सूचना उन तक पहुंची। दरअसल गदर पार्टी के सदस्य पृथ्वी सिंह आजाद अंडमान की जेल में आजीवन कारावास की सजा कर रहे थे। वहां उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि हार कर जेलर ने उन्हें स्थानांतरित करने की सिफारिश की। जब पृथ्वी सिंह आजाद को आंध्र प्रदेश की जेल में रखने के लिए ले जाया जा रहा था, तब भागती ट्रेन से वो कूदकर फरार हो गए। कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर उन्हें आंध्र प्रदेश की जेल में रखा गया। सीताराम राजू ने हमला करके उन्हें आजाद करा देने का ऐलान कर दिया। राजू की शक्ति और संकल्प को अंग्रेज भली भांति जानते थे, इसीलिए जेल की सुरक्षा के लिए आसपास के कई थानों से पुलिस बुलवा ली गई। इधर राजू ने अपनी सेना को कई दलों में बांटकर उन सभी स्थानों पर एक साथ हमला बोल दिया और हथियारों का बड़ा जखीरा अपने अधिकार में ले लिया। अब उनका काम और तेजी से चल निकला। परेशान ब्रिटिश शासन ने अब असम राइफल्स नाम की पूरी सेना राजू के विरुद्ध लगा दी। 6 मई सन 1924 को राजू के दल का मुकाबला असम राइफल के साथ हुआ। भीषण संघर्ष हुआ। सीताराम राजू के दल को बहुत हानि हुई, लेकिन घायल अवस्था में राजू बच निकले। अगले दिन यानी 7 मई सन 1924 को सीताराम राजू घायल अवस्था में ही गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे कि फौज ने उन्हें घेर लिया। राजू के पास उस समय सीमित संसाधन थे। युद्ध सामग्री समाप्त होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फौज की संख्या भी उस समय कम ही थी। अंग्रेजों को डर था कि कोतवाली ले जाते समय सीताराम राजू के लोग हमला करके उन्हें छुड़ा लेंगे। इसी विचार से फौज के गोरली नामक एक अफसर ने राजू को एक पेड़ से बांधकर गोलियों से भून डाला। भारत के एक सच्चे सपूत ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमन है ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। वंदे मातरम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी, नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था, उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 15वीं कड़ी में पहुंच गए हैं।

0: 15वें एपिसोड में भी इस बार भी हमारे साथ हैं जानी मानी पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: आज पूजा जी हमें किस बारे में बताएंगे वो तो हम जल्दी ही जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा पिछली बार के बारे में बता देते हैं। पिछली बार पूजा जी ने हमें देवगढ़ के किले के बारे में बताया, उस किले की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी जानकारी दी, किस प्रकार सुरक्षा दीवारें थी, किस तरह दोहरी सुरक्षा दीवारें थी। बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत एक अनूठी जानकारी पूजा जी ने हमें दी कि वहां मैला ढोने की परंपरा नहीं थी, उस किले के ऊपर भी टॉयलेट्स का निर्माण, शौचालयों का निर्माण था और जहां से जो गंदगी थी, जो मैला था, वो सीधे किले के बाहर प्रवाहित कर दिया जाता था। तो एक बहुत एक अनूठी बात ये थी। और उसके अलावा एक बहुत अनूठी बात जो पूजा जी ने हमें बताई कि उस किले में कुछ ऐसी जगहें थी जहां से यदि आवाज लगाई जाए, कुछ आवाजें जो संकेतक आवाजें थी, जो संकेत के रूप में भेजी जाती थी गुप्तचरों द्वारा, वो 5 किलोमीटर दूर से यदि वो आवाजें निकाली जाती थी किले के बाहर नीचे से, तो वो उस जगह पर सुनाई देती थी। और न सिर्फ सुनाई देती थी, उस जगह से निकाली गई आवाजें वापस 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच भी जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हमें पूजा जी दे रही हैं। और आज पूजा जी हमें किस बारे में बता रही हैं, गोंड राज्य के किस किले की हम बात करेंगे, किस जगह की बात करेंगे, पूजा जी से ही जानते हैं।
1: अभी तक हम लोगों ने सुना कि मध्य भारत में, एक तो हमने गढ़ामंडला राज्य के बारे में चर्चा की
0: जी,
1: इसके बाद हमने देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में जाना, और एक और राज्य था चंद्रपुर का गोंड राज्य, ये महाराष्ट्र में है। पर मध्य प्रदेश में भी गोंडों का एक और राज्य था जिसको कि खेरला का गोंड राज्य कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: जो वर्तमान में बैतूल है वहां पर इनकी राजधानी हुआ करती थी।
0: अच्छा।
1: तो जो खेरला का राज्य था वो आज के बैतूल जिले और उसके आसपास जो हरदा जिला है, नर्मदापुरम है, यहाँ तक फैला हुआ था।
0: अच्छा।
1: और ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर तो नर्मदा और ताप्ती जैसी
0: जी,
1: बड़ी नदियां बहती हैं और इसके साथ ही सतपुड़ा का घना जंगल है, तो वन संपदा भी भरपूर है। और इसके साथ ही ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर भी था, इसलिए भी ये क्षेत्र बड़ा संपन्न था और महत्वपूर्ण था, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से ही एक किला था।
0: पूजा जी, जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग वो किस तरह से था, क्योंकि जिसको हम गेटवे ऑफ सदर्न कहते हैं, नागपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्या इसलिए था ये व्यापारिक मार्ग के दक्षिण यहाँ से पहुंचा जा सकता था?
1: जी हाँ, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा करनी है प्राचीन काल में, आज भी, तो नर्मदा को तो पार करना ही होगा। तो देवास जिले में जो हंडिया है वहां से नर्मदा पार की जाती थी और फिर आगे बढ़ते हुए हम कई रास्ते चुन सकते थे, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण रास्ता बैतूल था, बैतूल, आज भी है क्योंकि उसका सामरिक महत्व है। जहां से व्यापारी निकलते हैं वो हमेशा से बड़ा सामरिक महत्व का होता है, इसलिए ये किला यहां बनाया गया होगा।
0: तो ये किला वहां पर कब बनाया गया पूजा जी?
1: किले का जो पुरातात्विक अवशेष है यदि हम उन्हें देखें तो ये बहुत प्राचीन किला रहा होगा जिसमें समय समय पर विस्तार हुआ होगा
0: जी।
1: लेकिन अगर इस क्षेत्र के इतिहास पर हम नजर डालें तो दिखाई देता है कि 130 ईस्वी से 161 ईस्वी तक, यानी कि आज से लगभग 2000 साल हो गए,
0: साल पहले।
1: जी हाँ, आज से लगभग 1950 साल या 2000 साल पहले एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम था कोंडली
0: जी।
1: तो जो शोध कहते हैं वो ये है कि ये कोंडली जो था वो गोंड राजा था। तो यानी कि आज से 2000 साल पहले भी इस क्षेत्र में गोंडों का शासन हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण संदर्भ है वो है 997 ईस्वी का, यानी लगभग आज से 1000 साल पहले हो गया। और इसमें हमको एक नाम दिखाई देता है खेरला के राजा का, और वो नाम है एल
0: जी।
1: एल है उस राजा का नाम।
0: अच्छा।
1: जी, और राजधानी का नाम जो मिलता है वो है एलिजापुर।
0: अच्छा।
1: तो हो सकता है कि खेरला का पुराना नाम एलिजापुर रहा हो और बाद में कभी खेरला हो गया हो, या फिर आसपास का कोई क्षेत्र जो है वो एलिजापुर के नाम से जाना जाता होगा और ये खेरला ही रहा होगा। इसके अलावा हमें 10वीं-11वीं सदी में भी कुछ इस स्थान के संदर्भ मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं-11वीं सदी में यहाँ परमारों का शासन था और हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो राजपूत राजा हुआ करते थे
0: जी,
1: वो वन क्षेत्र को उन जनजातियों के पास ही छोड़ दिया करते थे, राजस्व हो या फिर वन संपदा हो, उस पर उन्हीं का अधिकार हुआ करता था, जो जनजातियां उस क्षेत्र की जानकार होती थी,
0: जी,
1: जो वहां की निवासी थी। तो इसी प्रकार से जब यहाँ परमारों का शासन था तो खेरला में भी कोई गोंड जनजाति ही उस क्षेत्र की देखभाल करती होगी, तो वहां पर भी कुछ हमको इस तरीके के ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। जो खेरला का किला है उसकी भी अगर आप दीवारों में और इमारतों में देखेंगे तो परमार काल के कई स्थापत्य खंड और प्रतिमाएं वहां दिखाई देती हैं। इसके साथ ही यह भी कई विद्वानों ने लिखा है कि खेरला का जो राज्य था उसके राजपूतों से बड़े घनिष्ठ संबंध थे, यहाँ तक कि रोटी बेटी का संबंध भी था, आपस में वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे।
0: अच्छा।
1: गोंड में और राजपूतों
0: में।
1: जी हाँ, खेरला के बारे में तो ये विशिष्ट बात है। तो इस तरीके से इसके बड़े ही प्राचीन संदर्भ हमको मिलते हैं।
0: तो पूजा जी, ये जो जानकारियां आप हमें बता रही हैं, क्या ये सिर्फ जो अवशेष बचे हैं उन्हीं को आधार मानकर हमारे पास ये जानकारियां हैं, या जैसा कि कई बार कुछ शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, कुछ वैसा भी कुछ हमारे पास इस तरह के साक्ष्य भी मौजूद हैं?
1: खेरला का किला बैतूल में है
0: जी,
1: और किले की दीवार पर एक शिलालेख लगा हुआ है, और शिलालेख में लिखा है कि 1363 ईस्वी में राजा नरसिंह ने एक बावड़ी बनवाई।
0: अच्छा।
1: और जगह का नाम भी लिखा है खतकपुरा, खतकपुरा में एक बावड़ी बनवाई।
0: वाह।
1: ऐसा एक उल्लेख आता है। तो ये अभिलेख हो सकता है कि मूल रूप से इस किले में ना लगा हो, किसी बावड़ी में लगा था जिसे राजा नरसिंह ने बनवाया था
0: जी।
1: और बाद में कभी इस शिलालेख को यहाँ लाकर लगा दिया गया
0: जी।
1: ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये जानकारी किले में ही दी गई हो
0: जी,
1: दोनों बातें हो सकती हैं। इसके साथ ही एक और चीज देखने लायक है कि खतकपुरा नाम की जगह का यहाँ पर उल्लेख आता है
0: जी।
1: तो एक मान्यता ये भी है कि खेरला का शायद पुराना नाम खतकपुरा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जहाँ बावड़ी थी वो जगह खतकपुरा के नाम से जानी जाती।
0: अच्छा।
1: होगी। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हमको दिखाई देती हैं।
0: पूजा जी, पिछले एपिसोड में तो देखिए हम बात कर रहे थे देवगढ़ के किले के बारे में, और बहुत हैरत अंगेज बातें पता लगी थी, और वो भी हमें इतनी हैरत में इसलिए डाल रही थी क्योंकि वो बात हो रही थी 400-500 साल पहले की, और ये किला तो 2000 साल पहले का है, फिर जब परमार आए तो वो बात हो रही 1000 साल पहले की। तो हमें यहाँ किस तरह का स्थापत्य देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये तो फिर और भी हैरानी में डालने वाली बातें हो सकती है।
1: जी हाँ, बैतूल जिले में जब आप पहुंच जाएं तो फिर एक घना जंगल पार करते हुए हम लोग सड़क मार्ग से किले तक पहुंच जाते हैं
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले हमको जो दर्शन होते हैं वो एक मंदिर के होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो किले की पहाड़ी की तलहटी में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, और आजकल इस मंदिर को मुकुंद राज की समाधि भी कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: वास्तव में ये मंदिर तो परमार काल का है, भूमि शैली का मंदिर है, जिसे 11वीं-12वीं सदी में बनाया गया होगा।
0: लगे हाथों हमें ये भी बता दीजिए कि भूमि शैली क्या होती है।
1: भूमि शैली परमारों की एक खास शैली है, जिसमें कि ऐसा माना जाता है, जैसा कि हमको भूमि शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, जिसका जन्म ही भूमि से हुआ हो वही भूमिज है
0: जी।
1: तो इस शैली में शिखर फर्श से ही शुरू हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है उसकी भित्ति यानी दीवार नहीं है, उसका शिखर सीधे शुरू हुआ है,
0: मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं,
1: हाँ,
0: कोई चबूतरा नहीं है, सीधे सीधे वो मंदिर जमीन से ही शुरू हो रहा है।
1: उसी को हम लोग भूमि शैली कहते हैं, जो खासकर राजा भोज के समय बड़े प्रचलन में आई। तो ये एक भूमि शैली का मंदिर रहा होगा, पर बाद में लगभग इसी काल में या कुछ समय बाद एक बड़े प्रसिद्ध मराठी के कवि हुए हैं मुकुंद राज।
0: अच्छा।
1: वो भी परमार काल के हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी समय यहाँ आकर इस मंदिर में ठहरे होंगे, और उन्होंने कुछ साधना और लेखन यहाँ किया होगा
0: जी।
1: उनके दो बड़े सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं मराठी में, एक का नाम है विवेक सिंधु और एक का नाम है परमानंद
0: जी।
1: तो ये जो विवेक सिंधु है बड़ा ही सुप्रसिद्ध है, आज भी लोग बाग इसको पढ़ते हैं, और इस विवेक सिंधु में मुकुंद राज जी ने आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद सिद्धांत है
0: जी,
1: उसको जो उन्होंने प्रतिपादित
0: जी,
1: किया
0: जी,
1: उसकी चर्चा मुकुंद राज ने इस विवेक सिंधु में की है, बड़े ही विस्तृत रूप में।
0: क्या बात है,
1: पढ़ने लायक ग्रंथ है ये
0: जी। तो क्या ये ग्रंथ अभी भी हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध हैं, कहीं पढ़े जा सकते हैं?
1: बिल्कुल, बहुत सी लाइब्रेरियों में इसका अनुवाद है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है और मराठी में तो मूल रूप से ये ग्रंथ था ही।
0: तो आप लोग अवश्य पढ़िए, देखिए जो इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं, प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना हमें ये जानकारियां दे रही हैं, विवेक सिंधु और परमानंद, ये दो प्रसिद्ध कृतियां थी, प्रसिद्ध ग्रंथ थे जो कि मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि मुकुंद राज जी ने लिखे थे और आज इनका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, बिल्कुल आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। और आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है उस पर इसमें चर्चा की गई है। जी पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप हमें दे रही हैं और हमें लग रहा है बस आप आगे बस इसी तरह से हम बढ़ते चलें, सुनते चलें आपको।
1: इस मंदिर के पास में एक छोटा सा तालाब है
0: जी,
1: और पास में ही दो खंबे लगे हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन खंबे पर राजा वली शाह का नाम आता है और एक तिथि भी अंकित है।
0: तो ये वली शाह वही है जो देवगढ़?
1: जी हाँ, बिल्कुल वही है। देवगढ़ का संबंध खेरला से था, ये इसके अभिलेख से सिद्ध होता है। लेकिन इन खंभों पर एक और देखने वाली चीज है
0: जी।
1: वो क्या है कि किसी एक विशेष स्थान से उसकी कितनी दूरी है ये भी उस पर अंकित है।
0: अच्छा।
1: जैसे आजकल हम माइलस्टोन लगाते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसी तरीके से इसमें दूरियां लिखी हुई है।
0: अच्छा,
1: जैसे कोस मीनार के बारे में हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कोस के बाद में
0: जी।
1: वो कोस मीनारें बनाई जाती थी, पर यहाँ पर जो गोंडों की परंपरा दिख रही है उसमें इस तरीके के स्तंभ लगाकर उस पर दूरियां लिखना ये भी अपने आप में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण विरासत है।
0: और उस समय ये दूरियां कैसे किस तरह मापी जाती होंगी ये तो आज भी हमारे लिए बहुत हैरत में डालने वाली बात है।
1: जब हम किले की तरफ आगे बढ़ते हैं, आजकल तो बहुत से खेत हैं वहां पर एक प्राकृतिक चट्टान है और उस चट्टान को देखिए तो वो ऐसी लगेगी जैसे कोई हाथी खड़ा हो, उसी साइज का ऐसी दिखती है वो, तो लोग उसे कहते हैं कि वो किले का हाथी द्वार है।
0: अच्छा,
1: और फिर हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं और किले की पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपन ने देवगढ़ के बारे में भी बात की थी कि सर्पिलाकार मार्ग होता है, कई सारे द्वार होते हैं, तो उसी तरीके से खेरला के किले में भी सर्पिलाकार मार्ग है और कई सारे दरवाजे हैं, और जैसा कि होता है किले की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हैं और किले के अंदर बहुत सारे भवन भी हैं।
0: तो हमारे नए जुड़े श्रोताओं के लिए हम ये बता दें कि ये जो मार्ग थे ऊंचे किलों पर सर्पिलाकार मार्ग इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो दुश्मन है उसे चढ़ने में किसी भी किस्म की आसानी ना हो, उसे बहुत दुश्वारियां आए, बहुत ऐसे अंधे मोड़ आएंगे, और फिर उसके बाद दीवार बनाई जाती थी और फिर कहीं कहीं दोहरी दीवार बनाई जाती थी ताकि किसी भी तरह से संकट के समय किले की सुरक्षा की जा सके।
1: तो किले में अंदर जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि गोंड किलों की ये विशेषता होती थी कि ऊंची पहाड़ियों पर भी जल की उपलब्धता होती थी, तो खेरला के किले में भी जल की उपलब्धता है, वहां पर पानी का स्रोत है। इसके साथ ही कई सारे और भी बहुत सारे तालाब बने हैं, यहाँ तक कि पानी को संग्रहित करने के लिए भवनों के नीचे भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें साल भर का पानी एकत्र करके रखा जा सकता
0: अच्छा।
1: है। और जैसा हमने कहा कि एक और से तो मार्ग है किले में चढ़ने के लिए जो मुख्य मार्ग है
0: जी।
1: इसके साथ ही पीछे की ओर जो किले का पिछला हिस्सा है वहां पर एक छोटा दरवाजा है, अक्सर किलों में ऐसे दरवाजे होते हैं
0: जी, जी, जी।
1: और उन्हें खिड़की कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: तो ऐसी एक खिड़की यहाँ पर भी है।
0: खेरला के आसपास के जो किले होंगे उनके बारे में भी कुछ हमें, या जो भी मॉन्यूमेंट्स हो उनके बारे में कुछ बताइए।
1: जैसा हमने पहले भी सुना
0: जी।
1: कि जो गोंड किले होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे चौकियां और गढ़ जो हैं उनके चारों तरफ बनाए जाते थे
0: जी, जी।
1: तो इसी तरीके से हमको खेरला के आसपास भी बहुत से गढ़ और गढ़ियां दिखाई देते हैं
0: जी।
1: जो उसको सुरक्षा प्रदान करते होंगे, उनमें से जैसे असीर का किला है, भंवरगढ़ का किला है, सांवलीगढ़ का किला है, इस तरीके के कई सारे गढ़ रहे होंगे जिनके अब लगभग नाम मात्र के अवशेष ही रह गए हैं
0: जी।
1: पर हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से ये पूरा ही परिदृश्य बड़ा महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: इसके साथ ही हमको एक भैंस देही का मंदिर भी है जो कि गोंड काल का है और उसकी बड़ी मानता है आज भी
0: जी, बिल्कुल।
1: तो अगर आप बैतूल जिले में ही पूर्णा नदी के तट पर जाएं तो वहां पर ये बड़ा सुप्रसिद्ध भैंस देही का मंदिर है और इसके पास में जो बस्ती है वो भी मानी जाती है कि गोंड काल की ही है वो बस्ती।
0: अच्छा।
1: आज भी अनवरत लोग उसमें रह रहे हैं
0: जी, जी।
1: और ये जो मंदिर है भैंसदेही का, बड़ा सुंदर है, नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग किया गया है इसमें। और अब तो हालांकि इसका काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसका जो विशाल शिखर था इसमें तीन ओर से प्रवेश द्वार थे, अब लगभग समाप्त से हो गए हैं किसी कारण से, लेकिन जिस समय ये रहा होगा तो बड़ा ही आकर्षक लगता होगा। और इसका जो निर्माण काल हमको दिखाई देता है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास दिखता है
0: जी।
1: और इसकी सीढ़ियों के पास में एक कुंड भी है, ऐसी मानता है कि ताप्ती नदी भूमिगत हो जाती है वहां पर।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो लोग बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, वो यहाँ पर करते हैं। बड़ा इस क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है ये।
0: तो खेरला के किले के बारे में आज पूजा जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी, जो कि आज के बैतूल जिले में स्थित है, और अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं।
1: जी हाँ, ये पर्यटन स्थल है।
0: क्या पूजा जी इसके अवशेष बस देखे जा सकते हैं?
1: नहीं नहीं, इस किले का बड़ा महत्व है आज भी, और दूर दूर से लोग यहाँ पर मुकुंदराज की समाधि देखने के लिए और किले का भ्रमण करने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में।
0: वाह, देखिए, तो पुरातत्व के नजरिए से बस बात नहीं हो रही, ये बात तो काफी कुछ पर्यटन के नजरिए से भी हो गई, और पर्यटक भी यहाँ पर, हमारे जो श्रोता हैं जो इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, उन्हें तो यहाँ पर पर्यटन के भी कुछ रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, और हमारे समृद्ध इतिहास को देख सकते हैं, गोंड राज्य शासन की व्यवस्थाओं को आप अपनी आंखों देखे वहां जाकर के सब कुछ समझ सकते हैं। पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं, और बहुत बार आप ये कहती हैं कि वहां पर अवशेष थे, अब खंडहर बचे हैं, तो निश्चित रूप से श्रोताओं, जो आज खंडहर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो खंडहर होते हैं ना, वो कभी ना कभी किसी भव्य समृद्ध शासन की गवाही देते हैं। ऐसे ही समृद्ध शासन की हम बात आगे जारी रखेंगे, प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हमारी 15वीं कड़ी में आज हमने बात की है खेरला के राज्य के बारे में, खेरला के गोंड राज्य के बारे में, और अगली बार फिर किसी गोंड राज्य के बारे में पूजा जी से बात जारी रहेगी कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में। आज बस हमें दीजिए यही इजाजत, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया श्री अमित कुंदानी ने। दीजिए मुझे इजाजत, यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को नमस्कार। इतिहास के पन्नों से इतिहास

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चाय और फर का व्यापार। अलास्का की बर्फ में ब्रिटिश साम्राज्य की खोज। क्या आप जानते हैं कि चाय के लिए अंग्रेजों की प्यास इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसने साहसी यात्रियों को भारत के तपते बंदरगाहों से अलास्का के जमे हुए अनछुए तटों तक केवल फर यानी जानवरों की खाल के शिकार के लिए जाने पर मजबूर कर दिया। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भयानक वित्तीय संकट का सामना कर रही थी। ब्रिटिश जनता साल में 90 लाख पाउंड की चाय पी रही थी, लेकिन चीन का स्वर्गीय साम्राज्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। क्या आप जानते हैं कि चाय के बदले में चीनी लोग वास्तव में केवल चांदी को ही महत्व देते थे। इसने व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर यानी ट्रेड गैप पैदा कर दिया। और जब यूरोपीय युद्धों के कारण चांदी की आपूर्ति अत्यंत कम हो गई तो कंपनी एक नई वस्तु के लिए बेताब हो गई जिसके बदले चाय खरीदी जा सके। समाधान कैप्टन जेम्स कुक की पत्रिकाओं से मिला, जिसमें एक ऐसे जीव का वर्णन था जिसका फर इतना शानदार था कि उसे एशिया का एरमाइन कहा जाता था। यह जीव था सी ऑटर, समुद्री ऊदबिलाव। क्या आप जानते हैं कि कैंटन के बाजारों में समुद्री ऊदबिलाव की एक खाल की कीमत शाब्दिक रूप से चांदी के उसके वजन के बराबर थी। उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में इस नए गोल्ड कोस्ट ने एक समुद्री होड़ पैदा कर दी। 1785 में जेम्स स्ट्रेंज नामक एक कंपनी कर्मचारी ने कुक की यात्रा के वृत्तांत पढ़े और बॉम्बे के व्यापारियों को एक अभियान के लिए वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। कैप्टन कुक और एक्सपेरिमेंट नामक जहाजों पर सवार होकर जेम्स स्ट्रेंज अमेरिका और चीन के बीच वाणिज्यिक संपर्क का एक नया चैनल स्थापित करने के लिए प्रशांत महासागर की ओर निकल पड़ा। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। उसी समय कलकत्ता में द बंगाल फॉर सोसाइटी नामक एक प्रतिद्वंद्वी समूह ने कैप्टन जॉन मेयर्स को उसी बर्फीले पानी में भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुबह की चाय के प्याले के लिए इन नाविकों ने कितनी भयानक कीमत चुकाई? स्ट्रेंज 1786 में अलास्का के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जहां उसने पाया कि उसका प्रतिद्वंद्वी मेयर्स पहले से ही वहां मौजूद था। लेकिन मेयर्स ने आर्कटिक की भीषण सर्दियों को कम करके आंका था। उसका जहाज नूत का स्नक कॉर्नर कोव में बर्फ में फंस गया था। जैसे जैसे बर्फ जमती गई, चालक दल स्कर्वी रोग और ऐसी भीषण ठंड की चपेट में आ गया जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। जब मई में बर्फ पिघली, तब तक उसके 31 में से 21 आदमी मर चुके थे। इतनी मौतों के बावजूद यह व्यापार आर्थिक रूप से एक बड़ी जीत थी। क्या आप जानते हैं कि इन पहले अभियानों द्वारा एकत्रित की गई 3000 खालें कैंटन में इतने भारी मूल्य पर बिकी कि उन्होंने मूल निवेश का मूल्य दुगना कर दिया। इस सफलता के कारण अगले दशक में कम से कम 35 ब्रिटिश जहाज प्रशांत महासागर के पार फर व्यापार में लग गए। क्या आप जानते हैं कि एशिया के एरमाइन के इस व्यापार ने एक वैश्विक कूटनीति संकट को जन्म दिया था। 1789 में स्पेनिश नौसेना ने फर व्यापार करने वाले कई जहाजों को जब्त कर लिया, जिससे नूत का संकट पैदा हुआ, जिसने ब्रिटेन और स्पेन को लगभग एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। यह एक कड़वा अनुस्मारक है कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास केवल भारत के मैदानों में नहीं बल्कि अलास्का की बर्फीली लहरों में भी लिखा गया था। और इस सब के पीछे की वजह लंदन की चाय की केतलियों को उबलते रहने देने की साधारण सी बेताबी थी।
2: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं। ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को 2 पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं, जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
5: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
6: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन को ओस की बूंद की तरह कहा गया है जो सूर्य की एक किरण के साथ विलीन हो जाता है। आकाश में उमड़ते मेघ, नदी की बहती धाराएं, वृक्षों से झरते पत्ते और ऋतुओं का निरंतर परिवर्तन, प्रकृति का प्रत्येक दृश्य मानो एक ही सत्य का उद्घोष करता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। काल का चक्र निरंतर घूम रहा है, वो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, किंतु उसके स्पर्श से यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है, वैभव स्मृति में बदल जाती है और आज बीतकर इतिहास में विलीन हो जाता है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम इसी गहन सत्य पर चिंतन करते हैं। वो देखते हैं कि जीवन जल पर खींची हुई रेखा के समान है, क्षणभंगुर है और काल की अथाह धारा में समस्त सांसारिक उपलब्धियां तिनकों की भांति बह जाती हैं। उनका ये चिंतन उस शाश्वत सत्य की खोज का आमंत्रण है जो परिवर्तन और विनाश से परे है। तो आइए योग संवाद आरंभ करें और योग वासिष्ठ के आलोक में काल के प्रभाव तथा जीवन की अनित्यता के विषय में मनन करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: इन दिनों योग वासिष्ठ ग्रंथ हमने खोला हुआ है
1: जी।
0: और इसके वैराग्य प्रकरण में जो कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी काल के प्रभाव की और जीवन की अनित्यता की। तो इस बिंदु पर भगवान श्री राम ने पराधीनता की बात की, मनुष्य की पराधीनता की, कि मनुष्य पराधीन है और कुछ कारण बताए हैं। तो क्या देख रहे हैं भगवान और पराधीनता से आशय क्या है?
1: पराधीनता से आशय है कि काल की ही स्मृतियां हमें होती हैं। आप देखें तो हम पूरे समय में जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अगर उसको हम समग्रता से कहें तो वो किसी काल की ही स्मृति कर रहे हैं। भले उस काल में कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, आपके सुख दुख से जुड़ी कोई स्मृति हो, तो काल के ही अधीन हम रहते हैं। जो स्वाधीनता शब्द है, इसका अर्थ वास्तव में लोग जानते नहीं है। स्वाधीनता कोई विचार नहीं है। स्वाधीनता अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या योग के दृष्टिकोण से देखें तो वो स्व के अधीन होना, यानी स्व को उपलब्ध होना है, जबकि स्व अनुपलब्ध नहीं है। स्व के साथ आप इसलिए नहीं हैं कि आप निरंतर किसी न किसी काल का चिंतन कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब बताइए कि इस संसार नामधारी प्रपंचों में मेरे जैसे लोगों का क्या आस्था हो। कहते हैं, हे मुने, आदमी प्रारब्ध कर्म के वशीभूत होकर सुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित होकर किसी न किसी बिके हुए दास अथवा वन में मृग की भांति पराधीन हो रहा है। अब आप देखिए कि सुख दुख को हम लोग कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म का भोग है। सुनते हैं हम सामान्य शब्दों
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: प्रारब्ध कर्म को भोगा ही जा सकता है, प्रारब्ध को आप टाल नहीं सकते। ऐसा भी हमारे जो गुणी जन हैं या जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कई संतों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको अगर असाध्य बीमारियां हुई तो उन्होंने उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी अपने आराध्य से याचना नहीं की, क्योंकि कहा ये मेरा भोग है, इसको भोग करके,
0: हाँ
1: बिल्कुल जी, भोग करके इसे हम समाप्त करें, ये उनकी जागृति थी। तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि जब ऐसा प्रारब्ध है कि जब इसको बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो अंततः व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है और जी रहा है वो तो प्रारब्ध के अधीन हो गया
0: जी, जी।
1: तो पराधीन ही तो है, वो कहां स्वाधीन है। तो कहते हैं कि ये काल ही व्यक्ति को पराधीन करता है। ये राम जी का गूढ़ चिंतन है कि वो काल को इस रूप में देखते हैं कि काल व्यक्ति की पराधीनता का कारण है और स्वाधीनता पर जो आवरण और विक्षेप नामक माया का जो प्रभाव है उस प्रभाव से वो ग्रसित इसलिए है कि वो काल के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। वो बार बार उसी काल के चिंतन करता है, काल के प्रभाव में रहता है, काल को भोगने का प्रयास करता है। तो इस दृष्टिकोण से राम जी ने कहा कि यहाँ सभी लोग पराधीन है, और गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही। तो ऐसे में अब जब काल व्यक्ति को पराधीन किए है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, इसीलिए संसार को दुख का आलय कहा गया। ये तमाम ऋषियों के मतलब आध्यात्मिक अनुसंधान है।
0: अच्छा, भगवान श्री राम ने काल को निर्दयों का राजा भी इसमें कहा, क्यों कहा?
1: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान राम ने कहा कि काल निर्दय, जैसे कहते हैं ना कि जिसको दया ना हो, तो ऐसे समय किसी को बकसता नहीं है। लोग बाग ये सोचते हैं ना कि मतलब हम अपने अनुसार चीजों को कर लेंगे, ये सच ये नहीं है। वो काल उनके अनुसार किया हुआ है, बस इतनी सी बात है, और उनको लगता है ये हमने किया है। जबकि काल की जब गति घूमती है तो आप देखते होंगे कि राजा कैसे रंक बन जाता है, कैसे सारी संपन्नता के बाद भी

0: बताइए कि वैभव का जो स्वरूप है और उसके भोग का
1: जी
0: परिणाम क्या है?
1: हाँ, वैभव का स्वरूप राम जी कहते हैं कि वैभव अल्प एवं तुच्छ है। व्यक्ति को लगता है कि हम निरंतर वैभवशाली हों, हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं।
0: जी जी
1: राम जी कहते हैं दृष्टि में कि कोई ऐसा वैभव नहीं है जिस वैभव के साथ हमेशा आप वैभवशील बने रहें।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आप कभी विचार करके देखिए कि जो सफलता आज आपके लिए बड़ी मूल्यवान है, उसको अर्जित कर लेने के बाद फिर किसी और की तलाश आप करने लगते हैं और वही सफलता
0: बिल्कुल
1: आपको तुच्छ लगती
0: जी जी
1: है
0: जी
1: ना। तो
0: हाँ
1: देखिए कितनी बड़ी दृष्टि है जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि इस संसार में हम जिसे भी चाहते हैं वो तुच्छ ही है। क्योंकि जिस समय आप चाह रहे हैं उस समय वो मूल्यवान हो सकती है, लेकिन कुछ काल बीत जाने के बाद वो
0: वो
1: आपको
0: तुच्छ
1: तुच्छ
0: ही है।
1: प्रतीत
0: जी
1: होगा।
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि जो वैभव का मूल स्वरूप है वो अल्प और तुच्छ है, तथा जितने भी भोग के स्थान हैं वो भयंकर और परिणाम में निरंतर दुख देने वाले हैं।
0: अच्छा।
1: जबकि व्यक्ति भोग के रूप में सुख चाहता है, और वो कहते हैं कि आप देखिए कि सुख की चाह ने ही तो व्यक्ति को दुखी किया है,
0: जी
1: या
0: हाँ
1: कह सकते हैं सुख की चाह जिसे है वो अपने को दुखी भी घोषित कर रहा है एक न एक रूप में। तो कहते हैं कि ये जो भोग का स्थान है वहां पर वो भयंकर है, वो भयानक है, क्योंकि वहां सुखी किसी कोई नहीं हुआ। और हम लोग कहते भी हैं कई बार कि जिस स्थान पर जाकर के आपको सुख का अनुभव या अनुभूति होने की संभावना दिखाई दे रही है, उन स्थानों पर तो बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, आप उनको देखिए क्या वो सुखी
0: क्या
1: हैं?
0: वो सुखी हैं?
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो नहीं है। तो जब देखते हैं तो कहते हैं ये भोग है, ये भयंकर है, ये देख के डर लगता है। जो अज्ञानी लोग हैं भले इस भोग के पास में बंधे हों, लेकिन जो ज्ञानी है जिसको विवेक है वो इस भोग को भयंकर देखता है और भोग का परिणाम अंततः दुख ही मिलता है। और उसको राम जी कहते हैं कि दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाला है भोग।
0: अच्छा।
1: जी ऐसा भी दुख नहीं है जो मतलब जिसका अंत हो जाए,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: देर तक उसका अंत नहीं होगा, आप उस
0: हाँ
1: दुख को भोगते रहेंगे।
0: जी जी अच्छा, मनुष्य के बंधन का कारण क्या बताया है इसमें?
1: बिल्कुल सुंदर आपने कहा। राम जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अभी वो किसी बंधन में नहीं है। देखें तो देह है उसके पास और
0: जी
1: देह की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद वो संसार का कोई भी ज्ञान या संसार के संबंधों का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन जैसे ही थोड़ा वो समझदार होता है और लोगों को पहचानने लगता है, तो वो पहचानने नहीं लगता, वो वहीं से बंधना शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि बंधु बांधव या जो परिवार है ये सब बंधन के कारण है,
0: जी
1: इन्हीं में जीव बंधता है।
0: हाँ
1: और इसको राम जी तो कहते ही हैं, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं रूसो, जो कहते हैं कि
0: जी
1: मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन,
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: आदमी
0: जी,
1: स्वतंत्र पैदा
0: पैदा
1: होता
0: हुआ
1: है
0: है
1: लेकिन
0: लेकिन
1: हर जगह वो
0: बंधनों से
1: बंधन
0: जकड़ा हुआ
1: जकड़ा
0: है।
1: हुआ है। तो राम जी यही कहते हैं कि ये बंधु बांधव, संसार की पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, यही तो जीव का बंधन है, व्यक्ति का बंधन है। इसी बंधन में वो बंधा है, जबकि वो अपने लिए उसे आवश्यक समझता है। आश्चर्य देखिए कि वो हमारे लिए बंधन भी है और उस बंधन में रह करके हम मुक्ति भी चाहते हैं, है ना। उस
0: जी जी
1: बंधन से
0: जी
1: मुक्त होना नहीं चाहते, बंधन में रहते हुए
0: हमें
1: मुक्ति
0: मुक्त
1: चाहते। कितनी बड़ी बात। मुझे आश्चर्य होता है, एक महात्मा थे तो उनके पास कोई व्यक्ति गया, वो कहा कि मैं क्रोध से, आसक्ति से और जो जितने भी मन के दोष हैं इन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, वो मंदिर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मंदिर का जो वो पिलर है उसको जोर से पकड़ लिया और कहा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो कहने लगे ये क्या कह रहे हैं आप? कहते जो
0: जी
1: तुम्हारी दशा है उसी को तो बयां कर रहा हूं मैं, कि पकड़ा
0: कि
1: तुमने
0: तुमने ही
1: है
0: पकड़ा हुआ है,
1: और तुम कह रहे हो कि मैं मुक्ति
0: मुझे
1: कैसे
0: मुक्त
1: चाहिए। तो ऐसे
0: कर
1: में जो हमारे लिए बंधनकारी है उसी में रहते हुए हम मुक्त होने का ख्याल करते हैं। कितनी बड़ी ये व्यवस्था है। राम जी जैसा विवेकवान पुरुष इसको देखता है कि व्यक्ति का जो बंधन है वो बंधु बांधव और उसके अपने ही हैं।
0: अद्भुत है
1: अद्भुत है जी
0: कि हम स्वयं बंधे हुए हैं और
1: जी
0: वो बंधन हमें पसंद भी है और हमें मुक्त भी हो जाना है।
1: जी
0: तो ये दृष्टि आम मनुष्य की है
1: जी
0: जिसको भगवान देख रहे हैं।
1: जी
0: अच्छा, ये बताइए कि आत्मा का भी कोई शत्रु हो सकता है क्या?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे स्मृति में आया कि यद्यपि आत्मा न किसी की शत्रु है न मित्र है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा का कोई शत्रु नहीं हो सकता।
0: जी
1: आपके अंदर शत्रुभाव न हो, निर्भयता की स्थिति आपने साध ली हो, लेकिन संसार आपसे बैर कर सकता है जी। तो वो कहते हैं कि आत्मा का जो शत्रु है वो बिना जीता हुआ मन है। जिस
0: अच्छा।
1: मन पर आपने स्वामित्व अर्जित नहीं किया, यानी मन के स्वामी आप नहीं बने, तो वो मन कभी भी आत्मोन्मुख नहीं होने देगा आपको, विषयोन्मुख बनाएगा। मन मुखी जो व्यक्ति होता है वो विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन ही आत्मा का शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा विषयों के चिंतन में आपको भोग की तरफ, विलास की तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसे में जो उस मन को जीत लेता है वो व्यक्ति विषयों का त्याग करके आत्मोन्मुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग मन को अपने वश में नहीं कर पाए हैं, जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है, वो हमेशा विषयोन्मुखी होते हैं, बल्कि वो आत्मा को भी विषय बनाकर उसका चिंतन करते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात मैं कर रहा हूँ कि बड़े बड़े आप देखेंगे साधकों को ये भ्रम सा हो जाता है कि वो आत्मा को ही विषय बना चुके हैं, कि आत्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। इस पर मैं फिर एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि आप जाओ इस महात्मा के पास, तुम्हें वो बोध कराएगा। तो वो शिष्य महात्मा के पास गया, सोचा कि हमारे गुरु जी से भी ये श्रेष्ठ महात्मा होंगे। तो देखा तो उस महात्मा ने तो कभी न भगवान की स्मृति की, न कभी पूजा किया, न पाठ किया, वो ऐसे ही संसार के कार्य करते थे, एक बार भी भगवान को याद नहीं किया। काफी दिन हुआ, देखते देखते जब काफी दिन बीत गया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरु जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, इससे तो श्रेष्ठ उनका व्यवहार रहा, इनके पास तो कोई मतलब ऐसा व्यवहारिक सत्कर्म नहीं है जिसके वजह से मैं इनको जानू कि परमात्मा भी इनके लिए मूल्यवान हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मेरे गुरुजी ने आपके पास बोध के लिए भेजा है, और मैंने कभी परमात्मा के लिए एक पल भी आपको विचार करते हुए देखते नहीं देखा। तो ऐसे में मैं क्या समझूं, मुझे क्या सिखाना चाहते हैं आप? तो उन्होंने जो कहा वो बहुत ही सोचने योग्य है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं परमात्मा के बारे में सोचूं, समझना कि उसी दिन मेरा पतन हो गया, क्योंकि मैं कभी उससे दूर हो ही नहीं सकता, और जिससे दूर होने का कोई उपाय नहीं है उसके बारे में सोचने का भी कोई उपाय नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे में ये जो आपने एक प्रश्न किया कि परमात्मा से आप कभी दूर हुआ ही नहीं जा सकता, और जो दूर होने की बात समझ रहे हैं वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम के शिकार हैं, अज्ञानता के शिकार हैं, जिसको कबीर साहब कहते भी हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को इंतजारी क्या। तो परमात्मा इंतजार अलग होने का विषय नहीं है, वो आप में ही है। तो आत्मा पाने का विषय नहीं है, लेकिन लोग आत्मा को भी पाने का प्रयास करते हैं, ये मन का खेल है। मन समझिए मन की चालाकी है, वो अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार में आपको उलझा देता है, और वो आत्मा और ब्रह्म को भी विषय बना देता है, जबकि वो विषय नहीं है, वो तो सत्ता है आपकी, उसे कैसे विषय बना सकते हैं? विषय तो मन के हो सकते हैं, और मन से जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन आत्मा कब विषय बन जाएगा इसको खोज पाना आसान नहीं होगा।
0: आसान नहीं, बिल्कुल। अंतःकरण में जो व्याकुलता है क्या कारण उसका होता है?
1: उसका कारण है दूषित बुद्धि। और यहां फिर आपको पूछना चाहिए कि दूषित बुद्धि का क्या कारण है? तो दूषित बुद्धि तभी होती है जब मन किसी सुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में राग कर ले, और किसी दुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में द्वेष कर ले।
0: अच्छा,
1: तो राग द्वेषात्मक जो उसकी प्रवृत्ति होगी और उस प्रवृत्ति में संलग्न जो बुद्धि होगी वो दूषित बुद्धि होगी। तो ऐसी दूषित बुद्धि अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करती है। आप संसार में देखिए लोग व्याकुल दिखाई देते हैं आपको, भागते दिखाई देंगे, जैसे लगता है कितनी दूर कहां जाना है और क्या पाना है, जबकि सच ये है कि इस संसार में क्या ऐसा प्राप्तव्य है। राम जी कह भी रहे हैं कि यहां जो कुछ भी पाने योग्य है सब छूट जाता है। जब ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के शक्तिहीन हो जाती है, संतुलन खो बैठती है, तो ऐसे में इस संसार में कोई ऐसा मूल्यवान वस्तु नहीं है सिवाय आपके, कि आप अपने चिंतन को करने के बजाय, स्वाधीनता को पाने के बजाय, आप जो पराधीनता है, वो पराधीनता जो काल आपको बना रहा है, पराधीन कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जिसको कहते हैं गोस्वामी जी, नाचई सभी नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो ये स्थिति है कि हर आदमी जो है बंदर की तरह नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो राम है, आत्मा राम, उसको आप नहीं जान रहे हैं, और राम को आप यहां वहां भटक के घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो बुद्धि की मलिनता का मूल कारण है, मतलब अंतःकरण के व्याकुल होने का कारण है बुद्धि की दूषित होना, और बुद्धि का दूषित होना है मन के साथ बुद्धि का बहाव।
0: आपने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनके साथ हमारा एक मोह बने, और हम किसी सुख की कामना के साथ इच्छाओं को चाहें,
1: जी,
0: तो ये भी दूषित बुद्धि है।
1: दूषित, आप कभी देखिए ना, इच्छाओं को आज तक भाई हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमने पूरी की, लेकिन पूरी करने के बाद क्या इच्छाओं ने हमें छोड़ा? इच्छाओं ने तो हमें बांधा ना
0: जी।
1: हम हमेशा इच्छाओं के गुलाम होते चले गए और हम कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाए। तो आज भी आप देखिए, पूर्व का जो अनुभव है उस अनुभव से हम नहीं सीख रहे हैं। विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने वाला मनुष्य आज भी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इच्छा एक प्रकार का बंधन है जो व्यक्ति को बांध रही है और बुद्धि को दूषित कर रही है।
0: जिस राग और द्वेष की आपने बात की है, उससे मुक्ति के लिए एक संक्षेप में एक बात कहें कि किस तरह से क्या दृष्टि हो
1: इसके। मुक्ति के लिए मन पर विजय पाना, जो कहा ना कि आत्मा के शत्रु ना बल्कि आप आत्मा के मित्र बने। मित्र तभी होंगे जब मन की जो व्याकुलता है, मन का जो विचलन है, मन की जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर आप रोक लगा पाएं, निरोध कर पाएं। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, क्योंकि मन हमेशा वृत्तियों के पीछे भागता है और वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो वही महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र का परिभाषा है वही किसी रूप में परिभाषित हो रहा है कि मन को जीत करके आप अपने आत्मा के मित्र हो सकते हैं। आत्मा तो आप में है ही, ब्रह्म स्वरूप आप है ही, शिवोहम शिवोहम आदि गुरु शंकराचार्य कह ही रहे हैं कि न हमारा जन्म है, न हमारी मृत्यु है, न हमारा बंधन है, न हमारा मोक्ष है। तो ऐसे में कब ये ऐसा है? जब हम आत्मोन्मुखी हों या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों, और ये तभी होगा जब हम मन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिना जीता हुआ मन आत्मा का शत्रु बन जाता है और मनुष्य के अंतःकरण की व्याकुलता का कारण बनता है,
0: कारण बन जाता है
1: जी।
0: अच्छा, इसमें बताया कि जो काल है वो प्राणियों को अज्ञात स्थान पर ले जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझाइए, क्या आशय है इस पंक्ति का?
1: हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो काल है जिसमें व्यक्ति सारे समा रहे हैं, जैसे कहा ना हमने पिछली बार शायद इस बात पर बात की थी कि काल का ग्रास ये जगत है।
0: हाँ।
1: तो यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है वो इस जगत में ही विलीन हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण, पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है और उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये कहते हैं ना कि आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम काल के गति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भगवान ने यहाँ साफ कहा कि ये अज्ञात जगह पर व्यक्ति को ले जाता है। ये जो प्राणी समुदाय है, प्राणियों की जो परंपरा है जगत में, जो जगत में प्राणी दिखते हैं, प्राणवान दिखाई दे रहा है, काल उसे निरंतर अपना ग्रास बना रहा है और कहाँ बना रहा है ये किसी को पता नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं दूंगा। श्रीमद् भागवत कथा में जब नारायण ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यास का वध कर दिया तो उससे वो तपस्या करने लगा कि मैं अब नारायण को मारूंगा, नारायण को मिटाऊंगा। यानी काल को नारायण भी कहा गया, भगवान ने कहा गणना में मैं काल हूं, विभूत योग में देखें। तो ये सब एक कोड में इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा करेंगे कि हम नारायण को ही मारेंगे, यानी काल की व्यवस्था को या काल को हम जीत लेंगे, ऐसी बात उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। और वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वर मांगते हैं कि मेरा कहीं भी मृत्यु ना हो
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी सृष्टि में तो मृत्यु का विधान है, हर प्राणी जन्म लेता है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि कैसे वो अज्ञात काल में जा रहा है, तो उसको जाना ही पड़ता है, यहाँ तो मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है
0: जी।
1: तो वो भी चालाक था, फिर उसने क्या किया कि आप देखिए उसके वर मांगने की विधा कैसे बुद्धि का कौशल प्रयोग किया उसने कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, धरती पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, वानर से नहीं मरूं, पशु पक्षियों से नहीं मरूं। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसने मृत्यु को जीत लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने पूरी बुद्धि जो है काल के बाहर जाने का तो प्रयास किया।
0: हाँ।
1: लेकिन अंततः काल में एक नया स्वरूप ले लिया, नरसिंहा अवतार, जो कहते हैं जो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है, और वो जो गोधूल के बेला में उन्होंने, तो ये कथानक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि राम जी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से काल सारे प्राणियों को अज्ञात स्थान में ले जाता है, दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। भाई अज्ञात का मतलब हुआ कि जहां उसके दिशाओं का भी पता ना चले, और यहाँ आदमी काल को जानने के लिए कितना उत्सुक रहता है कि अपने भविष्य काल को जान ले, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं काल का ये भी प्रभाव है, ये भी काल का ही प्रभाव है, माया का प्रभाव है। जबकि वो हम गाते हैं ना भजन में कि तेरी माया का न जाने कोई पार, वो माया रानी तू ही जाने। तो ये जो काल की जो पत्नी कालरात्रि है वो वही जानती है कि क्या है, उसको कौन जान सकता है। तो ऐसे में अज्ञात स्थान में ले जाता है जहाँ दिशाएं भी नहीं जान पाती दिखाई देती हैं, ताकि आप जान पाएं।
0: अच्छा, भगवान श्री राम तो स्वयं परमात्मा हैं
1: जी,
0: परमात्मा के संबंध में क्या कह रहे हैं वो योग वासिष्ठ में?
1: परमात्मा के संबंध में वो कह रहे हैं कि वह परमात्म तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है और उसकी व्याख्या शास्त्रों में जो की गई है राम जी वैसे ही कह रहे हैं जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक उस परम निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यानी कहते हैं कि ये जो माया का जो उत्पादक है वो माया से अलग है, वो माया की तरह दिख नहीं सकता
0: जी।
1: और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम परमात्मा की भी मूर्ति बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत है, हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। हम अभी कहें किसी निराकार का चिंतन करें आप, तो निराकार का चिंतन ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चिंतन से मुक्त हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्विचार होना, क्योंकि चिंतन तो विचार में होगा, दृश्य में होगा, सुन करके होगा, कह करके होगा। और कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का विचार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा, इसके लिए तो उपनिषदों में काफी गहरी चर्चा है जिसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो साधन अपनाए गए हैं कि ये सब कुछ उसी में है और ये कुछ भी वो नहीं है, इस तरीके के मतलब ऋषियों ने प्रयास किया है, इशारे किए हैं, ताकि आप, चूंकि वो कहा तो जा नहीं सकता, सुना जा नहीं सकता, लेकिन जो जिज्ञासु है वो कहने सुनने के ही आकांक्षा से आप तक आया है तो वो एक व्यवस्था है, इशारा है, लेकिन वो इशारा है। तो राम जी वही कहते हैं कि वो वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो माया का उत्पादक है, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, दृश्य आंख से देखा नहीं जा सकता। इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं।
0: अच्छा, इस संसार में सुखी कौन है?
1: इस संसार में सुखी कौन है, इन्होंने कहा महात्मा की शीतल बुद्धि, ऐसे महात्माओं की शीतल बुद्धि जिनकी बुद्धि अब उनके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाती। जैसे हमने कहा ना कि जो बिना जीता हुआ मन, ये आपकी बुद्धि की शीतलता समाप्त कर देगा
0: जी।
1: और जीता हुआ जो मन है वो बुद्धि को शीतल बनाएगा, बुद्धि में कभी व्यग्रता नहीं है, उष्णता नहीं आएगी।
0: पूरा रोग जो है वो व्याकुलता का है।
1: व्याकुलता का है। वो कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, शीतल बुद्धि ऐसी है
0: जी।
1: और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी हो सकता है, और कोई सुखी नहीं हो सकता इस जगत में। यानी आत्म शांति को प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वो शीतल बुद्धि है। इसीलिए आपने सुना होगा एक मंत्र जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शीतल बुद्धि में उपजा हुआ एक प्रार्थना है। और जो क्या कहते हैं, जो ऐसी बुद्धि जिस पर मन शासन करता है वो कैसी होगी? वो ये कहेगी कि जो कुछ भी हो संसार में मेरे लिए ही
0: हो।
1: वो अपने को केंद्र में रखकर
0: कहेगी जी। तो सर्व की कामना, सर्व का कल्याण हो ही नहीं सकता ऐसी बुद्धि में। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि जो संसार, हमने बुद्धि की बात की
1: जी,
0: तो जो संसारी मनुष्य है उसकी बुद्धि कैसी होती है?
1: राम जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है।
0: अच्छा।
1: उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते रहते हैं और कहते हैं, देखिए वो बुद्धि क्या कहती है, कहते हैं कि आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करना चाहिए, वे लोग हमारे भाई बंधु हैं, यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है, इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ये संसार की गति है। और देखें तो संसारी व्यक्ति निश्चित ऐसी ही बुद्धि के साथ संसार को देखता, विचार करता और जीता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए विवेक के साथ जो बुद्धि विकसित होगी, गोस्वामी जी कहते हैं अबलो नसानी अवना नसही हो, तो हम ऐसा नहीं है कि संसार के व्यवहार में हम व्यवहारिक जगत का तिरस्कार कर रहे हैं, हम व्यवहारिक जगत को जीते हुए पारमार्थिक सत्य का भी चिंतन करें कि हमारा स्वरूप क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, आचार्य शंकर जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठ नहीं है। एक बार क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जगत को नकारने की बात की जा रही है। जगत को नकारने की बात नहीं की जा रही है, जगत के सत्य के साथ व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को जागृत किया जा रहा है।
0: हाँ, वही मैं कहने ही जा रही थी कि काल के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की अनित्यता की बात कर रहे हैं, फिर जीवन में लय होने की, रमने की बात भी होती है, उसे छोड़ना भी नहीं है
1: जी।
0: तो दृष्टि क्या हो संसार में, हमारी दृष्टि क्या हो
1: संसार में, दृष्टि हमारी इस संसार में रहते हुए कैसे हम अंतःकरण को व्याकुल किए बिना और अपने मन को वश में रखते हुए शांति और संतुष्टि के साथ जीवन जिएं। यही बात आगे चल करके जब राम जी के वैराग्य की स्थिति को जानने के बाद गुरु लोग उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार करता है, वो किसी कर्म का त्याग नहीं करता। और ये देखिए, राम जी की कहानी सभी को मालूम है, लेकिन राम जी के चित्त की ये दशा आम लोगों को नहीं पता है। और अगर राम जी के चित्त की दशा शांत न हुई होती तो ऐसे में राम जी का जो व्यवहार होता वो सांसारिक लोगों की तरह हो सकता था।
0: जी जी।
1: तो इस नाते सबसे पहले उन्हें तीर्थ यात्रा करने का जो भाव अपने चित्त में उत्पन्न हुआ और पिताजी से उसके लिए उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। और तीर्थ भ्रमण करके राम जी इस जगत का व्यवहार देखना चाहते थे। और व्यवहार देखने के बाद जो उन्हें दिखा कि यहाँ कर्म तो सभी कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर्म व्यक्ति के सुख का कारण नहीं हो सकता। तो अपनी उस अवस्था की बुद्धि से उन्होंने कर्म का ही त्याग किया। तो ऐसे में जब सभा में बुलाया गया है तो गुरु के बीच वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि ये मुझे दिखाई दे रहा है विभिन्न अवस्थाओं में ऐसी ऐसी स्थिति, हम कैसे इस शरीर से या इस संसार के विषयों से प्रेम कर सकें।
0: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही। मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत आनंदित हुए होंगे आज। बहुत ही अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा। अगले अंक की प्रतीक्षा मुझे भी है। तो आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको कि आप आए और इतनी सुंदर व्याख्या आपने की।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की काल के प्रभाव और जीवन की अनित्यता पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
4: भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी भर नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक आंदोलन और एक युग की कहानी बन जाता है। ऐसे लोग अपने समय से आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता, चिंतक, लेखक, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र की सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र में जन भागीदारी की शक्ति को पहचाना। और एक ऐसा नागरिक जिसने अपने पूरे जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न वराह गिरी वेंकट गिरी अर्थात वीवी गिरी को।
3: भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक महान नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम उन व्यक्तित्वों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग चरणों में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं और हर भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो वीवी गिरी का नाम निश्चित रूप से उनमें प्रमुखता से लिया जाएगा। वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, वे केवल मजदूरों के नेता भी नहीं थे, बल्कि उनका जीवन इन सभी भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम था। उनका जीवन हमें यह बताता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो समाज की जड़ों से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम वीवी गिरी को याद करते हैं तो केवल भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर साधारण लोगों की असाधारण लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बनाया। लेकिन किसी भी महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वीवी गिरी की यात्रा भी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी।
4: 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के वर्तमान गंजाम जिले के बराहमपुर नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश राजनीतिक रूप से गुलाम था और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा। उस बालक का नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पुंतलु अपने समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता की नहीं थी, वो सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे। समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखना उनके स्वभाव का हिस्सा था। घर का वातावरण बौद्धिक भी था और सामाजिक चेतना से भी भरा हुआ था। यही वातावरण आगे चलकर युवागिरी के व्यक्तित्व की नींव भी बना। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। वीवी गिरी के जीवन में भी ये बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। उनकी माता सुब्रधम्मा अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और संस्कारवान महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि सेवा, विनम्रता और अनुशासन का मूल्य भी समझाया। बचपन से ही गिरी ने देखा कि सम्मान केवल पद या संपत्ति से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है चरित्र से, सम्मान मिलता है दूसरों के लिए किए गए कार्यों से। इसी कारण बाद के वर्षों में जब वे बड़े नेता बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने और राष्ट्रपति बने, तब भी उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी दिखाई देती रही। उनके निकट रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। ये गुण उन्हें उनके परिवार और प्रारंभिक संस्कारों से मिला था।
3: प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें इतिहास पढ़ना पसंद था, राजनीतिक घटनाओं को समझना पसंद था, समाज में हो रहे परिवर्तनों को देखना और उनके कारणों पर विचार करना पसंद था। वे उन युवाओं में से एक थे जो केवल नौकरी या करियर के बारे में नहीं सोचते थे। वे ये भी समझना चाहते थे कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है और आम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनकी सोच सामान्य विद्यार्थियों से अलग दिखाई देने लगी थी। उनके भीतर एक जागरूक नागरिक आकार ले रहा था।
4: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। आज के समय में विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बड़ी बात थी। यात्रा लंबी होती थी, संपर्क सीमित होते थे और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना केवल पढ़ाई का अवसर नहीं बल्कि एक नई दुनिया को देखने का अवसर भी होता था। युवा वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे। शायद उन्हें स्वयं भी उस समय ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये यात्रा उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, क्योंकि आयरलैंड में उन्हें केवल डिग्री नहीं मिली, उन्हें एक दृष्टि मिली, उन्हें एक विचार मिला, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिला जिसने आगे चलकर उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया।
3: जब वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे तब वहां का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उग्र और सक्रिय था। आयरलैंड स्वयं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में राष्ट्रीय चेतना की लहरें थी, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, राजनीतिक बहसें चल रही थी, युवा सड़कों पर थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। युवा गिरी ने पहली बार इतने व्यापक जन आंदोलन को निकटता से देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो साधारण लोग भी इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा था, लेकिन आयरलैंड में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीते हुए देखा है।
4: आयरलैंड में बिताए गए वर्षों ने उनके भीतर केवल राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं जगाई बल्कि सामाजिक न्याय की समझ भी विकसित की। यहीं उन्होंने श्रमिक आंदोलनों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं। वो केवल वेतन की बात नहीं करते थे, वो सम्मान की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, समान अवसरों की बात करते थे। इन आंदोलनों ने युवा गिरी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समाज की प्रगति केवल बड़े नेताओं या बड़े उद्योगों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में होती है। यही वो विचार था जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना।
3: आयरलैंड के अनुभवों ने उनके भीतर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन भागीदारी के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। वे समझ चुके थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब वे भारत में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उनका दृष्टिकोण केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था। वे संगठन, संवाद और जनशक्ति पर भी उतना ही बल देते थे। दरअसल आयरलैंड में ही उनके भीतर वह नेता जन्म ले चुका था जिसे भारत आने वाले दशकों में जानने वाला था।
4: लेकिन आयरलैंड में उनका समय केवल अध्ययन और अवलोकन तक सीमित नहीं रहा। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और राजनीतिक रुचियों ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रश्नों पर खुलकर विचार रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश अधिकारियों की नजर उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अंततः उन्हें आयरलैंड छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन जब वे वापस लौटे तब वो केवल कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे जागरूक भारतीय बन चुके थे जिसके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प आकार ले चुका था।
3: भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनके सामने एक सफल पेशेवर जीवन का रास्ता खुला हुआ था। वे चाहते तो एक प्रतिष्ठित वकील बन सकते थे, सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि उस समय भारत का वातावरण तेजी से बदल रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे समय में वीवी गिरी स्वयं को उस संघर्ष से अलग नहीं रख सके।
4: महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, जन भागीदारी और सामाजिक न्याय ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, ये जीवन जीने की एक पद्धति थे। वीवी गिरी ने इन विचारों को गहराई से जाना और उनसे प्रभावित भी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की, सभाओं में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे।
3: स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं था। उस समय इसका अर्थ था निगरानी, गिरफ्तारी, जेल, आर्थिक असुरक्षा और अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयां। लेकिन वीवी गिरी उन लोगों में से नहीं थे जो कठिनाइयों से पीछे हट जाएं। उन्होंने जेल यात्राएं की, संघर्षों का सामना किया और हर चुनौती को राष्ट्र सेवा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। और शायद यही सोच आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी से श्रमिक नेता बनाने वाली थी।
4: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। यदि देश के श्रमिक, किसान और आम नागरिक सम्मानजनक जीवन न जी सके तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में शामिल कर दिया, जिसने लाखों मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की भूमिका तैयार की।
3: स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान वीवी गिरी ने भारत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने केवल राजनीतिक गुलामी को नहीं देखा बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता को भी देखा जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं था। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक, खदानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग, ये सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे थे लेकिन उनकी अपनी स्थिति अक्सर संघर्षपूर्ण रहती थी। वीवी गिरी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। यही सोच उन्हें श्रमिक आंदोलन की ओर लेकर चली गई और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
4: दोस्तों, आज जब हम वीवी गिरी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें भारत के चौथे राष्ट्रपति की याद आती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से बहुत पहले वो भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते थे। दरअसल मजदूरों और कर्मचारियों के बीच उनका जो विश्वास था वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी थी। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो केवल मंच से भाषण देते हों, वो सीधे लोगों के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और फिर उन समस्याओं को व्यवस्था के सामने पूरी मजबूती से रखते थे। शायद यही कारण भी था कि श्रमिक उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते थे।
3: 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का भारत तेजी से बदल रहा था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, नई फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थी, लेकिन इन विकास कार्यों के पीछे काम करने वाले लाखों श्रमिकों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। कार्य के घंटे लंबे थे, सुरक्षा मानकों की कमी थी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नगण्य थी और सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वीवी गिरी ने यह समझा कि यदि इन लोगों को संगठित नहीं किया गया तो उनकी समस्याएं कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। यहीं से उन्होंने श्रमिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया।
4: उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों के बीच रहा। रेलवे उस समय केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो भारत की आर्थिक धड़कन भी थी, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा माध्यम थी और लाखों कर्मचारी इस व्यवस्था को चलाने में दिन रात जुटे रहते थे। लेकिन इन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। वीवी गिरी ने रेलवे कर्मचारियों के बीच जाकर उनके जीवन को समझा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी ये कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं को केवल सुना नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धीरे धीरे वो रेलवे कर्मचारियों के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हो गए।
3: रेलवे यूनियन के साथ काम करते हुए वीवी गिरी ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। उन्होंने देखा कि श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं है, वे सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं, वे भागीदारी से भी जुड़ी हुई हैं, वे इस प्रश्न से भी जुड़ी हुई हैं कि किसी संस्था में निर्णय लेते समय उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो वास्तव में उस संस्था को चलाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे गरिमा, भागीदारी और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया। यह उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील सोच थी।
4: और फिर क्या, धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो केवल संघर्ष की भाषा नहीं बोलते थे, वो संवाद की भाषा भी जानते थे। वो केवल विरोध की बात नहीं करते थे, वो समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्थायी टकराव किसी के भी हित में नहीं है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और संवाद बनाए रखें तो उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं और श्रमिकों का जीवन भी बेहतर हो सकता है।
3: यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में पूरे देश ने गिरी अप्रोच के नाम से जाना। आज भी औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अवधारणा का उल्लेख करते हैं। गिरी अप्रोच का मूल आधार था संवाद, विश्वास और सहयोग। वीवी गिरी का मानना था कि उद्योग, श्रमिक और सरकार ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनमें सहयोग होगा तो विकास होगा, यदि इनमें अविश्वास होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी माना गया।
4: वो अक्सर कहा करते थे कि हड़ताल किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकती, हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते के प्रयास होने चाहिए, मध्यस्थता के प्रयास होने चाहिए और यदि उसके बाद भी न्याय ना मिले तभी संघर्ष का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। ये दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में स्थापित करता था। श्रमिक, उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे और उद्योग जगत भी उनका सम्मान करता था क्योंकि वो संवाद और स्थिरता के महत्व को समझते थे।
3: यही कारण है कि वीवी गिरी को केवल एक ट्रेड यूनियन नेता कहना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। वे श्रम संबंधों के एक गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज जब हम औद्योगिक शांति, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक भागीदारी जैसे विषयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है।
4: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी केवल आंदोलनकारी नेता ही नहीं थे बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त किया। उनकी पुस्तक केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री और जॉब्स फॉर अवर मिलियंस, ये पुस्तकों में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार रखा। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि वो केवल आंदोलन के नेता नहीं थे, वो नीति और सिद्धांत दोनों को समझने वाले विचारक भी थे।
3: 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई थी लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। देश को नई संस्थाएं बनानी थी, नई नीतियां बनानी थी और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को समझता हो। वीवी गिरी उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई।
4: दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सीलोन अर्थात वर्तमान श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं थी बल्कि ये भारत के विश्वास का प्रतीक थी। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था। वीवी गिरी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी व्यवहार कुशलता, संतुलित दृष्टिकोण और संवाद की क्षमता यहाँ भी बहुत काम आई।
3: उच्चायुक्त के रूप में सफलता के बाद उन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी मानो उनके पूरे जीवन अनुभव का स्वाभाविक विस्तार थी। वर्षों तक श्रमिकों के बीच काम करने वाला व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक नीतियों को सुधार सकता था। उन्होंने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे।
4: इसके बाद वीवी गिरी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में उनकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण थी कि वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम किया। वे विवादों से दूर रहते थे। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करती रहें। उनकी निष्पक्षता और संतुलन की व्यापक सराहना की गई।
3: इन सभी भूमिकाओं के दौरान एक बात कभी नहीं बदली, चाहे वे श्रमिक नेता रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, वे हमेशा स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही कारण था कि सार्वजनिक जीवन में उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई।
4: और फिर आया वर्ष 1967। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये केवल एक संवैधानिक पद नहीं था, ये उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, उनके अनुभव, उनकी निष्ठा और उनके योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। लेकिन इतिहास ने उनके लिए अभी एक और बड़ी भूमिका तय कर रखी थी। एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में स्थान दिलाने वाली थी।
3: 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वीवी गिरी भारतीय सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च पदों में शामिल हो चुके थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा विशेष थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाने वाली थी, और ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही नाटकीय भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा दशकों बाद भी की जाती है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐसी ही एक घटना है। यह केवल राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा थी, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे वीवी गिरी।
4: 3 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भी वीवी गिरी की पहचान नहीं बदली। वो पहले ही की तरह सरल रहे, पहले की तरह सहज और पहले की तरह आम लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सम्मान से अधिक जिम्मेदारी का पद था। वो मानते थे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया।
3: उनके कार्यकाल के दौरान भारत अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बना। देश आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, नई नीतियां बन रही थी, नए कार्यक्रम शुरू हो रहे थे और लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर विकसित हो रही थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका संतुलन, धैर्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता की रही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति पद दलगत राजनीति से ऊपर बना रहे।
4: लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे श्रमिकों और आम लोगों के मुद्दे से हट गए होंगे या उन्हें भूल गए होंगे, तो ये उनकी प्रकृति को समझने में शायद भूल होगी। उनकी जड़ें हमेशा समाज के उसी वर्ग से जुड़ी रहीं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके मेहनतकश लोगों में होती है। मशीनें, इमारतें और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें जीवंत बनाने वाला श्रम ही होता है। ये विचार उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनके साथ बना रहा। 1974 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका सम्मान और प्रभाव बना रहा। लोग उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन के हर चरण में समाज के कमजोर और मेहनतकश वर्गों की आवाज को महत्व दिया। उनका सार्वजनिक जीवन किसी एक पद की उपलब्धि तक सीमित नहीं था, वो एक सतत यात्रा थी, और वो थी जनसेवा की यात्रा।
3: उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल इसलिए नहीं था कि वे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, यह सम्मान उनके पूरे जीवन की साधना का सम्मान था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान, एक श्रमिक नेता के रूप में उनका संघर्ष, एक विचारक के रूप में उनकी दृष्टि, एक प्रशासक के रूप में उनकी निष्ठा और एक राष्ट्र नायक के रूप में उनकी सेवाएं, इन सभी का समग्र सम्मान था भारत रत्न।
4: लेकिन शायद वीवी गिरी स्वयं इस सम्मान को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास था। उन लाखों श्रमिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना, उन नागरिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देखा, और उस राष्ट्र का विश्वास जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी।
3: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी उन चुनिंदा भारतीय राष्ट्रपतियों में से हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान राजनीतिक नहीं बल्कि श्रमिक आंदोलन से थी। विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकला कोई नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा हो। यही बात उनके जीवन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसेवा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
4: आज जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर उनके जीवन को देखते हैं तो उनके अनेक विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। श्रमिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, संवाद आधारित औद्योगिक संबंधों की बात हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात हो, हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें मानव गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों शामिल हों।
3: युवा पीढ़ी के लिए भी वीवी गिरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके मूल्यों से होती है।
4: 24 जून 1980 को वीवी गिरी इस संसार से विदा हो गए। उनके निधन के साथ भारतीय सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। देश ने एक अनुभवी राजनेता को खोया, एक स्वतंत्रता सेनानी को खोया, एक श्रमिक नेता को खोया, लेकिन उनके विचार, उनके मूल्य और उनका योगदान आज भी हमारे साथ हैं। समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहते। वो राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वीवी गिरी ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
3: आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें केवल एक पूर्व राष्ट्रपति का स्मरण नहीं करना चाहिए, हमें उस युवा छात्र को भी याद करना चाहिए जिसने आयरलैंड की धरती पर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का महत्व समझा। हमें उस स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उस श्रमिक नेता को भी याद करना चाहिए जिसने मजदूरों की आवाज को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। और हमें उस राष्ट्र नायक को भी याद करना चाहिए जिसने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
4: वीवी गिरी आज भी जीवित हैं। हर उस श्रमिक के संघर्ष में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, हर उस युवा के सपनों में जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हर उस नागरिक की चेतना में जो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति पर विश्वास करता है, और हर उस भारतीय के हृदय में जो ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीवी गिरी का जीवन संघर्ष की कहानी है, सेवा की कहानी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कहानी है, और इन सब से बढ़कर ये उस विश्वास की कहानी है कि सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के इतिहास को बदल सकते हैं।
3: तो भारत विभूति के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपने जाना भारत के चौथे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के बारे में। भारत विभूति कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन पुष्पक श्रीवास्तव और वाचन मैं दीपेश
4: और मैं मनीषा।
3: इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत।
4: नमस्कार, नमस्कार।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। झमाझम बारिश से भीगी शाम में जब पद्मश्री अश्विनी भिड़े देश पांडे की राग मियां मल्हार के सुर गूंजे, तो पूरा सभागार मानो संगीत और प्रकृति के अनूठे संगम का साक्षी बन गया। मौका था भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरमयी परंपरा और रागों की अनंत अभिव्यक्तियों को समर्पित 3 दिवसीय संगीत समारोह गायन पर्व के शुभारंभ का। ये शुक्रवार को भारत भवन में हुआ। पहले दिन शास्त्रीय गायिका स्वाति तिवारी और प्रसिद्ध गायिका पद्मश्री अश्विनी भिड़े देश पांडे ने संगीत प्रेमियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध रागों से परिचित कराया। देश पांडे ने राग मियां मल्हार की विलंबित 3 ताल में 2 पारंपरिक बंदिशों की प्रस्तुति देकर राग की गंभीरता पेश की। पहली बंदिश करीम नामो तेरो तू साहिब सरदार में भक्ति और शास्त्रीयता का संगम देखने को मिला। उनके आलाप बोल आलाप और स्वर विस्तार ने राग के मेघ में स्वरूप को उकेरा। इसके बाद प्रस्तुत दूसरी बंदिश ने भी राग की गरिमा और माधुर्य को उसी प्रभाव के साथ आगे बढ़ाया। इसने वर्षा ऋतु की अनुभूति स्वरों के माध्यम से करवाई। इसके बाद उन्होंने द्रुत लय में बंदिश बोलो रे पपीहरा सुनाई। इस मौके पर तबले पर यति भागवत, हारमोनियम पर

मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा प्रदेश के जनजातीय चित्रकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और चित्रों के विक्रय का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हर महीने लिखंदरा प्रदर्शनी दीर्घा में शलाका के तहत किसी जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में शुक्रवार से भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की 75वीं शलाका चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी 30 जुलाई तक मंगलवार से रविवार दर्शकों के लिए खुली रहेगी। सुनीता परमार मूल रूप से झाबुआ जिले के लंबेला गांव की रहने वाली हैं। उनका बचपन से लेकर वर्तमान तक का जीवन भोपाल में ही बीता है। वे कहती हैं, बचपन से ही मुझे घर की दीवारों पर चित्र बनाने और उन्हें रंगों से सजाने का शौक रहा है। कुछ वर्षों तक उन्होंने प्रसिद्ध भीली चित्रकार जामू सिंगाड़ के सानिध्य में रहकर भीली चित्रकला की बारीकियां सीखी। उन्होंने उनके सहायक के रूप में भी काम किया। जामू सिंगाड़ उनके रिश्ते में बुआ के बेटे हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र रूप से चित्रकला के क्षेत्र में सृजनरत हैं। उन्होंने बताया कि मेरे चित्र नई दिल्ली, बेंगलुरु सहित कई शहरों में आयोजित संयुक्त चित्रकला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो चुके हैं। उनके चित्रों में जंगल, पहाड़, पशु पक्षी, जनजातीय जीवन के संस्कारों की झलक विशेष रूप से दिखाई देती है। वे अपनी सफलता का संपूर्ण श्रेय अपने भाई जामू सिंगाड़ को देती हैं। उनका कहना है कि उनकी सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन ने ही मेरी चित्रकला को निखारा। उन्होंने मुझे नई पहचान दिलाई।

द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल द्वारा न्यू मार्केट स्थित कालीबाड़ी परिसर में बुधवार से 20 दिवसीय रंगमंच एवं अभिनय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस प्रशिक्षण शिविर का संचालन और मार्गदर्शन अभिनेता निर्देशक एवं अभिनय प्रशिक्षक ताना जी कर रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवोदित कलाकारों को किसी बंधी बंधाई तकनीक में ढालने के बजाय उन्हें चरित्र को जीवंत करने का खुद का मौलिक तरीका खोजने में मदद करना है।

क्षेत्रीय प्रकृति विज्ञान संग्रहालय की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसके तहत संग्रहालय परिसर में दुर्लभ और औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। संग्रहालय की वैज्ञानिक डीआर कार्यालय अध्यक्ष डॉक्टर बिनिश रफत संग्रहालय में भेंट किए गए, कई पौधे लगाए गए। वन महोत्सव के तहत 7 जुलाई तक संग्रहालय में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे रोपे जाएंगे।

बिहार की मधुबनी कला के रूप में मानव संग्रहालय में पीतल का खाना डिब्बा का उद्घाटन हुआ। आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट रही परंपराओं चीजों को जमा करने महा का प्रादर्श श्रृंखला के तहत इस पर काम हुआ। यह हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया गया। देशभर की कला संस्कृति को एक जगह जमा करने के लिए काम हो रहा है। इस पारंपरिक टिफिन को स्थानीय कसीरा समुदाय के शिल्पकारों ने तैयार किया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें सामान आकार के 3 पीतल के पात्र एक के ऊपर एक क्रमबद्ध उठते बैठते हैं, जिन्हें दोनों ओर लगी चमचाकार लॉकिंग छड़ों से मजबूती से लॉक किया जाता है।

मध्य प्रदेश की दो अनूठी लोक परंपराओं निमाड़ के पारंपरिक व्यंजन और अगरिया समुदाय की सदियों पुरानी लोह धातुकर्म कला को भारत सरकार की राष्ट्रीय अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनके साथ प्रदेश के ऐतिहासिक मैहर बैंड को भी सूची में स्थान मिला है। इससे मध्य प्रदेश की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने की दावेदारी और मजबूत हुई है।

हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में 9 से 11 जुलाई तक समकालीन हिंदी पत्रकारिता परंपरा परिवर्तन और भविष्य विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। विश्व रंग व स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षाविद व विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।

हिंदी सिनेमा के महान गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की स्मृति में मध्य प्रदेश की उभरती गायन प्रतिभाओं को मंच देने के लिए प्रथम बॉन्डू अवार्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य किशोरदा के गीतों को जीने वाले कलाकारों को हौसला बढ़ाना और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखना है। इसके लिए 15 तारीख निर्धारित की गई है। बताया गया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 15 जुलाई निर्धारित की गई है। देश भर से चुने गए शीर्ष 15 प्रतिभागियों के बीच फाइनल मुकाबला 4 अगस्त को होगा।

रंगायन आर्ट गैलरी द्वारा चित्रांकन नामक सामूहिक कला प्रदर्शनी का आयोजन रविवार से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी पुस्तकों के पन्नों को कैनवास बनाकर रची गई कलाकृतियों पर केंद्रित है, जिसमें स्मृतियों, कल्पना और दृश्य कथाओं को कलाकारों ने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया है। प्रदर्शनी 12 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अपनी सूटकेस यहाँ रख देता हूँ।
1: अरे अरे हम लोग पहुँच गए हैं भाई। दिव्या, मनोज, नीचे उतरो बस से।
2: पहले मैं उतरूंगा। अरे हट जा।
3: अरे अरे अरे आराम से बेटा, आराम से, चोट ना लगे। सुनिए जी, बारिश रुकने तक यही कहीं पास में रुक जाए तो अच्छा रहेगा।
0: अरे वो सामने मुझे एक चाय की दुकान नजर आ रही है, वहीं रुकते हैं, बच्चे कुछ खा भी लेंगे।
3: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: माँ देखो ना, दिव्या ने मुझे पहले उतरने नहीं दिया।
3: अरे अरे अरे बेटा, बहन से झगड़ा नहीं करते। देख चलो चलो आओ।
0: अरे चलो मत झगड़ा, चलो चलो चलो
4: चलो ना बेटा।
5: आइए आइए आइए, गजबीय काका की चाय की दुकान पर आपका स्वागत है। बैठो बच्चों, बैठो बैठो बैठो
0: बैठो बैठो बैठो।
5: शाबाश।
2: क्यों दिव्या, हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उतरने दिया?
6: देखो भैया, तुमने फिर झगड़ा शुरू किया। झगड़ा करना बुरी बात है।
2: तुमने फिर भाषण शुरू कर दिया।
6: अरे मैं तो शांति की बात कर रही थी।
0: तुम लोग फिर शुरू हो गए, झगड़ा मत करो।
5: बच्चे हैं बच्चे। बच्चों ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, और तुम्हारे माँ पिताजी के लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है?
2: ये बिस्कुट खाकर ना फिर शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देगी।
6: क्यों नहीं, मैं तो बड़ी होकर भी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दूंगी। हाँ।
2: एक लड़की की बात सुनेगा कौन?
5: ऐसे मत कहो बेटे, देखो हमारे देश की महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए हैं।
6: हाँ, सुना?
5: देश को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े काम में भी उन्होंने बराबर की भागीदारी की है, और पूरे विश्व के सामने भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी भी निभाई है।
3: लगता है काका आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।
7: अरे भाई, गजबिया काका से ही नई पीढ़ी के लोगों को देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है।
3: फिर तो हमें भी किसी क्रांतिकारी के बारे में बताइए ना।
0: हाँ काका बताइए ना, ताकि हमारे बच्चों को भी स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों को जानने का अवसर मिले।
5: अच्छा भाई बताता हूँ, इस बिटिया की बात सुनकर मुझे सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित का ध्यान आ रहा है। एक ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद तक पहुंची।
2: हाँ,
5: उस समय हमारा भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रत्येक देशभक्त अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र कराने के संग्राम में जुटा हुआ था। हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था।

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: तुम देश के साथ गद्दारी किया है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी।
0: ये देश हमारा है, तुमने तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। व्यापारी और मेहमान बनकर आए और हमारे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। वंदे वंदे
1: तुम वंदे, अभी नौजवान हो, हम तुम्हें माफ कर सकता है। तुम अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगा।
0: जीवन भारत माता की पूजा वेदी पर अर्पण करने के लिए होता है, देश के दुश्मनों के पास गिरवी रखने के लिए नहीं।
1: इस क्रांतिकारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दो।
0: वंदे मातरम।

0: जब देश में ऐसा वातावरण था तभी उस कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वरूप कुमारी। दिन था 18 अगस्त सन 1900।
1: मेरी प्यारी सी बहन, इधर देख।
2: मेरी उंगली क्यों जवाहर? लगता है बहन के जन्म से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हुई है।
1: खुशी क्यों नहीं होगी, मुझे भैया कहने वाली एक प्यारी सी बहन जो आ गई है। ये देखो। इधर देख।
0: ये वही जवाहर थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वो 11 वर्ष के थे जब उन्हें छोटी प्यारी बहन स्वरूप कुमारी का उपहार मिला। माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो एक नामी वकील थे। वो अपनी माता की ही तरह सुंदर थी। जन्म पर उन्हें नाम दिया था ट्रम्पेट, याने तुरही भोपू। शिक्षा योग्य होने पर स्वरूप कुमारी के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके लिए योग्य शिक्षक भिजवाया।
1: गुरु जी, रामायण को पढ़कर हम क्या जानेंगे?
3: बिटिया स्वरूप, रामायण हमारी सच्ची भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है।
1: हमारी संस्कृति?
3: हाँ बिटिया, हमारी संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है। बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश में सदा से ही प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया है।

0: काम कर रही है। देश में फिर से राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिटिया।
1: मैं भी राम राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करूंगी गुरुजी।
0: अवश्य करना बिटिया, अवश्य करना। राम राज्य में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया जाता है।
1: जी गुरुजी।

0: रामायण के प्रशिक्षण के साथ ही घर के देश प्रेमी वातावरण ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो स्वयं में एक मेधावी छात्रा थी। सन 1916 में उन्हें एक निबंध लिखने पर पुरस्कार मिला।
1: अच्छा।
0: और उसी वर्ष उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई।
1: वो क्या?
0: उन्हें लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला।
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
2: बाबू की
3: जय!
2: महात्मा गांधी की
3: जय!
4: बापू।
5: हाँ स्वरूप बिटिया।
4: आपसे एक बात पूछूं बापू?
5: अवश्य पूछो बिटिया।
4: इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं, आप हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं लेते। बापू, इस तरह नंगे शरीर क्यों रहते हैं?
5: इसका भी एक कारण है बिटिया। जब मैं भारत आया तो मेरे गुरुजी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे भारत भ्रमण करने के लिए कहा, जिससे मैं भारत की जनता की दुर्दशा को सही तरह जान सकूं। और जब मैंने भारत की निर्धन और लगभग निर्वस्त्र जनता को देखा तो अपने कपड़े बोझ और शर्म से भरपूर लगने लगे। और बस तभी से मैंने खादी के एक टुकड़े से अपने शरीर को ढांप लिया।
4: क्या हमारे देश की जनता की हालत बहुत खराब है बापू?
5: हाँ बिटिया, उनकी दशा को जानने के लिए तुम्हें उनके निकट जाना होगा।
4: मैं अवश्य जाऊंगी बापू, मैं भी देश के लिए काम करूंगी।
5: अवश्य करो बिटिया, अवश्य करो। देश के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले देश को स्वतंत्र कराना, फिर राम राज्य की स्थापना करना।
4: मैं राम राज्य के बारे में जानती हूँ बापू।
5: अच्छा, मोतीलाल जी, आपकी बिटिया बहुत होनहार है। इसे साबरमती आश्रम भेज दीजिए, वहाँ ये भी देश सेवा में अपना योगदान देगी।
0: तो इस तरह स्वरूप कुमारी को साबरमती आश्रम भेज दिया गया और वहीं उनकी देश सेवा की यात्रा आरंभ हुई।
6: बहनों, बाबूजी ने आह्वान किया है कि विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अंग्रेज हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर अपनी वस्तुएं हमारे देश में डाल रहे हैं। हम उनकी वस्तुएं खरीदकर अपने देश का धन बाहर नहीं जाने देंगे। हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे,
7: जलाएंगे, होली जलाएंगे।
6: विदेशी माल और शराब के अड्डों पर धरना देंगे,
7: बिल्कुल देंगे।
6: हम उन अत्याचारियों की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे,
7: कभी सफल नहीं होने देंगे।
6: तो चलो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है।
7: हम अपने देश के प्रति बाहर नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे।

0: इस तरह केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वरूप कुमारी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान आरंभ कर दिया। हाँ, इन्हीं आंदोलनों के दिनों में उनकी भेंट रणजीत पंडित नामक एक गुजराती युवक से हुई। वो कोलकाता में वकालत करते थे और उन्होंने कश्मीर के अमर कवि कलहण की राज तरंगिनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वरूप और रणजीत ने विवाह सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया। 1921 में महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद स्वरूप कुमारी का नाम बदलकर विजय लक्ष्मी पंडित रख दिया गया।
1: अच्छा।
0: परंतु उनकी राह नहीं बदली। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान पहले की भांति बना रहा।
2: देशवासियों, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत की यात्रा पर भेजा है। वो हमारी किसी भी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम भारतीयों को अपने देश का शासन सौंपने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी मंशा गलत है। बापूजी के आदेश पर पूरे देश में उनकी यात्रा का विरोध किया जाएगा। हमें यहाँ राजकोट में ये विरोध करने का आदेश मिला है। हम काले झंडों के साथ यहाँ एक जुलूस निकालेंगे और यदि अंग्रेज सरकार ने चाहा तो गिरफ्तारियाँ भी देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्वरूप कुमारी एक संपूर्ण महिला थी। सक्रिय देश सेवा के साथ ही उनका पारिवारिक जीवन भी चलता रहा। सन 1923 में उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, परंतु कुछ ही महीनों बाद वो चल बसी। आगे चलकर उन्हें दो और पुत्रियों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1926 में वो अपने पति के साथ यूरोप की यात्रा पर गईं। वहां से लौटने के बाद उनके पति श्री रणजीत ने अपनी वकालत इलाहाबाद में ही आरंभ कर दी। सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसके साथ ही स्वरूप कुमारी ने, जो अब विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी जाती थी, स्वाधीनता संग्राम में और अधिक समय देना आरंभ कर दिया।
3: अंग्रेजों के अत्याचार तो लगातार बढ़ते ही जा रहे।
4: हाँ भाई, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले किसी नेता को नहीं छोड़ा, सभी को जेलों में ठूंस दिया है।
3: विजय लक्ष्मी जी के पति रणजीत जी को भी तो नैनी जेल में रखा गया है।
4: उससे भी बुरी बात ये है कि ये अंग्रेज महिलाओं के प्रति संवेदना की भावना नहीं रखते। विजय लक्ष्मी जी को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूरे एक साल के कठोर कारावास की सजा दी है।
3: अरे भैया, जब किसी चीज की अति होती है तो उसे समाप्त होना ही होता है। तुम देखना, देशभक्त अब अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर ही मानेंगे।
4: हाँ।
0: जेल से बाहर आने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ नगर पालिका बोर्ड के चुनाव में विजय प्राप्त की। फिर स्वायत्तता विधेयक पास हुआ जिसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात कही गई।
1: अच्छा?
0: बेटा, जो आज उत्तर प्रदेश है ना।
1: हाँ?
0: तब ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा?
0: हाँ, वहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने और सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित को स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और वो आधुनिक भारत की पहली महिला मंत्री बनी।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसी समय उन्होंने पंचायत राज विधेयक का मार्गदर्शन किया और संविधि पुस्तिका पर यह विधेयक रखा गया। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन युद्ध में घिर गया था। उसने भारत की जनता और भारत के नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया। इसके विरोध में सभी भारतीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए। नाराज अंग्रेज सरकार ने सभी को बंदी बना लिया। विजय लक्ष्मी पंडित भी उनमें शामिल थी।

0: इसी बीच सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। एक बार फिर गिरफ्तारियां हुई। विजय लक्ष्मी पंडित को भी जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब होने पर सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके पति श्री रणजीत पंडित भी एक अलग जेल में बंद थे। हृदय रोग के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। परंतु बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद सन 1944 में उनका निधन हो गया। विजय लक्ष्मी जी अकेली पड़ गईं। उस समय के संयुक्त परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें पुत्र न होने के कारण पारिवारिक संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के इस दर्द को उन्होंने समझा और इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया, पर उस कठिनाई में भी उन्होंने देश सेवा का काम नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने वहां जाकर सेवा कार्य आरंभ किया। अनाथ बच्चों के लिए बाल कोष की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस निधि के लिए धन जुटाया। उनके इस काम से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए।
1: स्वरूप
2: बापू,
1: आज भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखे। ब्रिटिश सरकार के गलत प्रचार के कारण भारत की सही तस्वीर उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम संभालो।
2: जी बापू।
0: और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने का काम संभाला। आगे चलकर यही उनका मुख्य काम और उनकी पहचान बन गया।
2: अच्छा।
0: द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना आरंभ कर दिया, जो अपने तरीके से देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर रहे थे। बस भारत की जनता भड़क गई।
3: आजाद हिंद फौज के सैनिकों को
4: मुक्त करो, मुक्त करो।
3: आजाद हिंद फौज के सैनिकों को
4: मुक्त करो, मुक्त करो।
0: देश की ओर से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे नामी वकीलों ने पक्ष संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय लक्ष्मी जी ने भारत का पक्ष रखा। आखिर ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना ही पड़ा। फिर 1946 में एक बार फिर विजय लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और फिर से अपना पुराना मंत्रालय संभालने लगी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही उनकी देश सेवा और भी बढ़ गई, पर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकता थी। गांधी जी की सलाह पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद उन्हें रूस और फिर अमेरिका और इंग्लैंड का राजदूत बनाया गया।
2: अच्छा।
0: वो विश्व की पहली महिला राजदूत बनी। जब वो अपना कार्यकाल समाप्त कर भारत लौटी तो 1952 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने की उनकी जिम्मेदारी बनी रही। और फिर 1953 का वो दिन आया जो भारत के लिए गौरव से भरा था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।
5: अच्छा। मैं भारत के लिए किसी भी पक्षपात की अपेक्षा नहीं करती और न ही दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय प्रवासियों के लिए कोई उपकार। मैं चार्टर के प्रमाणित उल्लंघन पर इस महासभा के पंच निर्णय की मांग करती हूँ।
0: वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए पहली महिला और एकमात्र भारतीय सदस्य थी। उन्होंने भारतीय महिला की शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद वो इंग्लैंड और स्पेन की राजदूत भी बनी।
6: अच्छा?
0: हाँ, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला। फिर देश को भारी क्षति हुई।
6: क्या?
0: जवाहरलाल जी का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी जी उनकी सीट के लिए हुए उपचुनाव में विजयी होकर लोकसभा पहुंची। इस तरह वे स्वतंत्रता के बाद भी देश सेवा में लगी रहीं। पर व्यक्तिगत थकान के कारण उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया और देहरादून में रहने लगी। वहीं 1 दिसंबर 1990 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रांत की महिलाओं की बराबर भागीदारी थी। स्वतंत्र भारत सदैव उन महिला क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित एक ऐसी क्रांतिकारी थी।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में विश्व योग और संगीत दिवस के अवसर पर।
1: और आपकी तालियों के साथ एक बार पुनः इन कलाकारों का स्वागत हो। और बस तलीन त्रिवेदी युवा कलाकार तबले पर संगत कर रहे हैं। अपने नाना जी से इन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और अब अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और यह मंचम पुनः प्रदक्षिणा जी आपको सौंप रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं प्रदक्षिणा भट्ट आज आप सभी के समक्ष राग यमन कल्याण प्रस्तुत करने जा

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफ एम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने हमें बार बार चेताया है कि हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें विचार शक्ति इसलिए दी है कि हम उसका यथा योग्य इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं कि जिस प्रकार पशुओं को चाहे जो कोई हांक ले जाता है, उसी प्रकार कोई भी जोर शोर के साथ कुछ कहने लगे और हम चुपचाप उसके पीछे हो लें। इसीलिए हमें अपने अतीत और वर्तमान का सही मूल्यांकन कर उन्हीं के आधार पे भविष्य की योजना बनानी चाहिए। हमें केवल भावनाओं के द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए।
1: स्वामी जी के अनुसार सबसे आवश्यक बात है चरित्र। चरित्र के बिना कोई भी महान कार्य साध्य नहीं होगा। भारत का उत्थान चरित्रवान भारतीयों के द्वारा ही संभव होगा। इसके लिए हमें कई बलिदान भी देने होंगे। इस प्रकार के कार्यों के अध्ययन के लिए विवेकानंद साहित्य अत्यंत मार्गदर्शक सिद्ध होगा। वो हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय करा देगा। वे कहते हैं,
2: तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। ब्राह्मणेतर जातियों से मैं चाहता हूं, ठहरो, जल्दी मत करो। ब्राह्मणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। समाचार पत्रों से कहा, और इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय न करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर जो कि पाप है उससे लड़े। ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो, बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा।
0: उन्होंने हमें बार बार फटकारा है, मुर्दा कहा है, ममी कहा है, ताकि हम उज्जीवित हो उठें।
2: तुम ऊंची जात वाले क्या जीवित हो? तुम लोग हो 10,000 वर्ष पीछे के ममी, जिन्हें सचल शमशान कहकर तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने घृणा की है। भारत में जो कुछ वर्तमान जीवन है वो उन्हीं में है, और सचल शमशान हो तुम लोग। तुम लोगों की अस्थिमय अंगुलियों में पूर्व पुरुषों के संचित कुछ अमूल्य रत्नांगुलियां हैं। तुम्हारे दुर्गंधित शरीरों को भेंटती हुई पूर्व काल की बहुत सी रत्न पेटिकाएं सुरक्षित हैं। उन्हें उत्तराधिकारियों को दो, जितने शीघ्र दे सको दे दो। तुम शून्य में विलीन हो जाओ और फिर एक नवीन भारत निकल पड़े।
1: स्वामी जी भविष्य दृष्टा थे, ये उन्होंने समझ लिया था।
2: ये निम्न श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर होने वाले तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे, तब उनकी फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे। उन्हीं ने तुम्हें सभ्य बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ मिटा देंगे। इसलिए कहता हूं, इन सब निम्न जाति के लोगों को विद्यादान ज्ञान दान देकर इन्हें नींद से जगाओ, वे अवश्य जागेंगे। तब वे भी तुम लोगों के लिए उपकरों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हर एक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो आप ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा है। जितनी ही वो देर करेगा उतनी ही वो सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे।
0: उन्हें स्वार्थ परता से घृणा थी। स्वार्थी लोगों को स्वामी जी बार बार चेताया करते थे कि वे निस्वार्थ बने, सबको साथ लेकर आगे बढ़े।
2: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को स्वयं की तरह देखना, क्या यह वाक्य केवल पोथी में निबद्ध रहने के लिए है? लोग गरीबों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते, वे फिर मुक्ति क्या दे सकते हैं? दूसरों के श्वास प्रश्वासों से जो अपवित्र बन जाते हैं, वे फिर दूसरों को क्या पवित्र बना सकते हैं? अस्पृश्यता एक प्रकार की मानसिक व्याधि है, उससे सावधान रहना।
1: सभी भारतीय हमारे अपने हैं, उन्हें भी जीने का हक चाहिए।
2: उठो और अपना पौरुष प्रकट करो, अपना ब्राह्मणत्व दीप्त करो, प्रभु भाव से नहीं, अंधविश्वासों और पूर्व पश्चिम के प्रपंचों के सहारे पनपने वाले विकृत घातक अहम भाव से नहीं, बल्कि सेवक की भावना के साथ दूसरों को ऊपर उठाकर। धन विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा रहनी चाहिए। सभी विषयों में स्वाधीनता यानी मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही पुरुषार्थ है। जो सामाजिक नियम इस स्वाधीनता के स्फुरण में बाधा डालते हैं वे ही अहित कर्म हैं, और ऐसा करना चाहिए जिससे वे जल्द नाश हो जाएं। जिन नियमों के द्वारा सब जीव स्वाधीनता की ओर बढ़ सकें उन्हीं की पुष्टि करनी चाहिए।
0: पहले श्रेष्ठ वस्तु का दान करो, बचे हुए को अपना कहो, गण देवता की पूजा ही सच्ची पूजा है।
2: प्रत्येक वस्तु का अग्रांश दीनों को देना चाहिए, अवशिष्ट भाग पर ही हमारा अधिकार है। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। वर्शिप ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, अंग्रेजी के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रही हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें।
1: स्वामी जी कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है, उसकी अवहेलना मत करो। मानव देह ही सबसे सुंदर सृष्टि है, उसी में ईश्वर का वास है।
2: अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। यदि तुम अपने भाई मनुष्य की, नर ईश्वर की उपासना नहीं करते तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकोगे जो अव्यक्त है? किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है।
0: ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप विद्यमान है, प्रेम, दया, भक्ति और सेवा यही बीज मंत्र हैं।
2: अपने तन मन और वाणी को जगद्धिताय अर्पित करो। तुमने पढ़ा है मात्र देव भव पितृ देवो भव, अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूं दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव, गरीब निरक्षर मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो, इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। मैं अच्छी तरह जानता हूं भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों की बलि चाहती है। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है।
1: उन्हें युवकों से बहुत आशा थी। भविष्य का भारत गढ़ने के लिए उन्होंने उन्हीं का आह्वान किया था।
0: अपने को दुर्बल मत समझो, मत सोचो हम क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो।
2: गांव गांव तथा घर घर में जाकर लोकहित एवं ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। चाहे अपने को नरक में क्यों ना जाना पड़े, परंतु दूसरों की मुक्ति हो। अरे मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो ईंट पत्थरों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना क्या अच्छा नहीं? तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी ये देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी।
1: निस्वार्थ सेवा करना यही मूल मंत्र है। भगवान को ढूंढ रहे हो? आओ मैं बताता हूं वो कहां है।
2: केवल वही व्यक्ति सब की अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वो भी एक बुद्ध बन जाएगा, और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहां ढूंढने चले हो? ये सब गरीब दुखी निर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो।
0: अपना धर्म समझकर कर्म करो, निष्काम कर्म में ही मुक्ति है।
2: हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनको सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। ये सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनों की मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम है, ताकि हम रोगी पागल कोढ़ी पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। अपने को भूल जाओ, आस्तिक हो या नास्तिक, प्रत्येक के लिए यही प्रथम पाठ है। जब तुम सुख की कामना समाज के लिए त्याग सकोगे तब तुम भगवान को पा सकोगे।
1: विवेकानंद जी ने लिखा है, क्या तुम अंधेरे में भटक रहे हो? प्रार्थना करो, प्रकाश दिख जाएगा।
2: आओ हम सब प्रार्थना करें। हे कृपामय ज्योति, पथ प्रदर्शन करो, और अंधकार में से एक किरण दिखाई देगी। पथ प्रदर्शक कोई हाथ आगे बढ़ जाएगा। जो दारिद्र्य पुरोहित प्रपंच तथा प्रबलों के अत्याचारों से पीड़ित हैं, प्रत्येक आदमी दिन रात प्रार्थना करें। मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा उन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना पसंद करता हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक हूं और न सिद्ध पुरुष हूं। मैं निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। ये 20 करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और मूर्खता के दलदल में फंसे हैं, उनके लिए किसका हृदय रोता है? कौन उनके दुख में दुखी है? ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं, ये ही तुम्हारे इष्ट बने। निरंतर इन्हीं के लिए सोचो, इन्हीं के लिए काम करो, इन्हीं के लिए निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा।
0: संवेदनशील बनो, दूसरों के दुख के बारे में सोचो, अपना दुख भुलाने के लिए दूसरे के दुखों को दूर करने की कोशिश करो।
2: बड़े काम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय की अनुभव शक्ति। क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम ये सब सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हें निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया? क्या ईश्वर की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध विसर गए हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि हां तो जानो तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हां, केवल पहली ही सीढ़ी पर। क्या इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों की भर्त्सना ना कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेश वासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है?
1: थको मत, हारो मत, बैठो मत, चलते चलो, कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो।
2: किंतु इतने से ही पूरा ना होगा। क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? फिर भी तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे? क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है? यदि तुम में ये तीन बातें हैं तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है जिससे उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्य में परिणित हो जाए। उसी के लिए प्रयत्न करो मेरे साहसी महान सदाशय बच्चों। काम में जी जान से लग जाओ, नाम, यश अथवा अन्य तुच्छ विषयों के लिए पीछे मत देखो। स्वार्थ को बिल्कुल त्याग दो और कार्य करो, आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा।
0: पुरुषार्थ की जरूरत है, बाधाएं तो आएंगी ही, उसे लांघना ही पुरुषार्थ है। स्वामी जी लिखते हैं,
2: मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूं वो है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो, बल, पुरुषार्थ, क्षात्र वीर्य और ब्रह्म तेज। आज्ञा पालन के गुण का अनुशीलन करो, लेकिन अपने धर्म विश्वास को न खो। गुरुजनों के अधीन हुए बिना कभी भी शक्ति केंद्रीभूत नहीं हो सकती, और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता। जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो, सत्य पर डटे रहो, बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है।
1: स्वामी जी हमेशा आशा की वाणी सुनाते रहे, निराशा ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं।
2: नीति परायण तथा साहसी बनो, अंतःकरण पूर्णतया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो, प्राणों के लिए भी कभी ना डरो। धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा पच्ची मत करो, कायर लोग ही पाप आचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी पाप अनुष्ठान नहीं करते, यहां तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। इन दो चीजों से बचे रहना, क्षमता प्रियता और ईर्ष्या, सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना।
0: आशा, आशा और आशा, अच्छे की आशा, भारत को गौरवान्वित देखने की आशा, इसी आशा के सहारे वे कार्य करते गए। उन्होंने कहा था,
2: फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निस्तृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीब लोग सुखी होंगे। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, वो भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वो केवल सो रही है। अतः यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल करना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की, और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने।
1: स्वामी जी को भारत की भावी पीढ़ियों पर विश्वास था। उन्होंने उन्हें बार बार उसी अग्नि मंत्र में दीक्षित करना चाहा है, उठो, जागो, जागो।
2: पहले आदमी, मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है, और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं। उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
2: तो अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। अब ये सभा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
4: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान, और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरी है।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हम आपको सुनाने वाले हैं पारसी रंगमंच के प्रसिद्ध नाटककार आगा हश्र कश्मीरी के नाटक रुस्तम ए सोहराब से एक अंश। आपको बता दें कि पारसी रंगमंच हमारे यहां रंगमंच का प्रारंभ था और इसका प्रारंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद शुरू हुआ, 1860 के आसपास। सतारा कोल्हापुर से लेकर महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक इसकी जड़ें थीं। पारसी रंगमंच में दरअसल पारसी लोग कुछ अभिनेता, नाटककार और तकनीशियनों को मासिक अनुबंध पर रखते थे और उन्हें अपनी कंपनी में काम देते थे। ये उनके लिए एक व्यवसाय था, बिजनेस था, ना कि कोई कला की सेवा थी। अंग्रेजों के प्रभाव में पारसी रंगमंच के नाटक कंपनियों के नाम भी अद्भुत से थे। कुछ नामों की वानगी देखिए, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, न्यू अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, क्रॉस कंट्री विक्टोरियन थिएट्रिकल कंपनी, इस प्रकार के अनेक नाट्य दल थे। प्रत्येक कलाकार महंगे अनुबंधों पर होता था और दर्शकों से जो टिकट राशि मिलती थी उसके आधार पर ही पारसी रंगमंच चलता था। पारसी रंगमंच कमर्शियली, आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध रंगमंच था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1930 के दशक में श्री आगा हश्र कश्मीरी एक माह का 35,000 रुपया तक चार्ज करते थे नाटक कंपनी से। वो महंगे सिगार पीते थे, कोट और सूट पहनते थे और शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य जो पढ़ते हैं वो श्रोता जानते हैं, विलियम जॉन शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे। उनके नाटकों में कई बार शेक्सपियर के चरित्रों की अनुगूंज भी दिखाई पड़ती है। रुस्तम ए सोहराब मूल रूप में उर्दू अदब, या जिसे आप कहें हिंदुस्तानी जुबान, उर्दू और हिंदी और अरबी का मिश्रण, हिंदुस्तानी जुबान में रचित रचना है। ये पिता पुत्र संबंधों पर आधारित एक नाटक है जिसमें युवावस्था में रुस्तम अपने पड़ोसी मुल्क जाता है जो उसका दुश्मन देश है और वहां के राजा की लड़की के साथ उसका गंधर्व विवाह हो जाता है। तहमीना उनका नाम है। तहमीना गर्भवती होती हैं और एक पुत्र को जन्म देती हैं जो उसका नाम सोहराब है। पिता और पुत्र दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। सोहराब युवा होने पर अपने पिता से मिलने जाना चाहता है। तहमीना एक पत्नी और एक माँ के रूप में एक स्त्री का क्या द्वंद्व होता है, नाट्य पाठ के अंश में आपको इसकी एक वानगी मिलेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि जुबान और तहजीब का सही होना, तलफ्फुस यानी उच्चारण का सही होना कितना जरूरी हो जाता है जब हम कला से जुड़े किसी माध्यम में काम करते हैं। इसीलिए साहित्य कला संगीत विहीना साक्षात पशु पुच्छ विहीना, ऐसा महाकवि भर्तृहरि ने भी कहा है और कई जगह अन्य विद्वजनों ने भी कहा है। प्रस्तुत रचना पाठ में फिर आप पाएंगे कि एक स्त्री चरित्र केंद्र में है जो अपने पिता के सामने पुत्री है, अपने पति के इंतजार में बैठी प्रेयसी पत्नी है और सोहराब के वियोग में व्याकुल एक माँ है। बेटा जाना चाहता है और उसे डर है कि कहीं रुस्तम की तरह वो भी भूल ना जाए, क्योंकि ईरान की जमीन जादू की जमीन है बेटे, ऐसा बोलती है वो। लेकिन अंत में वो आशीर्वाद भी देती है कि जाओ और अपने पिता को ढूंढो। और रुस्तम ने उसे जो विदा होते समय एक मोहरा दिया था और कहा था, लड़का हो तो इसके बाजू में बांधना और लड़की हो तो सिर के बालों में, मैं पहचान लूंगा। ये आशीर्वाद देती है और कुछ नीति वाक्य कहती है अंत में, वो बहुत सुंदर है, कि तलवार कमजोरों की मुहाफिज है, कमजोरों की रक्षक है, पांव में पड़े हुए दुश्मन को माफी मांगने पर क्षमा कर देना चाहिए। इस तरह के कुछ नीति वाक्य हैं जो ये बताते हैं कि दरअसल वीरता और शूरवीरता के अभिप्राय भी अलग अलग अर्थों में लिए जा सकते हैं। उसका आधुनिक सड़कों पर होने वाली गुंडागर्दी से बहुत भिन्न अर्थ हो सकता है। तहमीना के भूमिका में शोभा चटर्जी एक बार फिर आपको सुनाई देंगी तहमीना के चरित्र में, और पहले हिस्से में वो अब्बा से बात कर रही हैं, दूसरे में सोहराब से, और अंत में आशीर्वाद देती हैं कि जमाना तेरे पाँव के नीचे हो और खुदा का हाथ तेरे सर पर हो, जुबां पे जब नाम आए सोहराब का तो शानाश हो शानाश। श्रोताओं, आगा हश्र कश्मीरी पारसी रंगमंच के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में से हैं। पारसी रंगमंच के अन्य नाटककारों में राधेश्याम कथावाचक और बेताब का नाम भी लिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि आगा हश्र कश्मीरी के नाटकों को मिलती है, जिसमें रुस्तम ए सोहराब और यहूदी की लड़की बहुत मशहूर नाटक है। यहूदी की लड़की नाटक पर एक फिल्म भी काफ़ी पहले बनी थी, जिसमें दिलीप साहब, सुरैया, मीना कुमारी, इन्होंने अभिनय किया था और उसका नाम था यहूदी। यहूदी नाम से वो फिल्म बनी थी और कमर्शियली उसने दर्शकों की बहुत प्रशंसा अर्जित की थी। आगा हश्र कश्मीरी के बारे में जैसा मैंने बताया कि वो अंग्रेजी साहित्यकार विलियम जॉन शेक्सपियर से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उसका काफ़ी गूढ़ अध्ययन किया था, तो उनके नाटकों की रचनाएं नाटकों में भी उतनी फिट लगती हैं और उनका सीधा संबंध हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी पड़ता है। साथ ही साथ हिंदी रंगमंच की आधारभूत संरचना पारसी रंगमंच के भी वो शुरुआती प्रवर्तकों में से एक रहे, और इनके नाटक आज भी खेले जाते हैं तो इसलिए नहीं कि ये पारसी रंगमंच के कोई आर्काइव में रखने वाले नाटक हैं या ऐतिहासिक नाटक हैं या प्राचीन नाटक हैं, बल्कि इनको बार बार इसलिए खेला जाता है कि बंगाली, हिंदी, गुजराती, मणिपुरी और कन्नड़ अभिनेता भी जब इन नाटकों में काम करते हैं तो ना सिर्फ चरित्र को निभाते हैं बल्कि उर्दू ज़ुबान को भी सीखते हैं। इसके लिए उनको किसी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो उर्दू तलफ़ुस उसको पूरी तरह से समझ पाते हैं और उसका उनके सीधे उच्चारण और भाव प्रवणता और काम करने की पोटेंशियल एफिशिएंसी, इन सब पर सीधा असर पड़ता है। आगा हश्र कश्मीरी ने जीवन पर्यंत नाटक लिखते रहे वो, जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा, और समस्त भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया था। और जैसे नाट्यशास्त्र की व्याख्या, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की व्याख्या काश्मीरी पंडित अभिनव गुप्त ने अभिनय दर्पण और अभिनव भारती में की है, उसी कश्मीर से हमारे आगा हश्र कश्मीरी थे। उनके नाम में ही उसका जिक्र है, उससे भी पता चलता है कि कश्मीरी भावभूमि साहित्य, कविता और रंगमंच की रचना में भी ना सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से शीर्ष पर दिखाई पड़ती है बल्कि वस्तुतः भी सृजनात्मक धरातल पर भी शायद ऐसा ही अभी। तो लीजिए आप भी इसको सुने और इसका मजा लें।

अब्बा जान, बादल की कमान से निकलकर जमीन की तरफ आता हुआ बिजली का तीर और सोहराब का इरादा हमारी मिन्नतों से अपना रास्ता नहीं बदल सकता। इसलिए अपनी ममता को उसकी तरकश मर्जी के साथ सुलह करने के लिए मजबूर करती हूं। अब्बा जान, मेरी जबान ने मजबूरी से उसे ईरान जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन ममता की आग से जलता हुआ दिल अभी तक उसे इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। इधर कहता है वो, मां मुझको किस्मत आजमाने दे। उधर कहता है दिल मेरा, न जाने दे न जाने दे, न वो माने न ये माने, करूं क्या, सख्त मुश्किल है। उधर बिफरा हुआ सोहराब, इधर बिगड़ा हुआ दिल है। वो कहता है अब्बा मुझसे, मां जिस रुस्तम की पैदाइश पर आसमान जमीन को मुबारकबाद देता है, जिस रुस्तम का नाम सुनकर बहादुरी गरूर के नशे में झूम उठती है, उस रुस्तम का बेटा होना मेरे लिए शर्म का नहीं फख्र का बायस था। फिर आज तक मेरी हकीकत को पर्दे में रखने की वजह क्या थी? दिल में रखा राज दुनिया को खबर होने न दी, शामे गुमनामी की तुमने क्यों सहर होने न दी। इस गुस्से और रहम भरे सवाल का जवाब मां से नहीं, मां की ममता से पूछ। तेरी पैदाइश का राज जाहिर हो जाने से अंदेशा था कि तेरा बाप तुझे अपने पास बुलाकर मेरी दुनिया की रोशनी मुझसे छीन लेगा, और मुझ बदनसीब की आंखें शौहर के चेहरे की तरह बेटे की सूरत देखने के लिए भी बेरहम किस्मत के सामने फरियाद करती रहेंगी। न जहर खोल दे तकदीर मेरे जीने में, छिपा के रखा था उससे ये भेद सीने में। सोहराब, ईरान की सरजमीन जादू की जमीन है, जहां जाते ही इंसान अपने प्यार और पिछली मोहब्बत को भूल जाता है। मुझे खौफ है कि यहां से जाने के बाद अपने बाप की तरह कहीं तू भी गरीब तहमीना को ना भूल जाए। तेरी सूरत, तेरी बातें मेरे दो ही सहारे हैं। तुझी को देख कर दुनिया में इतने दिन गुजारे हैं, कलेजे से लगा लेने को पाऊंगी कहां तुझको। करेगा कौन जिद मुझसे, कहेगा कौन मां मुझको। जानती हूं बेटा, फर्ज को भूल जाए ऐसी नहीं तू औलाद मेरी। अच्छा तो खुदा की मर्जी पूरी हो, ये मोहरा तेरे बाप की दी हुई निशानी है। उसने समनगान से रुखसत होते वक्त ताकीद की थी कि अगर लड़की हो तो ये मोहरा उसके सर के बालों में, और लड़का हो तो उसके बाजू पर बांध देना। ला, हाथ बढ़ा। 15 बरस से आज ही के दिन के लिए इस मोहब्बत की यादगार की हिफाजत कर रही थी। इस मोहरे पर नजर पड़ते ही बाप बेटे को और खून खून को पहचान लेगा। मेरे लाल, तुझे सच्चे बहादुर और सच्चे सिपाही का फर्ज सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी रुखसत करने से पहले नसीहत करती हूं। हमेशा तलवार को कमजोरों का मुहाफिज समझना, जुल्म को जलील जानना, और पैरों में पड़े हुए दुश्मन को रहम मांगने पर माफ कर देना। देखना जुर्रत व ताकत पे ना इल्जाम आए,
लब पे शाबाश हो सोहराब का जब नाम आए। दुआएं देती हूं तुझको वक्त खादिम व बख्तावर हो, जमाना पांव के नीचे खुदा का हाथ सर पर हो। सोहराब तुम कौन हो? पीलसम? वाह कीदड़ ने फिर से रूप भरा है दिलेर का, चेहरा लगा के आया है गर्दन पे शेर का। आंखें हैं लाल खौफ से, क्यों रंग जर्द है बेशर्म? तू शरीफ और जरी है ना मर्द है। हाँ तेरे गरूर का जवाब, तूरान की जिल्लत का बदला। अरे तेरी नखवत, तेरी तकदीर ने धोखा दिया तुझको, समनगां की जमी पर लाई थी तेरी कजा तुझको। ना कोई दोस्त होगा और ना कोई हमवतन होगा, जमी तेरा जनाजा आसमां तेरा कफन होगा। मेरी शराफत पर कर ले हमले दहन में जब तक तेरी जबां है, ये लन तरानी ये बद समानी बुझी हुई आग का धुआं है। पीलसम सुन, अब तेरा जीना और मरना दोनों हमारे कब्जे में है। अपनी रूह से कहो कि जिस्म से निकलकर मौत की पेशवाई करे। खबरदार, इंसानियत की पेशानी पर शर्म के धब्बे। तू शेर को धोखे से जंजीरों में जकड़कर उसके खून से अपनी जलील तलवार के मुंह पर बहादुरी का गाजा मलना चाहता है? तुफ है तुझ पर। मुझे आज मालूम हुआ कि समनगान की माए तेरे जैसे लड़के भी पैदा करती हैं। चाहता है तू कि सर झुक जाए सारे मुल्क का, नाम रुसवा कर रहा है तू हमारे मुल्क का। ये फरेब इतना हसद इंसान को इंसान से, यूं दगा करते नहीं हैवान भी मेहमान से। क्या कहा? बदकार बदचलन, हे मुजी, ये जोश यहां तक बढ़ा चुनू तेरा, मैं पी के छोड़ूंगी नाखूनों से खून तेरा। मेरा हाथ छोड़ दो कमीनो, मुझे छोड़ दो। इस पापी को अपने गंदे मुंह के हर लफ्ज का जवाब देना होगा। मैं इससे अपनी इज्जत का जवाब मांगती हूं, जो कहा है उसे साबित कर। पीलसम मेरी बर्दाश्त का गलत भरोसा ना कर, मैं और सब कुछ देख सकती हूं लेकिन बच्चे की तकलीफ, बूढ़े पर जुल्म और औरत की बेइज्जती कभी नहीं देख सकती। अगर तू मर्द है अपनी गैरत को जरा ललकार दे, एक तू तलवार ले और एक मुझे तलवार दे। गुर्ज तरकश क्या हुए? अच्छा मेरी हिम्मत तो है, हाथ में हरबा नहीं पर हाथ में ताकत तो है। ले अब बचा खुद को, ले। इसकी लाश यहीं पड़ी सड़ने दो। चलो सिपाही

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन, और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अभी आपने सुना गायन पराग चौधरी का, और उसके बाद लीजिए अब प्रस्तुत है अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्ना ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह का समय है, आप नींद में हैं, कोई सुंदर सा सपना देख रहे हैं और अचानक कोई आए और धड़धड़ा कर आपको उठा दे। अजी उठा क्या दे, साथ में एक गिलास फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी आपके मुंह पर भी डाल दे तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको। हाँ, ऐसा ही कुछ वाक्य हुआ हमारे नाटक के मुख्य पात्र उमेश के साथ भी, क्योंकि उनका बढ़ता वजन और उनकी बढ़ती खुराक के कारण उनकी सेहत उनके लिए मुसीबत बन गई थी। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, इस कश्मकश पर आधारित है हमारा हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत। आइए सुनते हैं।
2: अरे ओ कुंभकर्ण के मामा, पूरी दुनिया जाग गई है और तुम हो कि घर्राटे ही भरे जा रहे हो, जैसे कि सोने के लिए ही दुनिया में आए हो।
3: अच्छा, जैसे सुन ही नहीं रहे हो। मैं भी देखती हूँ आज कैसे नहीं उठते तुम।
4: ये क्या भगवान, तुम योग पिछले जन्म के दुश्मन, ये भी कोई तरीका है जगाने का? इतनी ठंड में बर्फ जैसा पानी डाल दिया, हड्डियां तक फ्रीज हो गई हैं।
2: तुमने कोई रास्ता छोड़ा भी था मेरे पास? सुबह से 5 बार आकर उठा चुकी हूँ तुम्हें, आँ करके फिर सो जाते। साउंड प्रूफ रजाई में आवाज भी तो नहीं जाती होगी ठीक से, पर ये वाटर प्रूफ नहीं है जी, भले मानस की तरह अब उठ जाओ तुम तो। हाँ नहीं
4: तो किसी की नींद न खुले तो कटार भोंक दोगे उसे? भला ये भी कोई शराफत हुई?
2: शराफत शरीफों के साथ की जाती है। और सुनो ये मिस्टर, मैंने जल डाला है आपके ऊपर, कोई कटार वटार नहीं चलाई है।
4: जल? बर्फ की धार को तुम जल कहती हो? कल को उबलता पानी डाल दो मेरे ऊपर और कहो कि जल डाला है, उफनती नदी में ढकेल दो और कहो जल ही में तो ढकेला है, तेल में तल दो इंसान को और कहो कि ऑयल ही तो है। तुम्हारी परिभाषा चलने लगे ना कोर्टों में तो सबके सब हत्यारे साफ बच निकले। अरे छुरी से सब्जी भी कटती है और बकरी भी और इंसान भी, लेकिन क्या इनमें कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें?
2: ए मिस्टर, अपना ये लॉजिक अपने पास ही रखो, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से साबित करने पर तुले रहते हो
4: है?
2: और सुनो, जल्दी से फ्रेश होकर जॉगिंग पर निकलो, नहीं तो चाय भी नसीब नहीं होने वाली।
4: क्या?
2: हाँ, 100 आलसी मरे थे ना, तब पैदा हुए थे ये जीव, बस बहस करवा लो इनसे, इसी में फुर्ती दिखती है इनकी, मगर हाथ पाव हिलाने को मत कहो। अरे कभी ध्यान से अपने आप को शीशे में देखा है? तुम्हारी ये सेहत ही तुम्हारी मुसीबत बनी हुई है।
4: हे भगवान, कैसी हिटलरी बीवी दी है, हाथ में चाबुक लिए घूमती है, ये ना करो वो ना करो, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऐसा लगता है जैसे परेड कमांडर है ये और मैं एक अदना सा सिपाही। अब तो चाय मिलेगी ना श्रीमती जी, सर्द हवाओं से लड़कर आ रहा हूँ, एक कण चाय कहक तो बनता है अब।
2: इतनी जल्दी? हाय राम, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए तुम्हें गए और चले आए चाय मांगने। तुम क्या कोई घोड़ा वोड़ा हो जो 10 मिनट में 3 मील दौड़ाए? अरे कहा था ना तुमसे कि 3 मील से कम नहीं, और ये पेट देखा है अपना, लगता है 14 महीने का है।
4: अरे श्रीमती जी, इतना तो करेक्टर न लूज कीजिए मेरा, मुझ पर अप्राकृतिक आरोप लगाते हुए कुछ तो लजाइए, किसी ने सुन लिया तो दुनिया में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा।
2: हाँ हाँ, लजाती ही तो हूँ मैं आपके बढ़ते हुए वजन से, ये गालों पर लटकती हुई चर्बी के थैलों से। शरीर देखा है कभी अपना? ऐसा लगता है जैसे बरैया काटने से फूल गया हो, कोई फिटनेस ही नहीं है।
3: चलते हो तो लगता है कोई मांस का पहाड़ मटर गश्ती करने निकला है। पर बाकी सब पति लोग कितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, और एक आप हैं, केवल ईटिंग करते हैं और हमेशा रेस्टिंग ईटिंग रेस्टिंग। भर पेट खाने के बाद भी अगर चार गुलाब जामुन खिला दो ना तो सटका लोगे फटाफट। हाथ पांव नहीं हिलाते और बस मुंह ही चलाते रहते।
5: तो क्या चाहती हैं आप? हवा पीऊं, अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ूं और अपने हाथ पांव तोड़वा लूं?
3: अरे नहीं नहीं, हाथ पांव ही टूट जाएंगे तो जॉगिंग कौन करेगा। पर एक बात तो तय है, खाने में आपके कटौती जरूर होगी। अब पानी भी सर से ऊपर गुजर चुका है। बाप रे,
4: एक फुलका तो और दे दो जी,
5: और हाँ थोड़ा सा घी भी डाल देना उस पर, सूखी रोटी अलग से नीचे नहीं उतरती जी।
3: घी? और तुम्हें? अरे इतनी चर्बी है तुम्हारे बदन में, अगर इससे घी निकाला जाए ना तो एक कनस्तर तो जमा हो ही जाएगा कम से कम। ऊपर से घी खाना है तुम्हें? अरे ये कहो मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी नहीं परोस रही हूँ तुम्हें। पर अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा तो उस दिन के लिए भी तैयार रहना तुम। और हाँ सुनो, 5 रोटियां हो चुकी हैं पूरी तुम्हारी। ये जो लिस्ट टंगी है ना दीवार में, इसी के हिसाब से खाना मिलेगा अब तुम्हें। साथ चलते हो तो सब कहते हैं ये देखो बकरी के साथ गेंडा चला जा रहा है।
4: मुझे गेंडा कहा तुमने? मेरी तुलना तुम उस प्राणी से कर रही हो। अरे हाथी भी कहती ना तो बुरा ना लगता मुझे, कम से कम साफ सुथरा तो जानवर है वो, पर गेंडा इतना भद्दा नाम। मेरा खाया पिया शरीर इतना करता है तुम्हें गेंडा?
3: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाथी ही सही, जो तुम्हें पसंद हो वही नाम रख लो, पर खाने के मामले में तो नो कम्प्रोमाइज। तुम्हारी फिगर मुझे अब ठीक करनी ही पड़ेगी, शुरू में चेत गई होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पर खैर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है।
5: कम से कम एक चम्मच चावल तो दे दीजिए श्रीमती जी, पेट का गोडाउन पूरा खाली पड़ा है, भाई भाई चिल्ला रहा है वो, उसकी करुण पुकार कुछ तो सुनिए अन्नपूर्णा जी।
3: मुझे मस्का लगाने की कोशिश न करो जी, मैं अब बिल्कुल पिघलने वाली नहीं। अन्नपूर्णा कहो या महालक्ष्मी, पर मुझसे वरदान की उम्मीद मत पालो, चावल का एक दाना भी नहीं दे सकती अब मैं तुम्हें। और सुनो, तुम चाहो तो 8-10 गिलास पानी जरूर पी सकते हो, तुम्हारा ये गोडाउन फुल हो जाएगा, भाई भाई नहीं करेगा तब, वो मजे से हिलोरे लेना खुश।
4: हाँ खुश, जल प्रलय करने का इरादा है क्या पेट में? हे प्रभु कहाँ हो तुम? कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर ऐसी जोड़ी क्यों बनाई तुमने? इस गाड़ी में एक पहिया बुलडोजर का और दूसरा साइकिल का क्यों लगा दिया? भर पेट खाने को नहीं, नींद भर सोने को नहीं, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा भगवान? कुछ तो पुकार सुनो इस दुखियारे की, अगर दुनिया में हो तुम तो प्रकट हो और मेरी मदद करो भगवान।
6: कहो क्या कष्ट है वत्स?
4: कौन कौन?
6: वही जिसे तुम इतनी देर से पुकार रहे थे। मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा गया पुत्र।
4: भगवान क्या सच मुझा?
6: हाँ बेटा उमेश, जब बच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। कहो क्या कष्ट है तुम्हें?
4: अरे भगवान, अरे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे खाने की इच्छा ही ना हो और ना ही जरूरत। ये खाना मेरा दुश्मन बन चुका है प्रभु, बहुत जल्लत उठानी पड़ती है इसके कारण मुझे। ये सेहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मुझे इस पापी पेट से छुटकारा दिलाइए प्रभु। न खाऊंगा मैं और ना ही मेरा वजन बढ़ेगा। वो भी खुश और मैं भी खुश।
6: ये प्रकृति के विरुद्ध है वत्स। इस संसार में हर एक प्राणी को भोजन करना ही पड़ता है। ये प्रकृति का विधान है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं।
4: अरे तो आपके आने से क्या फायदा हुआ भगवान? मेरी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
6: सोचने दो वत्स, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक, एक काम हो सकता है।
4: क्या?
6: इससे तुम्हें भोजन भी मिलता रहेगा और तुम्हारी पत्नी को खबर भी ना होगी।
4: अरे जल्दी बताइए प्रभु, जल्दी बताइए, सस्पेंस ना क्रिएट कीजिए।
6: वत्स, तुम्हारी ओर से भोजन ग्रहण करने का काम किसी और को दिया जा सकता है।
4: क्या?
6: वो शख्स भोजन ग्रहण करेगा और तृप्ति तुम्हें मिलेगी।
4: अरे
6: समझो, मिर्ची के बड़े वो खाएगा और मजा तुम लोगे।
4: अरे
6: उसका स्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी भारिया सोचेगी तुम तो भूखे ही हो, पर वास्तव में तुम 56 भोग का आनंद ले रहे होगे। ये सिस्टम वैसा ही है जैसे खाना माँ खाती है पर तृप्ति उसके पेट के बच्चे को मिलती है। सिस्टम नया नहीं है हमारे लिए, बस इसका सॉफ्टवेयर नया डाला है। पहले ये इंटरनल होता था, अब एक्सटर्नल हो गया है।
4: वाह प्रभु, ये तो बिना भोजन के रहने से भी ज्यादा धांसू आइडिया है। अगर ऐसा है तो मेरी ओर से ये काम आप दो लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना कि दो लोग होंगे ना, इसलिए एक के बूते मेरा पेट नहीं भरने वाला।
6: नहीं नहीं, एक से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4: क्यों?
6: वन फॉर वन। बच्चे की ओर से भी भोजन एक ही माँ ग्रहण करती है। हाँ, तुम चाहो तो इस काम के लिए कोई बड़े साइज वाला पेट चुन लो। वो तुम्हारी भाषा में कहते हैं ना, जंबो साइज। जैसे एक टिकट पर केवल एक ही मुसाफिर सफर कर सकता है, चाहे उसका साइज कुछ भी हो, उसी तरह तुम अपने लिए भी केवल एक ही खाऊ वीर चुन सकते हो। साइज अपनी मर्जी से देख लेना।
4: पर एक समस्या है भगवान, मेरा वजन भी तो बढ़ेगा था।
6: सो तो होगा ही।
4: हाँ।
6: ये तो प्रकृति का नियम है वत्स, अन्न शरीर में जाकर रक्त व मांस तो बनेगा ही, हाँ चर्बी फैट भी।
4: अरे फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भगवान, मेरी बीवी तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा दम निकाल देगी। सचमुच वो आदमी से मुझे घोड़ा बना देगी, अश्व योनि में डाल देगी मुझे।
6: एक उपाय है इसके लिए।
4: वो क्या है प्रभु?
6: तुम अपने लिए एक व्यायाम वीर भी रख लो। खाओ वीर की तरह व्यायाम वो करेगा, फायदा तुम्हें मिलेगा। इस तरह तुम्हारे भोजन और फिटनेस दोनों का ही काम दूसरे लोग संभालेंगे, फायदा तुम उठाना।
4: विलंब नहीं कीजिए स्वामी, जल्दी से एवं अस्तु बोल दीजिए प्रभु।
6: ओके ओके, एवं अस्तु, एवं अस्तु।
4: ये डबल क्लिक क्यों प्रभु? बाकी मामलों में तो आप एक ही बार एवं अस्तु का कमांड देते हैं।
6: वत्स, वरदान भी तो दो हैं, फिर कमांड भी तो दो बार ही देना पड़ेगा।
4: हा, हा, हा, हा।
1: वरदान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उमेश खुश था, उसने एक बड़े पेट वाला ब्राह्मण अपनी ओर से भोजन ग्रहण करने के लिए और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपनी ओर से व्यायाम करने के लिए रख लिया। पत्नी को झूठ बोल दिया कि सपने में भगवान आए थे और आदेश देकर गए हैं कि किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ नियमित रूप से, इससे धन धान्य में और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। व्यायाम पुरुष के बारे में कह दिया कि यह घर का काम करने के लिए नौकर है। पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण देवता की सेवा करने का उसे मौका मिलेगा और घर के कामकाज से छुट्टी भी। भला और क्या चाहिए था उसे। और अब सुनिए आगे की कहानी।
2: सुनो जी, सुनो तो।
7: क्या है?
2: कुछ नहीं तो कम से कम दूध ही पी लो ना। देख रही हूँ खाना पीना तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है।
5: हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था धर्मपत्नी जी, भगवान ने कहा था कि मुझे 2 माह निर्जला व्रत भी करना है।
2: क्या पागल हो गए हो तुम? 1 दिन के निर्जला व्रत में तो जान निकल जाती है आदमी की, और तुम कहते हो कि 2 महीने?
5: अरे मुझे कुछ नहीं होगा श्रीमती जी, जब भगवान का आशीर्वाद है साथ में तो फिर चिंता क्या। हाँ, ब्राह्मण देव के खाने पीने में जरूर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ लो ब्राह्मण नहीं साक्षात भगवान ही है वो।
2: अरे नहीं होगी जी, नहीं होगी, ब्राह्मण देव तो वैसे भी हमारी संस्कृति में भगवान ही माने जाते हैं।
5: और हाँ, उन्हें सुबह सुबह शुद्ध घी का बेसन का हलवा खिलाना, साथ में मेवे का दूध और काजू की नमकीन। दोपहर के खाने में विशेष ख्याल रखना, दाल चावल, 7-8 रोटी, 1 कटोरी रायता, 2 स्वीट डिश, 3-4 पापड़, खट्टी और मीठी दोनों तरह की चटनी।
2: एक मिनट रुको, ये सब तो तुम अपनी पसंद बता रहे हो।
5: अरे तुमने पढ़ा नहीं है शास्त्रों में, दान उसी चीज का करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। ये नहीं कि बासी रोटी बच गई है इसे कोई नहीं खा रहा है तो भिखारी को डाल दो, दाल खट्टी हो गई है तो गाय को डाल दो, चीनी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई तो चींटी को डाल दो। ये दान नहीं, ना दान है, ना और दान यानी कोई दान।
2: बस बस बस, समझ गई बाबा, सब समझ गई। तुम्हें तो एक सिरा मिल जाए ना किसी भी बात का, बस पकड़ कर हवाई यात्रा पर चल पड़ते हो फुल टैंक के साथ, नॉन स्टॉप। बिना कुछ खाए पिए तुम्हें डकार कहाँ से आ रही है जी? और फ्रेश भी रेगुलरली हो रहे हो तुम, ऐसा चंभा न देखा है न कभी सुना।
5: सो भगवान की माया है धर्मपत्नी जी, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अरे वो राय को पहाड़ बना सकता है, वो बर्फ पर घास उगा सकता है। तुमने कबीर का दोहा नहीं सुना है, कमल जो फूले सरह बिन, यानी बिना तालाब के ही कमल खिल रहा है। अरे यहाँ तक कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, यानी वो बिना पैरों के चलता है बिना कान के सुनता है। और फिर
2: बस बस बस बस, मेरे तो कान पक गए। सच ही कह रहे हो तुम, मैं भी देख रही हूँ कि बिनु दिमाग के बकैल लड़े बिनु जुबाना।
5: अरे वाह श्रीमती जी, विद्वानों की सोबत का असर तो आप पर अब होने लगा है। अच्छा एक बात तो बताइए, आपने रात में सब्जी में इतनी मिर्ची क्यों डाली थी? बुरा हाल हो गया मेरा।
2: तुम तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए चले जा रहे हो जी, और भगवान वाली कहावत मनुष्य योनि में साकार भी कर रहे हो। बिना खाए डकार लेते हो, बिना चखे सब्जी का स्वाद बताते हो। अल्लाहुद्दीन का जिन पाल रखा है क्या तुमने?
5: अरे नहीं, सब भगवान की माया है। तुमने श्लोक नहीं सुना है संस्कृत का, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरम। अरे वही कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो भला क्या नहीं कर सकता।
2: पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, मुझे तो तुम भी अब बड़े अजीब लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत प्रेत पाल रखा है तुमने।
5: अरे ब्राह्मण देव, जरा तीखी मिर्ची कम खाया करो यार। अरे तुम इंसान हो के तोता, हरी मिर्ची कचर कचर चबाते हो, हालत खराब करके रख दी है मेरी। नहीं यार, ये आदत तो छोड़नी होगी तुम्हें।
7: अरे जजमान, अगर इतना ही प्रतिबंध लगाना है तो आप कोई दूसरा ब्राह्मण ढूंढ लीजिए। हाँ बताई देते हैं हम, खाने की कमी नहीं है हमें, खाना तो हम अपनी पसंद का ही खाऊंगा, ना कि आपकी पसंद का। मर्जियो खिलाइए, नहीं मर्जियो मत खिलाइए, मैं ये चला।
5: अरे अरे नहीं नहीं नहीं ब्राह्मण देव, आप तो नाराज होने लगे। मैं तो विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका असर मुझ पर होता है। आखिर माँ भी तो अपने पेट के बच्चे का ख्याल रखती है ना खाने पीने में।
7: अच्छा अब समझ गया मैं, तो जजमान आप मेरे पेट के बच्चे हैं। कल को माई माई करते हुए आ जाना मेरे पास और बोलेंगे तुम जननी मैं तेरा बालक। अरे पलीता लगा देंगे आप तो मुझे, महीने भर खिलाएंगे और जीवन भर खुद खाएंगे। वाह रे वाह।
5: अरे मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं।
7: बाप रे बड़ी खतरनाक मिसाल है आपकी। त्राही माम प्रभु, इस सीधे साधे ब्राह्मण को आपने किस संकट में डाल दिया, बचाइए प्रभु इससे।
4: क्या चल रहा है पहलवान, वर्जिश मर्जिश ठीक से चल रही है कि नहीं?
8: सब ठीक चल रहा है बॉस, बस भाई साहब टाइम पे खाना नहीं देती हैं और मेरी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती हैं। जानते हैं आप, सब तर माल उस ब्राह्मण को खिलाती हैं और मेरे सामने यूं ही कुछ रूखा सूखा डाल देती हैं। सोचती हैं घर का नौकर है, आराम से चुपचाप बैठ के खा लेगा।
4: उसकी चिंता तू क्यों करता है भाई, टेबल के नीचे से मनी सरकाता हूं ना मैं तुझे। हाँ। बाजार जाकर तबियत से खा पी लिया कर, मगर वर्जिश से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुबह की जॉगिंग सूरज निकलने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। हाथ की मछली निकलनी चाहिए मेरी।
8: हाँ।
4: समझे।
8: हाँ।
4: पेट की चर्बी छटनी चाहिए मेरी। आखिर मेरे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना मुझे।
8: अरे जान लगाकर तो मेहनत करता हूँ बॉस मैं। अब तबीयत कभी गरम नरम रहती है तो आराम तो करना ही पड़ेगा। आखिर मशीन भी गरम होने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती
4: है। बस बस कर बस कर, मुझे लेक्चर नहीं रिजल्ट चाहिए, नहीं तो समझ ले कि नौकरी से बाहर तू।
8: नहीं
1: उमेश के दोनों ही कर्मचारी बेवफा निकले। ब्राह्मण देव दिल खोल करके भोग लगाते और पेट दुखता इस गरीब का। तीखा खाना वे खाते और एसिडिटी होती उमेश को, क्योंकि उनका पेट अब दूसरों के हाथ में था जो उन्हीं की दया पर निर्भर था। दूसरी ओर पहलवान भी अव्वल दर्जे का कामचोर था, केवल बातों की तनख्वाह ले रहा था और ज्यादातर घोड़े बेच करके सोता रहता। उमेश का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये तो वही वाली मिसाल हुई कि काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। कई बार तो ऐसी हद हो जाती कि उमेश के लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सुनिए आगे की कहानी।
9: पेट में जैसे भूचाल आया हुआ है। अरे एक गिलास गरम पानी के साथ आजमाइन दे दो जी।
3: अरे बाप रे बाप, मेरा हार रहने पर तुम्हारा ये हाल है? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। सुनो कहीं चोरी छिपे तुम?
9: क्या बात करती है धर्म पत्नी जी, अरे जब कोई बंदिश हो तो चोरी करना समझ में भी आती है, पर मैं तो अपनी मर्जी से व्रत कर रहा हूँ। तुमने कहाँ रोका है मेरा खाना?
3: सब कुछ बड़ा अजीब चल रहा है जी, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई है।
9: अरे बुद्धि फिर जगा लेना भाई, अभी मेरे पेट के दर्द से तो मुक्ति दिलाओ मुझे, बम के गोले फूट रहे हैं इसमें।
3: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ठहरो बस एक मिनट में लाती हूँ।
9: अरे कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, सब मतलब के यार हैं। इतना मनाया साले ब्राह्मण को, मस्का लगाया कि भाई मेरा ख्याल रखना, मगर तरमाल देखकर आपा खो बैठता है। 24 घंटे ठूसने पर तो ये हाल है इसका, ऐसे टूटता है जैसे 7 का भूखा हो, और भुगतना मुझे पड़ता है।
2: क्या बड़बड़ कर रहे हो जी, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? ये लो गरम पानी और ये पकड़ो अजवाइन, फांक कर पानी पी लो जल्दी से, अभी आराम हो जाएगा ना।
9: गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई है पेट, अभी गल जाएगा सब माल।
2: क्या गल जाएगा?
9: माल?
2: कौन सा माल छुपा रखा है तुमने अपने पेट में? सुनो एक काम करो, डॉक्टर को दिखा दो ना, समझ में तो आए कि रोग क्या है।
9: डॉक्टर? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं।
2: क्या डॉक्टर नहीं की रट लगा रहे हो? तुम तो ऐसे हड़बड़ाए हुए हो जैसे किसी हराम के पेट का मामला हो जो डॉक्टर के पास जाते ही खुल जाएगा।
9: अरे अरे आपको क्या बताएं श्रीमती जी, मुझ पर जो गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। मेरा पेट अब मेरा पेट न रहा, मेरा शरीर अब मेरा शरीर न रहा, सब गड़बड़ भगवान का किया हुआ है।
2: सुनो सुनो सुनो, एक काम करती हूँ, इन दोनों मुस्टंडों को घर से निकाल बाहर करती हूँ। जब से ये दोनों घर में आए हैं ना, तब से गड़बड़ ही गड़बड़ हो रही है। तुम खाते कुछ हो नहीं, पर वजन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, जैसे हवा से ही पोषक तत्व खींच रहे हो तुम।
9: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा न करना, ऐसा न करना, भगवान का मामला है, सरकारी मामला होता तो थोड़ी चीटिंग वीटिंग भी चल जाती, पर तुम तो जानती हो कि
2: तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ती तुम्हारी ये सब बातें, मैं तो चली घर के काम के लिए।
10: पहलवान, अपनी ड्यूटी के साथ दगा कर रहे हो तुम, घर से दौड़ने के बहाने निकलते हो और बागीचे में जाकर आंखें सेकने बैठ जाते हो, सारी रिपोर्ट है मुझे।
11: बिल्कुल गलत है बॉस, भरोसा ना हो तो मेरे साथ आप भी निकला करिए सवेरे सवेरे, खुद ही तसल्ली कर लिया करिए ना, मैं जॉगिंग करता हूँ या तो।
10: चुप चुप रह, चुप रह, ऐसा ही दौड़ने वाला होता मैं तो तुझे क्यों ड्यूटी पर रखता, जानता है ना कि बॉस आलसी है, उठ नहीं सकता सुबह सुबह, उंगली तक हिलाने के पहले 100 सोचता है ये, इसीलिए ना मुझे फटके दे रहा है तू, पर मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं, पहले भी कहा था मैंने कि रिजल्ट ओरिएंटेड है तेरा अपॉइंटमेंट, पेट देख रहा है मेरा।
11: हाँ,
10: देख
11: देख रहा हूँ,
10: तेरे आने के बाद वजन 90 की सुई छोड़कर 110 टच कर रहा है, अब तो कमजोर कांटे पर खड़ा होने में भी डर लगता है, साली गाड़ी तक का एवरेज डाउन हो गया अब तो इस बॉडी के कारण।
11: तो मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, मेहनत और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ, आपकी बॉडी ही फैट टैंक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।
10: ड्यूटी करता है तू, ड्यूटी करता है तू, अरे एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा दूं ना तेरे पीछे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से मैं लगता हूं तेरे साथ, देखता हूं कैसे काम चोरी करता है। चलो उठा डंबल और भांज तेल लगाकर।
11: हाँ हाँ, मैं भी साबित कर दूंगा मैं ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, अब देखो मेरा कमाल। ध्यान से देखना बॉस।
10: हाँ, बक बक मत कर, काम कर। और ये चल चल चल, अरे
11: और बिल्कुल देख लेना बॉस।
10: हाँ हाँ ठीक है,
11: ईमानदार बस बॉस थक गए मैं। अब और नहीं, जान निकल गई मेरी।
10: चालू रे नॉन स्टॉप, बहुत तड़ी मारी है अब तक तूने। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता होता ना तू, तो इतनी जल्दी हवा खराब होती तेरी। 500 के नीचे सांस नहीं लेने दूंगा तुझे।
11: बॉस मैंने कर रहा आपकी नौकरी, मैंने कर रहा आपकी नौकरी वोकरी, पेट पालने के लिए आया हूँ यहाँ पर, जान देने के लिए नहीं आया। मेरा हिसाब कर दीजिए आप।
10: हिसाब? कैसा हिसाब? वजन बढ़ाने का हिसाब, चर्बी चढ़ाने का हिसाब, अरे जवान इंसान को बुढ़ा बनाने का हिसाब। अरे अपना काम तो दिखा पहले तू।
11: अच्छा ये ठीक नहीं कर रहे हैं बॉस आप, गरीब का पैसा मारना ठीक बात नहीं।
10: अच्छा,
11: अरे इतना भागा होता ना मैं तो आर्मी में भर्ती हो गया होता, और ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं भाई साहब को सच बताऊंगा, फिर वो ही करेंगे आपका हिसाब।
10: अरे अरे अरे भाई साहब की धमकी क्यों देता है भाई? देख मेरी कमजोर नस पकड़ लेता है तू, सारी पोल पा गया है तू मेरी। खर बोल, कितने पैसे निकलते हैं तेरे? बोल
11: अब आए ना लाइन पे।
10: बोल,
11: पैसा खाने चले थे मेरा।
10: हाँ
11: आज का लेकर ये हो गया 4,600। और ये अभी जो डंबल उठाए और ये भांजी और ये तेल लगाकर,
10: ठीक। ये पकड़ 1,000 के 5 नोट। बचे पैसे तेरे मुंह बंद रखने की फीस है, और अब जान छोड़ मेरी।
11: अरे अभी छोड़े देते हैं बॉस, ये लीजिए। बाय बॉस, थैंक यू।
10: अरे भगवान, मैं थक गया आपके वरदान का बोझ उठाते उठाते। अरे ऐसा तो शाप भी ना मिले किसी को। प्रकट हो प्रभु और इस संकट से उबारो, मुझे उबारो भगवान भगवान।
6: वत्स, तुमने मुझे पुकारा वत्स, अब क्या समस्या है तुम्हारी? भोजन और आराम सब तो मिल रहा है तुम्हें, भला और क्या चाहिए तुम्हें?
10: अरे प्रभु, आप क्या समझो मेरी विपदा, मेरा पेट उठाकर आपने गैर के हवाले कर दिया। अरे हराम का पेट जैसा बुरा इस्तेमाल हो सकता है, वैसा कर रहा है वो बामन देव। खुद तो तरमाल अंटी करता है और दर्द मुझसे भगवाता है, और पहलवान, अरे चोरी और सीना जोरी दोनों कर रहा है। ये सेहत मुसीबत बन गई है मेरे लिए प्रभु। नहीं प्रभु नहीं, अब तो अपना वरदान वापस ले लो आप।
6: वापस?
10: हाँ।
6: क्या तुम भगवान का सिस्टम भी इंसानों जैसा समझते हो कि पसंद ना आने पर माल वापस? हमारे यहाँ ट्रायल वर्जन और डेमो का कोई रिवाज नहीं है। हम भगवान हैं, जो देते हैं सो फाइनली देते हैं, और बिका हुआ माल वापस नहीं देते।
10: और फिर तो आप मुझे उठा लो प्रभु, मुझे उठा लो, क्योंकि आपके वरदान ने मेरी जिंदगी जहन्नुम कर रखी है। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी भैया।
6: ये भी नहीं हो सकता वत्स, निर्धारित आयु के पहले तो यमराज भी किसी को नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भले ना हो, पर रूल ऑफ तो है ही। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसका पालन करते हैं, रूल यानी रूल।
10: कोई एक्सेप्शन निकाल लिए प्रभु, कोई एक्सेप्शन। आखिर सावित्री के मामले में तो ऐसा किया ही था ना आपने, उससे मुश्किल कैसे मेरा?
6: तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया पुत्र, ऐसी नजीर रख दी मेरे सामने कि कोर्ट कचहरी वाले आदमी हो ना। गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही सतर्क रहना चाहिए था तुमसे। खैर सोचता हूँ कुछ। हाँ ये हो सकता है।
5: जी जी।
6: तुम बंदा बदल सकते हो।
5: क्या?
6: एक काम करता हूँ।
5: हाँ हाँ।
6: ब्राह्मण का रोल तुम्हारी पत्नी को दे देता हूँ।
5: अरे गजब ना ढाई प्रभु, ऐसा गजब ना ढाई प्रभु, वो तो मुझे भूखे ही मार डालेगी। साल भर में आधे दिन तो वो व्रत रखती है, सावन के 16 सोमवार, एकादशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, रविवार को भला। मुझे उम्र के पहले उठाना है क्या आपको?
6: तो क्या किसी और को?
5: नहीं नहीं प्रभु, इस मुसीबत से बचाइए। अरे पता चला सांपनाथ से तो बचे और नागनाथ के हत्ते चढ़ गए। दारू वो पिएगा, मुंह से बदबू मेरे आएगी, मटन वो खाएगा, हजामत में ही उतरेगी। नहीं प्रभु नहीं नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है अब। मेरी आजादी लौटा दो प्रभु, मैं अपनी डाइट व वेट खुद ही कंट्रोल कर लूंगा। रहम करो भगवान मुझ पर।
6: तथास्तु तथास्तु।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटक सेहत बनी मुसीबत, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर।
2: आइए सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें मंडल 1 के सूक्त 163 का वाचन सुनेंगे। 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 6 बजे पेश किया जाएगा कार्यक्रम वतन का राग, अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती पर आधारित है। खेरला का गौण राज्य, इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 6:30 पर। 7 बजे का समय है योग संवाद का, जिसमें आप सुनेंगे आज भाग 77 का प्रसारण, योग वशिष्ठ काल का प्रभाव और जीवन की अनिविदता। भारत विभूति कार्यक्रम 7:30 पर पेश किया जाएगा। रेडियो रिपोर्ट 8 बजे सुनिएगा। 8:30 का समय है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा का, जो केंद्रित है विजय लक्ष्मी पंडित पर। 9 बजे सुरसागर कार्यक्रम पेश होगा, जिसमें प्रदक्षिणा भट्ट शास्त्रीय गायन भाग 1 आप सुनेंगे। और 9:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद के भाग 89 का प्रसारण। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर।
1: वेद पुराण आख्यान मीमांसा, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं और इन दर्शनों से रूबरू कराता है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं ऋभुगण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: अत्राते रूपमुत्तमपश्यम जिगीषमाणमिश आपदे गोह यदा ते मर्तो अनु भोगमानडा दिद्ग्रसिष्ठ ओषधी रजीगह। हे अश्व, आपके यज्ञ की कामना वाले श्रेष्ठ स्वरूप को हम सूर्यमंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके बाद ही आपने हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। अनुत्वा रथो अनुमरियो अर्वन्ननु गावोनु भगह कनीनाम अनुव्राता सस्तव सख्य मीयुरनु देवा ममिरे वीर्यन्ते। हे अर्वन, रथ आपके अनुगामी हैं। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौएं हैं। मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को प्राप्त किया तथा देवगणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया है। हिरण्यशृंगो यो अस्य पादा मनोजवा इवर इंद्र आसीत देवा इदस्य हविरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत। सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्र देव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के सदृश वेगवान हैं। देवताओं ने ही इसके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया। ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सम शूरणासो दिव्यासो अत्याह हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिशुर दिव्य मज्ममश्वाह। जब पुष्ट जंघाओं और वक्ष वाले मध्यभाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। तव शरीरम पतयिष्ण वर्वन् तव चित्तम वात इव ध्रजीमान तव श्रृंगाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति। हे चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्व गमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त हैं। उपप्रागाच्छसनम वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः अजह पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात कवयो यंतिरे भाह। यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व ऊपर की ओर देवमार्ग को जाता है। अज आगे चलता है, नाभि उसका अनुगमन करता है, पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं। उपप्रागात् परमं यत् सद्यस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुसे वार्याणि। शक्तिशाली चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता से मिलते हैं। हे याजक, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें, देवताओं से अपार वैभव उत्पन्न करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 163 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान, चरित्र और साहस चाहिए।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा। समस्या देने वाले की हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर ईश्वर साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम लड़े अपनी तादाद से हथियारबंद राजाओं के खिलाफ, समय की पगडंडियों पर चलते हुए इसी तरह इतिहास रचते गए। पुरखों के नाम पत्थर गाड़कर हम तैयार होते गए नए मोर्चे पर लड़ाई के लिए। इस लड़ाई में हमारे जंगल की कहानी है, हमारी खेती की कहानी है, अपनी धरती को बचाने की कहानी है। स्वाधीनता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में ऐसी ही एक कहानी के महानायक थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाया। वो मद्रास वन अधिनियम सन 1882 के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए और रंपा विद्रोह के प्रणेता बने। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई सन 1897 को विशाखापट्टनम के एक गांव में हुआ था। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचि से ज्योतिष शास्त्र के साथ ही एक वैद्य के रूप में भी स्वयं को शिक्षित किया। इस कारण जनजातीय समाज में उनका बहुत आदर था तथा वो बहुत लोकप्रिय थे। राजू के पिता का नाम अल्लूरी वेंकर रमा राजू और माता का नाम सूर्य नारायणम्मा था। कम आयु में ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया, इसीलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। लेकिन बचपन में ही पिता ने उनके भीतर ये कहते हुए क्रांतिकारी संस्कार डाले थे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है और वो लगातार हमें लूट रहे हैं। पिता का साथ तो छूट गया, लेकिन उनकी बातें राजू के मन में बनी रहीं। टेलर हाई स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने मिसेज LVN कॉलेज विशाखापट्टनम में प्रवेश लिया, लेकिन चौथे वर्ष उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आसपास के लोगों के दुख दर्द देखने लगे। 2 वर्ष तक उन्होंने सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में योग और अध्यात्म साधना की। वो वहाँ के स्थानीय लोगों का सटीक उपचार करते, भविष्य की जानकारियाँ देते। एक वैद्य और ज्योतिषाचार्य के रूप में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। जनजातीय समाज पर उनका गहरा प्रभाव था। वो एक पवित्र आत्मा और उद्धारक की तरह पूज्य हो गए। यही वो समय था जब राजू ने गिरिजनों की पीढ़ी को समझा। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया।

अंग्रेजी राज के विरुद्ध क्रांति के बीज सीताराम राजू के मन में शुरू से ही दबे हुए थे। जनजातीय समाज की दशा और गांधी जी के प्रभाव ने उसे और अधिक पल्लवित होने का अवसर दिया। सीताराम राजू इस बात पर बल देने लगे कि उनके लोग मदिरापान ना करें, स्वच्छता से रहें, स्वावलंबी हों और अपने विवादों का निपटारा पंचायतों में करें, ना कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। असहयोग आंदोलन के समय वो भी इस अभियान से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया, तब सीताराम राजू ने सशस्त्र क्रांति की ओर अपनी दिशा की। उन्होंने अपना बैरागी स्वरूप त्याग दिया, मंदिरों में उपदेश देने, कीर्तन करने बंद कर दिए और अपने प्रदेश के जनजातीय समाज को सशस्त्र क्रांति के लिए संगठित करने का कार्य आरंभ कर दिया। अब राजू के संगठन का विस्तार दृढ़ गति से होने लगा। अपने लोगों की भलाई और सामाजिक हितों के लिए समर्पित होकर कार्य करते थे वो, इसीलिए अपने क्षेत्र में वो देवता की तरह पूजे जाते थे। लोगों ने अब उनके राजनीतिक विचारों पर भी विश्वास किया और उनकी सेना में भर्ती होने लगे। संपूर्ण क्षेत्र उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। पहाड़ियों वाला ये क्षेत्र छापामार युद्ध शैली के लिए भी उपयुक्त था। उनके प्रभावशाली लोगों का सहयोग अब उन्हें प्राप्त था। गुदीम के दो प्रभावशाली नेता गांव मल्लू डोरे और गांव गौतम डोरे उनके लेफ्टिनेंट बन चुके थे। राजू की सेना में डोरे बंधुओं के शामिल हो जाने से उनकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। अब समस्या हथियारों की थी। तीर कमान आदि तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे, लेकिन इनसे पुलिस बल का सामना नहीं किया जा सकता था। अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने के लिए राजू ने पहला बड़ा हमला रंपा क्षेत्र के चिंतापल्ली पुलिस थाने पर किया। उस हमले में उनके साथ 300 लोग थे। हमला करके उन्होंने बहुत सी राइफलें और पिस्तौल लूट ली। अगला हमला कृष्णा देवी पैठ के थाने पर किया गया। इसी तरह थानों से अस्त्र लूटने का काम आगे बढ़ता रहा। सीताराम राजू की सक्रियता ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अब तक सीताराम राजू के संगठन की घटनाओं को अंग्रेज सामान्य लूटपाट समझ रहे थे। लेकिन थानों से शस्त्र एकत्रित करने की इस घटना ने उन्हें नींद से जगा दिया। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये सुसज्जित सेना के साथ अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का एक अभियान है। ये स्वराज की लड़ाई है, स्वाधीनता समर है।

अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में मनसबदारों की मनमानी, उनके भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के रंपा जनजातीय समाज के लोगों का विद्रोह लगातार चलता रहा। सीताराम राजू सन 1882 के मद्रास वन अधिनियम के दुष्प्रभावों से अत्यंत आहत थे। जंगलों में जनजातीय समाज की मुक्त आवाजाही पर लगे प्रतिबंध ने सभी को आक्रोशित कर रखा था। रंपा विद्रोह के नेतृत्व के कारण स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम वीरूण अर्थात जंगल का नायक कहने लगे थे। राजू की गतिविधियों से परेशान ब्रिटिश शासन ने स्कॉट और आयर नाम से दो लेफ्टिनेंट नियुक्त किए। इन अफसरों की सेना से 24 सितंबर सन 1922 को राजू का मुकाबला हुआ। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में स्कॉट और आयर दोनों मारे गए। खुशी से सीताराम राजू ने क्षेत्र में इश्तिहार लगवा दिया कि अंग्रेजों को अब आंध्र भूमि छोड़नी ही होगी। तिलमिलाई ब्रिटिश सत्ता ने अपना अभियान और तेज कर दिया। सीताराम राजू को पकड़वाने या मारने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन सीताराम राजू अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। अपने लोगों के बीच उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लोग उनका भेद देने के स्थान पर उनकी सेना में भर्ती होते जा रहे थे। राजू ने कई और स्थानों पर हमला किया और हथियार लूट लिए गए। इसी बीच बाबा पृथ्वी सिंह आजाद को अंडमान से वापस लाकर आंध्र प्रदेश की जेल में रखे जाने की सूचना उन तक पहुंची। दरअसल गदर पार्टी के सदस्य पृथ्वी सिंह आजाद अंडमान की जेल में आजीवन कारावास की सजा कर रहे थे। वहां उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि हार कर जेलर ने उन्हें स्थानांतरित करने की सिफारिश की। जब पृथ्वी सिंह आजाद को आंध्र प्रदेश की जेल में रखने के लिए ले जाया जा रहा था तब भागती ट्रेन से वो कूदकर फरार हो गए। कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर उन्हें आंध्र प्रदेश की जेल में रखा गया। सीताराम राजू ने हमला करके उन्हें आजाद करा देने का ऐलान कर दिया। राजू की शक्ति और संकल्प को अंग्रेज भली भांति जानते थे, इसीलिए जेल की सुरक्षा के लिए आसपास के कई थानों से पुलिस बुलवा ली गई। इधर राजू ने अपनी सेना को कई दलों में बांटकर उन सभी स्थानों पर एक साथ हमला बोल दिया और हथियारों का बड़ा जखीरा अपने अधिकार में ले लिया। अब उनका काम और तेजी से चल निकला। परेशान ब्रिटिश शासन ने अब असम राइफल्स नाम की पूरी सेना राजू के विरुद्ध लगा दी। 6 मई सन 1924 को राजू के दल का मुकाबला असम राइफल के साथ हुआ। भीषण संघर्ष हुआ। सीताराम राजू के दल को बहुत हानि हुई, लेकिन घायल अवस्था में राजू बच निकले। अगले दिन यानी 7 मई सन 1924 को सीताराम राजू घायल अवस्था में ही गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे कि फौज ने उन्हें घेर लिया। राजू के पास उस समय सीमित संसाधन थे। युद्ध सामग्री समाप्त होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फौज की संख्या भी उस समय कम ही थी। अंग्रेजों को डर था कि कोतवाली ले जाते समय सीताराम राजू के लोग हमला करके उन्हें छुड़ा लेंगे। इसी विचार से फौज के गोरली नामक एक अफसर ने राजू को एक पेड़ से बांधकर गोलियों से भून डाला। भारत के एक सच्चे सपूत ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। नमन है ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। वंदे मातरम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 15वीं कड़ी में पहुंच गए हैं। इतिहास के पन्नों से 15वें एपिसोड में भी इस बार भी हमारे साथ हैं जानी मानी पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: आज पूजा जी हमें किस बारे में बताएंगी वो तो हम जल्दी ही जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा पिछली बार के बारे में बता देते हैं। पिछली बार पूजा जी ने हमें देवगढ़ के किले के बारे में बताया, उस किले की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसकी जानकारी दी, किस प्रकार सुरक्षा दीवारें थी, किस तरह दोहरी सुरक्षा दीवारें थी। बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत एक अनूठी जानकारी पूजा जी ने हमें दी कि वहां मैला ढोने की परंपरा नहीं थी, उस किले के ऊपर भी टॉयलेट्स का निर्माण, शौचालयों का निर्माण था और जहां से जो गंदगी थी, जो मैला था, वो सीधे किले के बाहर प्रवाहित कर दिया जाता था। तो एक बहुत एक अनूठी बात ये थी। और उसके अलावा एक बहुत अनूठी बात जो पूजा जी ने हमें बताई कि उस किले में कुछ ऐसी जगहें थी जहां से यदि आवाज लगाई जाए, कुछ आवाजें जो संकेतक आवाजें थी, जो संकेत के रूप में भेजी जाती थी गुप्तचरों द्वारा, वो 5 किलोमीटर दूर से यदि वो आवाजें निकाली जाती थी किले के बाहर नीचे से, तो वो उस जगह पर सुनाई देती थी। और न सिर्फ सुनाई देती थी, उस जगह से निकाली गई आवाजें वापस 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच भी जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हमें पूजा जी दे रही हैं। और आज पूजा जी हमें किस बारे में बता रही हैं, गोंड राज्य के किस किले की हम बात करेंगे, किस जगह की बात करेंगे, पूजा जी से ही जानते हैं।
2: अभी तक हम लोगों ने सुना कि मध्य भारत में एक तो हमने गढ़ामंडला राज्य के बारे में चर्चा की
1: जी।
2: इसके बाद हमने देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में जाना और एक और राज्य था चंद्रपुर का गोंड राज्य, ये महाराष्ट्र में है। पर मध्य प्रदेश में भी गोंडों का एक और राज्य था जिसको कि खेरला का गोंड राज्य कहा जाता है।
1: अच्छा।
2: जो वर्तमान में बैतूल है वहां पर इनकी राजधानी हुआ करती थी।
1: अच्छा।
2: तो जो खेरला का राज्य था वो आज के बैतूल जिले और उसके आसपास जो हरदा जिला है, नर्मदापुरम है, यहाँ तक फैला हुआ था।
1: अच्छा।
2: और ये जो क्षेत्र है ये बड़ा ही समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर तो नर्मदा और ताप्ती जैसी
1: जी,
2: बड़ी नदियां बहती हैं और इसके साथ ही सतपुड़ा का घना जंगल है, तो वन संपदा भी भरपूर है। और इसके साथ ही ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर भी था, इसलिए भी ये क्षेत्र बड़ा संपन्न था और महत्वपूर्ण था, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से ही एक किला था।
1: तो पूजा जी, जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग वो किस तरह से था, क्योंकि जिसको हम गेटवे ऑफ सदर्न कहते हैं, नागपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्या इसलिए था ये व्यापारिक मार्ग के दक्षिण यहाँ से पहुंचा जा सकता था?
2: जी हाँ, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि यदि उत्तर से दक्षिण की तरफ यात्रा करनी है प्राचीन काल में, आज भी, तो नर्मदा को तो पार करना ही होगा। तो देवास जिले में जो हंडिया है वहां से नर्मदा पार की जाती थी और फिर आगे बढ़ते हुए हम कई रास्ते चुन सकते थे, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण रास्ता बैतूल था, आज भी है। क्योंकि उसका सामरिक महत्व है, जहाँ से व्यापारी निकलते हैं वो हमेशा से बड़ा सामरिक महत्व का होता है, इसलिए ये किला यहाँ बनाया गया होगा।
1: तो ये किला वहाँ पर कब बनाया गया पूजा जी?
2: किले का जो पुरातात्विक अवशेष हैं, यदि हम उन्हें देखें तो ये बहुत प्राचीन किला रहा होगा जिसमें समय समय पर विस्तार हुआ होगा
1: जी।
2: लेकिन अगर इस क्षेत्र के इतिहास पर हम नजर डालें तो दिखाई देता है कि 130 ईस्वी से 161 ईस्वी तक, यानी कि आज से लगभग 2000 साल हो गए, जी हाँ, आज से लगभग 1950 साल या 2000 साल पहले एक राजा का नाम मिलता है जिसका नाम था कोंडली
1: जी।
2: तो जो शोध कहते हैं वो ये है कि ये कोंडली जो था वो गोंड राजा था। तो यानी कि आज से 2000 साल पहले भी इस क्षेत्र में गोंडों का शासन हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण संदर्भ है वो है 997 ईस्वी का, यानी लगभग आज से 1000 साल पहले हो गया। और इसमें हमको एक नाम दिखाई देता है खेरला के राजा का और वो नाम है एल है उस राजा का नाम।
1: अच्छा।
2: जी, और राजधानी का नाम जो मिलता है वो है एलिजापुर।
1: अच्छा,
2: तो हो सकता है कि खेरला का पुराना नाम एलिजापुर रहा हो और बाद में कभी खेरला हो गया हो, या फिर आसपास का कोई क्षेत्र जो है वो एलिजापुर के नाम से जाना जाता होगा और ये खेरला ही रहा होगा। इसके अलावा हमें 10वीं 11वीं सदी में भी कुछ इस स्थान के संदर्भ मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं 11वीं सदी में यहाँ परमारों का शासन था, और हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो राजपूत राजा हुआ करते थे
1: जी,
2: वो वन क्षेत्र को उन जनजातियों के पास ही छोड़ दिया करते थे। राजस्व हो या फिर वन संपदा हो, उस पर उन्हीं का अधिकार हुआ करता था जो जनजातियां उस क्षेत्र की जानकार होती थी, जो वहां की निवासी थी। तो इसी प्रकार से जब यहाँ परमारों का शासन था तो खेरला में भी कोई गोंड जनजाति ही उस क्षेत्र की देखभाल करती होगी, तो वहां पर भी कुछ हमको इस तरीके के ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। जो खेरला का किला है उसकी भी अगर आप दीवारों में और इमारतों में देखेंगे तो परमार काल के कई स्थापत्य खंड और प्रतिमाएं वहां दिखाई देती हैं। इसके साथ ही यह भी कई विद्वानों ने लिखा है कि खेरला का जो राज्य था उसके राजपूतों से बड़े घनिष्ठ संबंध थे, यहाँ तक कि रोटी बेटी का संबंध भी था, आपस में वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: गोंड में और राजपूतों में। जी हाँ, खेरला के बारे में तो ये विशिष्ट बात है। तो इस तरीके से इसके बड़े ही प्राचीन संदर्भ हमको मिलते हैं।
1: तो पूजा जी, ये जो जानकारियाँ आप हमें बता रही हैं, क्या ये सिर्फ जो अवशेष बचे हैं उन्हीं को आधार मानकर हमारे पास ये जानकारियां हैं, या जैसा कि कई बार कुछ शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, कुछ वैसा भी कुछ हमारे पास इस तरह के साक्ष्य भी मौजूद हैं?
2: खेरला का किला बैतूल में है
1: जी,
2: और किले की दीवार पर एक शिलालेख लगा हुआ है, और शिलालेख में लिखा है कि 1363 ईस्वी में राजा नरसिंह ने एक बावड़ी बनवाई।
1: अच्छा।
2: और जगह का नाम भी लिखा है खतकपुरा, खतकपुरा में एक बावड़ी बनवाई, ऐसा एक उल्लेख आता है। तो ये अभिलेख हो सकता है कि मूल रूप से इस किले में ना लगा हो, किसी बावड़ी में लगा था जिसे राजा नरसिंह ने बनवाया था
1: जी,
2: और बाद में कभी इस शिलालेख को यहाँ लाकर लगा दिया गया, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये जानकारी किले में ही दी गई हो, दोनों बातें हो सकती हैं। इसके साथ ही एक और चीज देखने लायक है कि खतकपुरा नाम की जगह का यहाँ पर उल्लेख आता है
1: जी।
2: तो एक मान्यता ये भी है कि खेरला का शायद पुराना नाम खतकपुरा रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जहाँ बावड़ी थी वो जगह खतकपुरा के नाम से जानी जाती
1: अच्छा।
2: होगी। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियाँ हमको दिखाई देती हैं।
1: पूजा जी, पिछले एपिसोड में तो देखिए हम बात कर रहे थे देवगढ़ के किले के बारे में, और बहुत हैरत अंगेज बातें पता लगी थी, और वो भी हमें इतनी हैरत में इसलिए डाल रही थी क्योंकि वो बात हो रही थी 400-500 साल पहले की, और ये किला तो 2000 साल पहले का है, फिर जब परमार आए तो वो बात हो रही 1000 साल पहले की। तो हमें यहाँ किस तरह का स्थापत्य देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये तो फिर और भी हैरानी में डालने वाली बातें हो सकती है।
2: जी हाँ, बैतूल जिले में जब आप पहुंच जाएं तो फिर एक घना जंगल पार करते हुए हम लोग सड़क मार्ग से किले तक पहुंच जाते हैं
1: जी।
2: लेकिन सबसे पहले हमको जो दर्शन होते हैं वो एक मंदिर के होते हैं।
1: अच्छा।
2: तो किले की पहाड़ी की तलहटी में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, और आजकल इस मंदिर को मुकुंद राज की समाधि भी कहा जाता है।
1: अच्छा।
2: वास्तव में ये मंदिर तो परमार काल का है, भूमि शैली का मंदिर है, जिसे 11वीं-12वीं सदी में बनाया गया होगा।
1: लगे हाथों हमें ये भी बता दीजिए कि भूमि शैली क्या होती है।
2: भूमि शैली परमारों की एक खास शैली है, जिसमें कि ऐसा माना जाता है, जैसा कि हमको भूमि शब्द से ही समझ में आ रहा है ना, जिसका जन्म ही भूमि से हुआ हो वही भूमिज है
1: जी।
2: तो इस शैली में शिखर फर्श से ही शुरू हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर है उसकी भित्ति यानी दीवार नहीं है, उसका शिखर सीधे शुरू हुआ है,
1: मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई चबूतरा नहीं है, सीधे सीधे वो मंदिर जमीन से ही शुरू हो रहा है।
2: उसी को हम लोग भूमि शैली कहते हैं, जो खासकर राजा भोज के समय बड़े प्रचलन में आई। तो ये एक भूमि शैली का मंदिर रहा होगा, पर बाद में लगभग इसी काल में या कुछ समय बाद एक बड़े प्रसिद्ध मराठी के कवि हुए हैं मुकुंदराज।
1: अच्छा।
2: वो भी परमार काल के हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी समय यहाँ आकर इस मंदिर में ठहरे होंगे और उन्होंने कुछ साधना और लेखन यहाँ किया होगा
1: जी।
2: उनके दो बड़े सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं मराठी में, एक का नाम है विवेक सिंधु और एक का नाम है परमानंद
1: जी।
2: तो ये जो विवेक सिंधु है बड़ा ही सुप्रसिद्ध है, आज भी लोग बाग इसको पढ़ते हैं। और इस विवेक सिंधु में मुकुंद राज जी ने आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद सिद्धांत है उसको जो उन्होंने प्रतिपादित किया उसकी चर्चा मुकुंद राज ने इस विवेक सिंधु में की है, बड़े ही विस्तृत रूप में।
1: क्या बात है,
2: पढ़ने लायक ग्रंथ है ये।
1: तो क्या ये ग्रंथ अभी भी हमारे श्रोताओं के लिए उपलब्ध है, कहीं पढ़े जा सकते हैं?
2: बिल्कुल, बहुत सी लाइब्रेरियों में इसका अनुवाद है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है और मराठी में तो मूल रूप से ये ग्रंथ था ही।
1: तो आप लोग अवश्य पढ़िए, देखिए जो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे सामने आ रही है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना हमें ये जानकारियां दे रही है। विवेक सिंधु और परमानंद, ये दो प्रसिद्ध कृतियां थी, प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जो कि मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि मुकुंद राज जी ने लिखे थे और आज इनका अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं में मौजूद है, बिल्कुल आप इन्हें ढूंढ सकते हैं। और आदि शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है उस पर इसमें चर्चा की गई है। जी पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप हमें दे रही हैं और हमें लग रहा है बस आप आगे बस इसी तरह से हम बढ़ते चलें, सुनते चलें आपको।
2: इस मंदिर के पास में एक छोटा सा तालाब है
1: जी,
2: और पास में ही दो खंबे लगे हैं।
1: अच्छा,
2: लेकिन खंबे पर राजा वली शाह का नाम आता है और एक तिथि भी अंकित है।
1: तो ये वली शाह वही है जो देवगढ़?
2: जी हाँ, बिल्कुल वही है। देवगढ़ का संबंध खेरला से था, ये इसके अभिलेख से सिद्ध होता है। लेकिन इन खंभों पर एक और देखने वाली चीज है
1: जी।
2: वो क्या है कि किसी एक विशेष स्थान से उसकी कितनी दूरी है ये भी उस पर अंकित है।
1: अच्छा।
2: जैसे आजकल हम माइलस्टोन लगाते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: इसी तरीके से इसमें दूरियां लिखी हुई है।
1: अच्छा,
2: जैसे कोस मीनार के बारे में हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कोस के बाद में वो कोस मीनारें बनाई जाती थी, पर यहाँ पर जो गोंडों की परंपरा दिख रही है उसमें इस तरीके के स्तंभ लगाकर उस पर दूरियां लिखना, ये भी अपने आप में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण विरासत है।
1: और उस समय ये दूरियां कैसे किस तरह मापी जाती होंगी ये तो आज भी हमारे लिए बहुत हैरत में डालने वाली बात है।
2: जब हम किले की तरफ आगे बढ़ते हैं, आजकल तो बहुत से खेत हैं वहां पर एक प्राकृतिक चट्टान है और उस चट्टान को देखिए तो वो ऐसी लगेगी जैसे कोई हाथी खड़ा हो, उसी साइज का ऐसी दिखती है वो, तो लोग उसे कहते हैं कि वो किले का हाथी द्वार है।
1: अच्छा,
2: और फिर हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं और किले की पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अपन ने देवगढ़ के बारे में भी बात की थी कि सर्पिलाकार मार्ग होता है, कई सारे द्वार होते हैं, तो उसी तरीके से खेरला के किले में भी सर्पिलाकार मार्ग है और कई सारे दरवाजे हैं। और जैसा कि होता है किले की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हैं और किले के अंदर बहुत सारे भवन भी हैं। जी,
1: तो हमारे नए जुड़े श्रोताओं के लिए हम ये बता दें कि ये जो मार्ग थे ऊंचे किलों पर सर्पिलाकार मार्ग इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो दुश्मन है उसे चढ़ने में किसी भी किस्म की आसानी ना हो, उसे बहुत दुश्वारियां आए, बहुत ऐसे अंधे मोड़ आएंगे। और फिर उसके बाद दीवार बनाई जाती थी और फिर कहीं कहीं दोहरी दीवार बनाई जाती थी ताकि किसी भी तरह से संकट के समय किले की सुरक्षा की जा सके।
2: तो किले में अंदर जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि गोंड किलों की यह विशेषता होती थी कि ऊंची पहाड़ियों पर भी जल की उपलब्धता होती थी, तो खेरला के किले में भी जल की उपलब्धता है, वहां पर पानी का स्रोत है। इसके साथ ही कई सारे और भी बहुत सारे तालाब बने हैं, यहाँ तक कि पानी को संग्रहित करने के लिए भवनों के नीचे भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें साल भर का पानी एकत्र करके रखा जा सकता है।
1: अच्छा।
2: और जैसा हमने कहा कि एक और से तो मार्ग है किले में चढ़ने के लिए जो मुख्य मार्ग है, इसके साथ ही पीछे की ओर जो किले का पिछला हिस्सा है वहां पर एक छोटा दरवाजा है। अक्सर किलों में ऐसे दरवाजे होते हैं और उन्हें खिड़की कहा जाता है।
1: अच्छा।
2: तो ऐसी एक खिड़की यहाँ पर भी है।
1: खेरला के आसपास के जो किले होंगे उनके बारे में भी कुछ हमें, या जो भी मॉन्यूमेंट्स हो उनके बारे में कुछ बताइए।
2: जैसा हमने पहले भी सुना कि जो गोंड किले होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे चौकियां और गढ़ जो हैं उनके चारों तरफ बनाए जाते थे।
1: जी, जी।
2: तो इसी तरीके से हमको खेरला के आसपास भी बहुत से गढ़ और गढ़ियां दिखाई देते हैं
1: जी।
2: जो उसको सुरक्षा प्रदान करते होंगे, उनमें से जैसे असीर का किला है, भंवरगढ़ का किला है, सांवलीगढ़ का किला है, इस तरीके के कई सारे गढ़ रहे होंगे जिनके अब लगभग नाम मात्र के अवशेष ही रह गए हैं
1: जी।
2: पर हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से ये पूरा ही परिदृश्य बड़ा महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: इसके साथ ही हमको एक भैंस देही का मंदिर भी है जो कि गोंड काल का है और उसकी बड़ी मान्यता है आज भी
1: जी, बिल्कुल।
2: तो अगर आप बैतूल जिले में ही पूर्णा नदी के तट पर जाएं तो तो वहां पर ये बड़ा सुप्रसिद्ध भैंसदेही का मंदिर है, और इसके पास में जो बस्ती है वो भी मानी जाती है कि गोंड काल की ही है वो बस्ती।
1: अच्छा।
2: आज भी अनवरत लोग उसमें रह रहे हैं।
1: जी जी।
2: और ये जो मंदिर है भैंसदेही का, बड़ा सुंदर है, नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग किया गया है इसमें। और अब तो हालांकि इसका काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसका जो विशाल शिखर था इसमें तीन ओर से प्रवेश द्वार थे, अब लगभग समाप्त से हो गए हैं किसी कारण से, लेकिन जिस समय ये रहा होगा तो बड़ा ही आकर्षक लगता होगा। और इसका जो निर्माण काल हमको दिखाई देता है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास दिखता है।
1: जी।
2: और इसकी सीढ़ियों के पास में एक कुंड भी है, ऐसी मानता है कि ताप्ती नदी भूमिगत हो जाती है वहां पर।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो लोग बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, वो यहाँ पर करते हैं। बड़ा इस क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है ये।
1: तो खेरला के किले के बारे में आज पूजा जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी, जो कि आज के बैतूल जिले में स्थित है, और अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं।
2: जी हाँ, ये पर्यटन स्थल है।
1: क्या पूजा जी इसके अवशेष बस देखे जा सकते हैं?
2: नहीं नहीं, इस किले का बड़ा महत्व है आज भी, और दूर दूर से लोग यहाँ पर मुकुंदराज की समाधि देखने के लिए और किले का भ्रमण करने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में।
1: वाह, देखिए, तो पुरातत्व के नजरिए से बस बात नहीं हो रही, ये बात तो काफी कुछ पर्यटन के नजरिए से भी हो गई, और पर्यटक भी यहाँ पर, हमारे जो श्रोता हैं जो इतिहास के पन्नों को पलट रहे थे, उन्हें तो यहाँ पर पर्यटन के भी कुछ रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, और हमारे समृद्ध इतिहास को देख सकते हैं, गोंड राज्य शासन की व्यवस्थाओं को आप अपनी आंखों देखे वहां जाकर के सब कुछ समझ सकते हैं। पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिल रही हैं, और बहुत बार आप ये कहती हैं कि वहां पर अवशेष थे, अब खंडहर बचे हैं, तो निश्चित रूप से श्रोताओं, जो आज खंडहर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो खंडहर होते हैं ना, वो कभी ना कभी किसी भव्य समृद्ध शासन की गवाही देते हैं। ऐसे ही समृद्ध शासन की हम बात आगे जारी रखेंगे, प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हमारी 15वीं कड़ी में आज हमने बात की है खेरला के राज्य के बारे में, खेरला के गोंड राज्य के बारे में, और अगली बार फिर किसी गोंड राज्य के बारे में पूजा जी से बात जारी रहेगी कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में। आज बस हमें दीजिए यही इजाजत, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया श्री अमित कुंदानी ने। दीजिए मुझे इजाजत, यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को नमस्कार। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा, बस एक अंतराल के बाद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन को ओस की बूंद की तरह कहा गया है जो सूर्य की एक किरण के साथ विलीन हो जाता है। आकाश में उमड़ते मेघ, नदी की बहती धाराएं, वृक्षों से झरते पत्ते और ऋतुओं का निरंतर परिवर्तन, प्रकृति का प्रत्येक दृश्य मानो एक ही सत्य का उद्घोष करता है कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। काल का चक्र निरंतर घूम रहा है, वो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, किंतु उसके स्पर्श से यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है, वैभव स्मृति में बदल जाती है और आज बीतकर इतिहास में विलीन हो जाता है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम इसी गहन सत्य पर चिंतन करते हैं। वो देखते हैं कि जीवन जल पर खींची हुई रेखा के समान है, क्षणभंगुर है और काल की अथाह धारा में समस्त सांसारिक उपलब्धियां तिनकों की भांति बह जाती हैं। उनका ये चिंतन उस शाश्वत सत्य की खोज का आमंत्रण है जो परिवर्तन और विनाश से परे है। तो आइए योग संवाद आरंभ करें और योग वासिष्ठ के आलोक में काल के प्रभाव तथा जीवन की अनित्यता के विषय में मनन करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: इन दिनों योग वासिष्ठ ग्रंथ हमने खोला हुआ है
3: जी।
2: और इसके वैराग्य प्रकरण में जो कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा होगी काल के प्रभाव की और जीवन की अनित्यता की। तो इस बिंदु पर भगवान श्री राम ने पराधीनता की बात की, मनुष्य की पराधीनता की, कि मनुष्य पराधीन है और कुछ कारण बताए हैं। तो क्या देख रहे हैं भगवान और पराधीनता से आशय क्या है?
3: पराधीनता से आशय है कि काल की ही स्मृतियां हमें होती हैं। आप देखें तो हम पूरे समय में जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, अगर उसको हम समग्रता से कहें तो वो किसी काल की ही स्मृति कर रहे हैं। भले उस काल में कोई घटना हो, कोई व्यक्ति हो, आपके सुख दुख से जुड़ी कोई स्मृति हो, तो काल के ही अधीन हम रहते हैं। जो स्वाधीनता शब्द है, इसका अर्थ वास्तव में लोग जानते नहीं है। स्वाधीनता कोई विचार नहीं है। स्वाधीनता अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या योग के दृष्टिकोण से देखें तो वो स्व के अधीन होना, यानी स्व को उपलब्ध होना है, जबकि स्व अनुपलब्ध नहीं है। स्व के साथ आप इसलिए नहीं है कि आप निरंतर किसी न किसी काल का चिंतन कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब बताइए कि इस संसार नामधारी प्रपंचों में मेरे जैसे लोगों का क्या आस्था हो। कहते हैं, हे मुने, आदमी प्रारब्ध कर्म के वशीभूत होकर सुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित होकर किसी न किसी बिके हुए दास अथवा वन में मृग की भांति पराधीन हो रहा है। अब आप देखिए कि सुख दुख को हम लोग कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म का भोग है। सुनते हैं हम सामान्य शब्दों
2: जी,
3: में
2: जी, जी।
3: प्रारब्ध कर्म को भोगा ही जा सकता है, प्रारब्ध को आप टाल नहीं सकते। ऐसा भी हमारे जो गुणी जन हैं या जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं कि प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कई संतों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको अगर असाध्य बीमारियां हुई तो उन्होंने उन बीमारियों को ठीक करने के लिए कभी अपने आराध्य से याचना नहीं की, क्योंकि कहा ये मेरा भोग है, इसको भोग करके,
2: हाँ
3: बिल्कुल जी, भोग करके इसे हम समाप्त करें, ये उनकी जागृति थी। तो ऐसे में राम जी कहते हैं कि जब ऐसा प्रारब्ध है कि जब इसको बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो अंततः व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है और जी रहा है वो तो प्रारब्ध के अधीन हो गया
4: जी जी।
3: तो पराधीन ही तो है, वो कहां स्वाधीन है। तो कहते हैं कि ये काल ही व्यक्ति को पराधीन करता है। ये राम जी का गूढ़ चिंतन है कि वो काल को इस रूप में देखते हैं कि काल व्यक्ति की पराधीनता का कारण है और स्वाधीनता पर जो आवरण और विक्षेप नामक माया का जो प्रभाव है उस प्रभाव से वो ग्रसित इसलिए है कि वो काल के स्वरूप को पहचानने में असमर्थ है। वो बार बार उसी काल का चिंतन करता है, काल के प्रभाव में रहता है, काल को भोगने का प्रयास करता है। तो इस दृष्टिकोण से राम जी ने कहा कि यहाँ सभी लोग पराधीन है और गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सपनों सुख नाही। तो ऐसे में अब जब काल व्यक्ति को पराधीन किए है तो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है, इसीलिए संसार को दुख का आलय कहा गया। ये तमाम ऋषियों के मतलब आध्यात्मिक अनुसंधान है।
4: अच्छा, भगवान श्री राम ने काल को निर्दयों का राजा भी इसमें कहा, क्यों कहा?
3: जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान राम ने कहा कि काल निर्दय, जैसे कहते हैं ना कि जिसको दया ना हो, तो ऐसे समय किसी को बकसता नहीं है। लोग बाग ये सोचते हैं ना कि मतलब हम अपने अनुसार चीजों को कर लेंगे, ये सच ये नहीं है। वो काल उनके अनुसार किया हुआ है, बस इतनी सी बात है, और उनको लगता है ये हमने किया है। जबकि काल की जब गति घूमती है तो आप देखते होंगे कि राजा कैसे रंक बन जाता है, कैसे सारी संपन्नता के बाद भी व्यक्ति विपन्न होकर के बिलाप करता है। तो काल इतना निर्दय है कि एक पल के लिए भी वो सोचता नहीं है या उसके पास क्षमा जैसी चीज नहीं है। वो आपका प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध कैसे आपको मुक्त कर सकता है? प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए काल को भगवान राम ने कहा, काल मेरी दृष्टि में निर्दयों का राजा है, वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। यानी आप देखिए कि जब सारे पुरुष अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं और प्रारब्ध जो है वो काल व्यक्ति को पराधीन कर रखा है, तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो स्वाधीन दुर्लभ हो गया है जो कम से कम काल के प्रभाव से अपने को मुक्त जाने। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये सब पर अपना प्रभाव दिखा रहा है और सारे जो भूत हैं मतलब जो काल के प्रभाव में हैं।
4: जी अच्छा शशिकांत जी, ये बताइए कि वैभव का जो स्वरूप है और उसके भोग का परिणाम क्या है?
3: हाँ, वैभव का स्वरूप राम जी कहते हैं कि वैभव अल्प एवं तुच्छ है। व्यक्ति को लगता है कि हम निरंतर वैभवशाली हों, हम लोग आशीर्वाद भी देते हैं।
4: जी।
3: राम जी कहते हैं दृष्टि में कि कोई ऐसा वैभव नहीं है जिस वैभव के साथ हमेशा आप वैभवशील बने रहें।
4: अच्छा।
3: क्योंकि आप कभी विचार करके देखिए कि जो सफलता आज आपके लिए बड़ी मूल्यवान है उसको अर्जित कर लेने के बाद फिर किसी और की तलाश आप करने लगते हैं और वही सफलता आपको तुच्छ लगती है, है ना? तो देखिए कितनी बड़ी दृष्टि है जिस पर लोगों को विचार करना चाहिए कि इस संसार में हम जिसे भी चाहते हैं वो तुच्छ ही है। क्योंकि जिस समय आप चाह रहे हैं उस समय वो मूल्यवान हो सकती है, लेकिन कुछ काल बीत जाने के बाद वो आपको तुच्छ प्रतीत होगा। तो उन्होंने कहा कि जो वैभव का मूल स्वरूप है वो अल्प और तुच्छ है, तथा जितने भी भोग के स्थान हैं वो भयंकर और परिणाम में निरंतर दुख देने वाले हैं।
4: अच्छा।
3: जबकि व्यक्ति भोग के रूप में सुख चाहता है, और वो कहते हैं कि आप देखिए कि सुख की चाह ने ही तो व्यक्ति को दुखी किया है।
4: जी,
3: या कह सकते हैं सुख की चाह जिसे है वो अपने को दुखी भी घोषित कर रहा है एक ने एक रूप में। तो कहते हैं कि ये जो भोग का स्थान है वहां पर वो भयंकर है, वो भयानक है, क्योंकि वहां सुखी किसी कोई नहीं हुआ। और हम लोग कहते भी हैं कई बार कि जिस स्थान पर जाकर के आपको सुख का अनुभव या अनुभूति होने की संभावना दिखाई दे रही है उन स्थानों पर तो बहुत लोग पहुंचे हुए हैं। आप उनको देखिए क्या वो सुखी हैं?
4: वो सुखी हैं बिल्कुल,
3: तो वो नहीं है। तो जब देखते हैं तो कहते हैं ये भोग है, ये भयंकर है, ये देख के डर लगता है। जो अज्ञानी लोग हैं भले इस भोग के पास में बंधे हों, लेकिन जो ज्ञानी है जिसको विवेक है वो इस भोग को भयंकर देखता है और भोग का परिणाम अंततः दुख ही मिलता है, और उसको राम जी कहते हैं कि दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाला है भोग।
4: अच्छा।
3: जी ऐसा भी दुख नहीं है जो मतलब जिसका अंत हो जाए, वो देर तक उसका अंत नहीं होगा, आप उस दुख को भोगते रहेंगे।
4: जी, जी। अच्छा, मनुष्य के बंधन का कारण क्या बताया है इसमें?
3: बिल्कुल सुंदर आपने कहा। राम जी कहते हैं कि मनुष्य जैसे बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अभी वो किसी बंधन में नहीं है। देखें तो देह है उसके पास और देह की आवश्यकताएं हैं, उसके बाद वो संसार का कोई भी ज्ञान या संसार के संबंधों का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन जैसे ही थोड़ा वो समझदार होता है और लोगों को पहचानने लगता है, तो वो पहचानने नहीं लगता, वो वहीं से बंधना शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि बंधु बांधव या जो परिवार है ये सब बंधन के कारण है, इन्हीं में जीव बंधता है। और इसको राम जी तो कहते ही हैं, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं रूसो, जो कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन, कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो बंधन जकड़ा हुआ है। तो राम जी यही कहते हैं कि ये बंधु बांधव, संसार की पद प्रतिष्ठा, मान अपमान, यही तो जीव का बंधन है, व्यक्ति का बंधन है, इसी बंधन में वो बंधा है, जबकि वो अपने लिए उसे आवश्यक समझता है। आश्चर्य देखिए कि वो हमारे लिए बंधन भी है और उस बंधन में रह करके हम मुक्ति भी चाहते हैं, है ना, उस बंधन से मुक्त होना नहीं चाहते, बंधन में रहते हुए मुक्ति चाहते। कितनी बड़ी बात, मुझे आश्चर्य होता है। एक महात्मा थे, तो उनके पास कोई व्यक्ति गया, वो कहा कि मैं क्रोध से, आसक्ति से और जो जितने भी मन के दोष हैं, इन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने, वो मंदिर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने मंदिर का जो वो पिलर है उसको जोर से पकड़ लिया और कहा कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो वो कहने लगे ये क्या कह रहे हैं आप, कहते जो तुम्हारी दशा है उसी को तो बयां कर रहा हूं मैं, कि पकड़ा तुमने है और तुम कह रहे हो कि मैं मुक्ति कैसे चाहिए। तो ऐसे में जो हमारे लिए बंधनकारी है उसी में रहते हुए हम मुक्त होने का ख्याल करते हैं। कितनी बड़ी ये व्यवस्था है। राम जी जैसा विवेकवान पुरुष इसको देखता है कि व्यक्ति का जो बंधन है वो बंधु बांधव और उसके अपने ही है।
4: अद्भुत है,
3: अद्भुत है जी,
4: कि हम स्वयं बंधे हुए हैं
3: जी,
4: और वो बंधन हमें पसंद भी है, हमें मुक्त भी हो जाना है
3: जी।
4: तो ये दृष्टि आम मनुष्य की है
3: जी,
4: जिसको भगवान देख रहे हैं
3: जी।
4: अच्छा ये बताइए कि आत्मा का भी कोई शत्रु हो सकता है क्या?
3: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे स्मृति में आया कि यद्यपि आत्मा न किसी की शत्रु है न मित्र है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आत्मा का कोई शत्रु नहीं हो सकता। आप के अंदर शत्रुभाव न हो, निर्भयता की स्थिति आपने साध ली हो, लेकिन संसार आपसे बैर कर सकता है जी। तो वो कहते हैं कि आत्मा का जो शत्रु है वो बिना जीता हुआ मन है, जिस मन पर आपने स्वामित्व अर्जित नहीं किया, यानी मन के स्वामी आप नहीं बने, तो वो मन कभी भी आत्मोन्मुख नहीं होने देगा, आपको विषयोन्मुख बनाएगा। मन मुखी जो व्यक्ति होता है वो विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मन ही आत्मा का शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा विषयों के चिंतन में आपको भोग की तरफ, विलास की तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसे में जो उस मन को जीत लेता है वो व्यक्ति विषयों का त्याग करके आत्मोन्मुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग मन को अपने वश में नहीं कर पाए हैं, जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है, वो हमेशा विषयोन्मुखी होते हैं, बल्कि वो आत्मा को भी विषय बनाकर उसका चिंतन करते हैं। यहाँ आश्चर्य की बात मैं कर रहा हूं कि बड़े बड़े आप देखेंगे साधकों को ये भ्रम सा हो जाता है कि वो आत्मा को ही विषय बना चुके हैं, कि आत्मा को पाना हमारा लक्ष्य है। इस पर मैं फिर एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि एक गुरु ने अपने शिष्य को भेजा कि आप जाओ इस महात्मा के पास, तुम्हें वो बोध कराएगा। तो वो शिष्य महात्मा के पास गया, सोचा कि हमारे गुरु जी से भी ये श्रेष्ठ महात्मा होंगे। तो देखा तो उस महात्मा ने तो कभी न भगवान की स्मृति की, न कभी पूजा किया, न पाठ किया, वो ऐसे ही संसार के कार्य करते थे, एक बार भी भगवान को याद नहीं किए। काफी दिन हुआ, देखते देखते जब काफी दिन बीत गया तो उनको आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरु जी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, इससे तो श्रेष्ठ उनका व्यवहार रहा, इनके पास तो कोई मतलब ऐसा व्यवहारिक सदकर्म नहीं है जिसके वजह से मैं इनको जानूं कि ये परमात्मा भी इनके लिए मूल्यवान हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा कि मेरे गुरुजी ने आपके पास बोध के लिए भेजा है, और मैंने कभी परमात्मा के लिए एक पल भी आपको विचार करते हुए देखते नहीं, नहीं।

0: और जो दूर होने की बात समझ रहे हैं वो एक प्रकार से कहीं कहीं भ्रम के शिकार हैं, अज्ञानता के शिकार हैं, जिसको कबीर साहब कहते भी हैं, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना हमन को इंतजारी क्या। तो परमात्मा इंतजार अलग होने का विषय नहीं है, वो आप में ही है। तो आत्मा पाने का विषय नहीं है, लेकिन लोग आत्मा को भी पाने का प्रयास करते हैं। ये मन का खेल है, मन समझिए मन की चालाकी है, वो अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार में आपको उलझा देता है और वो आत्मा और ब्रह्म को भी विषय बना देता है, जबकि वो विषय नहीं है, वो तो सत्ता है आपकी, उसे कैसे विषय बना सकते हैं। विषय तो मन के हो सकते हैं, और मन से जब आत्मा का चिंतन करेंगे तो मन आत्मा कब विषय बन जाएगा इसको खोज पाना आसान नहीं होगा।
1: आसान नहीं, बिल्कुल। अंतःकरण में जो व्याकुलता है क्या कारण उसका होता है?
0: उसका कारण है दूषित बुद्धि। और यहाँ फिर आपको पूछना चाहिए कि दूषित बुद्धि का क्या कारण है।
1: जी।
0: तो दूषित बुद्धि तभी होती है जब मन किसी सुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में राग कर ले और किसी दुख की स्मृति के साथ किसी विषय वस्तु में द्वेष कर ले।
1: अच्छा।
0: तो राग द्वेषात्मक जो उसकी प्रवृत्ति होगी और उस प्रवृत्ति में संलग्न जो बुद्धि होगी वो दूषित बुद्धि होगी। तो ऐसी दूषित बुद्धि अंतःकरण में व्याकुलता उत्पन्न करती है। आप संसार में देखिए लोग व्याकुल दिखाई देते हैं आपको, भागते दिखाई देंगे, जैसे लगता है कितनी दूर कहां जाना है और क्या पाना है, जबकि सच ये है कि संसार में क्या ऐसा प्राप्तव्य है। राम जी कह भी रहे हैं कि यहां जो कुछ भी पाने योग्य है सब छूट जाता है। जब ये शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के शक्तिहीन हो जाती है, संतुलन खो बैठती है, तो ऐसे में इस संसार में कोई ऐसा मूल्यवान वस्तु नहीं है सिवाय आपके कि आप अपने चिंतन को करने के बजाय, स्वाधीनता को पाने के बजाय, आप जो पराधीनता है, वो पराधीनता जो काल आपको बना रहा है, पराधीन कर रहा है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। जिसको कहते हैं गोस्वामी जी, नाचई सभी नचावत राम गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। तो ये स्थिति है कि हर आदमी जो है बंदर की तरह नाच रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जो आत्मा है, जो राम है, आत्मा राम, उसको आप नहीं जान रहे हैं और राम को आप यहां वहां भटक के घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। तो बुद्धि की मलिनता का मूल कारण है, मतलब अंतःकरण के व्याकुल होने का कारण है बुद्धि की दूषित होना, और बुद्धि का दूषित होना है मन के साथ बुद्धि का बहाव।
1: आपने कहा कि जो हमारी इच्छाएं हैं उनके साथ हमारा एक मोह बने और हम किसी सुख की कामना के साथ इच्छाओं को चाहें,
0: जी,
1: तो ये भी दूषित बुद्धि है।
0: दूषित, आप कभी देखिए ना, इच्छाओं को आज तक भाई हमारी बहुत सारी इच्छाएं हमने पूरी की, लेकिन पूरी करने के बाद क्या इच्छाओं ने हमें छोड़ा? इच्छाओं ने तो हमें बांधा ना, हम हमेशा इच्छाओं के गुलाम होते चले गए और हम कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाए। तो आज भी आप देखिए पूर्व का जो अनुभव है उस अनुभव से हम नहीं सीख रहे हैं। विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने वाला मनुष्य आज भी इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इच्छा एक प्रकार का बंधन है जो व्यक्ति को बांध रही है और बुद्धि को दूषित कर रही है।
1: जिस राग और द्वेष की आपने बात की है उससे मुक्ति के लिए एक संक्षेप में एक बात कहें कि किस तरह से क्या दृष्टि हो
0: इसके। मुक्ति के लिए मन पर विजय पाना, जो कहा ना कि आत्मा के शत्रु ना बल्कि आप आत्मा के मित्र बने। मित्र तभी होंगे जब मन की जो व्याकुलता है, मन का जो विचलन है, मन की जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर आप रोक लगा पाए, निरोध कर पाए। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, क्योंकि मन हमेशा वृत्तियों के पीछे भागता है और वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं करेंगे तब तक योग नहीं होगा। तो एक प्रकार से यहां पर हम देखें तो वही महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र का परिभाषा है वही किसी रूप में परिभाषित हो रहा है कि मन को जीत करके आप अपने आत्मा के मित्र हो सकते हैं। आत्मा तो आप में है ही, ब्रह्म स्वरूप आप है ही, शिवोहम शिवोहम आदिगुरु शंकराचार्य कही रहे हैं कि न हमारा जन्म है न हमारी मृत्यु है, न हमारा बंधन है न हमारा मोक्ष है। तो ऐसे में कब ये ऐसा है? जब हम आत्मोन्मुखी हों या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हों, और ये तभी होगा जब हम मन पर विजय प्राप्त करेंगे। बिना जीता हुआ मन आत्मा का शत्रु बन जाता है और मनुष्य के अंतःकरण की व्याकुलता का कारण बनता है,
1: कारण बन जाता है।
0: जी।
1: अच्छा, इसमें बताया कि जो काल है वो प्राणियों को अज्ञात स्थान पर ले जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझाइए, क्या आशय है इस पंक्ति का?
0: हाँ, इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो काल है जिसमें व्यक्ति सारे समा रहे हैं, जैसे कहा हम लोगों ने हमने पिछली बार शायद इस बात पर बात की थी कि काल का ग्रास ये जगत है।
1: हाँ।
0: तो यहाँ जो भी प्राणी जन्म लेता है वो इस जगत में ही विलीन हो जाता है। तेरा तुझको अर्पण, पंच महाभूतों से निर्मित ये शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है और उसको जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये कहते हैं ना कि आज देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम काल के गति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भगवान ने यहां साफ कहा कि ये अज्ञात जगह पर व्यक्ति को ले जाता है। ये जो प्राणी समुदाय है, प्राणियों की जो परंपरा है, जगत में जो जगत में प्राणी दिखते हैं, प्राणवान दिखाई दे रहा है, काल उसे निरंतर अपना ग्रास बना रहा है और कहां बना रहा है ये किसी को पता नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं दूंगा, श्रीमद् भागवत कथा में जब नारायण ने हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्यास का वध कर दिया तो उससे वो तपस्या करने लगा कि मैं अब नारायण को मारूंगा, नारायण को मिटाऊंगा, यानी काल को नारायण भी कहा गया। भगवान ने कहा गणना में मैं काल हूं, विभूत योग में देखें तो ये सब एक कोड में इसको डिकोड करना बहुत आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं ऐसा करेंगे कि हम नारायण को ही मारेंगे, यानी काल की व्यवस्था को या काल को हम जीत लेंगे, ऐसी बात उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। और वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और वर मांगते हैं कि मेरा कहीं भी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी सृष्टि में तो मृत्यु का विधान है, हर प्राणी जन्म लेता है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि कैसे वो अज्ञात काल में जा रहा है, तो उसको जाना ही पड़ता है, यहां तो मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो भी चालाक था, फिर उसने क्या किया कि आप देखिए उसके वर मांगने की विधा कैसे बुद्धि का कौशल प्रयोग किया उसने कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, धरती पर नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, वानर से नहीं मरूं, पशु पक्षियों से नहीं मरूं। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसने मृत्यु को जीत लिया, इसका अर्थ ये हुआ कि उसने पूरी बुद्धि जो है काल के बाहर जाने का तो प्रयास किया, लेकिन अंततः काल में एक नया स्वरूप ले लिया, नरसिंहावतार, जो कहते हैं जो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है, और वो जो गोधूल के बेला में उन्होंने, तो ये कथानक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि राम जी इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से काल सारे प्राणियों को अज्ञात स्थान में ले जाता है, दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। भाई अज्ञात का मतलब हुआ कि जहां उसकी दिशाओं का भी पता ना चले, और यहां आदमी काल को जानने के लिए कितना उत्सुक रहता है कि अपने भविष्य काल को जान ले, भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं काल का ये भी प्रभाव है, ये भी काल का ही प्रभाव है, माया का प्रभाव है। जबकि वो हम गाते हैं ना भजन में कि तेरी माया का ना जाने कोई पार, वो माया रानी तू ही जाने। तो ये जो काल की जो पत्नी कालरात्रि है वो वही जानती है कि क्या है, उसको कौन जान सकता है। तो ऐसे में अज्ञात स्थान में ले जाता है जहां दिशाएं भी नहीं जान पाती दिखाई देती हैं ताकि आप जान पाएं।
1: अच्छा, भगवान श्री राम तो स्वयं परमात्मा हैं
0: जी,
1: परमात्मा के संबंध में क्या कह रहे हैं वो योग वासिष्ठ में?
0: परमात्मा के संबंध में वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है और उसकी व्याख्या शास्त्रों में जो की गई है राम जी वैसे ही कह रहे हैं जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक उस परम निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा ही है। यानी कहते हैं कि ये जो माया का जो उत्पादक है वो माया से अलग है, वो माया की तरह दिख नहीं सकता
1: जी।
0: और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम परमात्मा की भी मूर्ति बनाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी आदत है, हम उसी रूप में देखना चाहते हैं। हम अभी कहें किसी निराकार का चिंतन करें आप, तो निराकार का चिंतन ही नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चिंतन से मुक्त हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्विचार होना, क्योंकि चिंतन तो विचार में होगा, दृश्य में होगा, सुन करके होगा, कह करके होगा। और वो कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का विचार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा, इसके लिए तो उपनिषदों में काफी गहरी चर्चा है जिसमें अन्वय और व्यतिरेक ये दो साधन अपनाए गए हैं कि ये सब कुछ उसी में है और ये कुछ भी वो नहीं है। इस तरीके के मतलब ऋषियों ने प्रयास किया है, इशारे किए हैं ताकि आप, क्योंकि वो कहा तो जा नहीं सकता, सुना जा नहीं सकता, लेकिन जो जिज्ञासु है वो कहने सुनने के ही आकांक्षा से आप तक आया है। तो वो एक व्यवस्था है, इशारा है, लेकिन वो इशारा है। तो राम जी वही कहते हैं कि वो वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है जो माया का उत्पादक है, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, दृश्य आंख से देखा नहीं जा सकता। इस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं।
1: अच्छा, इस संसार में सुखी कौन है?
0: इस संसार में सुखी कौन है, इन्होंने कहा महात्मा की शीतल बुद्धि, ऐसे महात्माओं की शीतल बुद्धि जिनकी बुद्धि अब उनके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाती। जैसे हमने कहा ना कि जो बिना जीता हुआ मन, ये आपकी बुद्धि की शीतलता समाप्त कर देगा
1: जी।
0: और जीता हुआ जो मन है वो बुद्धि को शीतल बनाएगा, बुद्धि में कभी व्यग्रता नहीं है, उष्णता नहीं आएगी।
1: पूरा रोग जो है वो व्याकुलता का है।
0: व्याकुलता का है। वो कहते हैं कि जो दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, शीतल बुद्धि ऐसी है
1: जी।
0: और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी हो सकता है, और कोई सुखी नहीं हो सकता है जगत में। यानी आत्म शांति को प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वो शीतल बुद्धि है। इसीलिए आपने सुना होगा एक मंत्र जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शीतल बुद्धि में उपजा हुआ एक प्रार्थना है। और जो क्या कहते हैं, जो ऐसी बुद्धि जिस पर मन शासन करता है वो कैसी होगी? वो ये कहेगी कि जो कुछ भी हो संसार में मेरे लिए ही, वो अपने को केंद्र में रखकर।
1: जी, तो सर्व की कामना, सर्व का कल्याण हो ही नहीं सकता ऐसी बुद्धि में। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी कि जो संसार, हमने बुद्धि की बात की
0: जी,
1: तो जो संसारी मनुष्य है उसकी बुद्धि कैसी होती है?
0: राम जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है।
1: अच्छा।
0: उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते रहते हैं और कहते हैं, देखिए वो बुद्धि क्या कहती है, कहते हैं कि आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करना चाहिए, वे लोग हमारे भाई बंधु हैं, यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है, इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ये संसार की गति है। और देखें तो संसारी व्यक्ति निश्चित ऐसी ही बुद्धि के साथ संसार को देखता, विचार करता और जीता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए विवेक के साथ जो बुद्धि विकसित होगी, गोस्वामी जी कहते हैं अबलो न सानी अबना न सही हो। तो हम ऐसा नहीं है कि संसार के व्यवहार में हम व्यवहारिक जगत का तिरस्कार कर रहे हैं, हम व्यवहारिक जगत को जीते हुए पारमार्थिक सत्य का भी चिंतन करें कि हमारा स्वरूप क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, आचार्य शंकर जो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत झूठ नहीं है। एक बार क्या होता, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जगत को नकारने की बात की जा रही है। जगत को नकारने की बात नहीं की जा रही है, जगत के सत्य के साथ व्यवहार करने के लिए व्यक्ति को जागृत किया जा रहा है।
1: हाँ, वही मैं कहने ही जा रही थी कि काल के प्रभाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन की अनित्यता की बात कर रहे हैं, फिर जीवन में लय होने की, रमने की बात भी होती है, उसे छोड़ना भी नहीं है। तो दृष्टि क्या हो संसार में, हमारी दृष्टि क्या हो
0: संसार में, दृष्टि हमारी इस संसार में रहते हुए कैसे हम अंतःकरण को व्याकुल किए बिना और अपने मन को वश में रखते हुए शांति और संतुष्टि के साथ जीवन जिएं। यही बात आगे चल करके जब राम जी के वैराग्य की स्थिति को जानने के बाद गुरु लोग उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार करता है, वो किसी कर्म का त्याग नहीं करता। और ये देखिए, राम जी की कहानी सभी को मालूम है, लेकिन राम जी के चित्त की ये दशा आम लोगों को नहीं पता है। और अगर राम जी के चित्त की दशा शांत न हुई होती तो ऐसे में राम जी का जो व्यवहार होता वो सांसारिक लोगों की तरह हो सकता था।
1: जी।
0: तो इस नाते सबसे पहले उन्हें तीर्थ यात्रा करने का जो भाव अपने चित्त में उत्पन्न हुआ और पिताजी से उसके लिए उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं, आप तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। और तीर्थ भ्रमण करके राम जी इस जगत का व्यवहार देखना चाहते थे। और व्यवहार देखने के बाद जो उन्हें दिखा कि यहाँ कर्म तो सभी कर रहे हैं सुख के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कर्म व्यक्ति के सुख का कारण नहीं हो सकता। तो अपनी उस अवस्था की बुद्धि से उन्होंने कर्म का ही त्याग किया। तो ऐसे में जब सभा में बुलाया गया है तो गुरु के बीच वो अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि ये मुझे दिखाई दे रहा है विभिन्न अवस्थाओं में ऐसी ऐसी स्थिति, हम कैसे इस शरीर से या इस संसार के विषयों से प्रेम कर सकें।
1: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही। मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो बहुत आनंदित हुए होंगे आज। बहुत ही अच्छी चर्चा, सार्थक चर्चा। अगले अंक की प्रतीक्षा मुझे भी है। तो आपका आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको कि आप आए और इतनी सुंदर व्याख्या आपने की।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की काल के प्रभाव और जीवन की अनित्यता पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी भर नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक आंदोलन और एक युग की कहानी बन जाता है। ऐसे लोग अपने समय से आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता, चिंतक, लेखक, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र की सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र में जन भागीदारी की शक्ति को पहचाना और एक ऐसा नागरिक जिसने अपने पूरे जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न वराह गिरी वेंकट गिरी अर्थात वीवी गिरी को।
2: भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक महान नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम उन व्यक्तित्वों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग चरणों में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं और हर भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो वीवी गिरी का नाम निश्चित रूप से उनमें प्रमुखता से लिया जाएगा। वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, वे केवल मजदूरों के नेता भी नहीं थे, बल्कि उनका जीवन इन सभी भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम था। उनका जीवन हमें ये बताता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो समाज की जड़ों से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम वीवी गिरी को याद करते हैं तो केवल भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर साधारण लोगों की असाधारण लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बनाया। लेकिन किसी भी महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वीवी गिरी की यात्रा भी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी।
1: 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के वर्तमान गंजाम जिले के बराहमपुर नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश राजनीतिक रूप से गुलाम था और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा। उस बालक का नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पुंतलु अपने समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता की नहीं थी, वो सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे। समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखना उनके स्वभाव का हिस्सा था। घर का वातावरण बौद्धिक भी था और सामाजिक चेतना से भी भरा हुआ था। यही वातावरण आगे चलकर युवागिरी के व्यक्तित्व की नींव भी बना। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। वीवी गिरी के जीवन में भी ये बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। उनकी माता सुब्रदम्मा अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और संस्कारवान महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि सेवा, विनम्रता और अनुशासन का मूल्य भी समझाया। बचपन से ही गिरी ने देखा कि सम्मान केवल पद या संपत्ति से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है चरित्र से, सम्मान मिलता है दूसरों के लिए किए गए कार्यों से। इसी कारण बाद के वर्षों में जब वे बड़े नेता बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने और राष्ट्रपति बने, तब भी उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी दिखाई देती रही। उनके निकट रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। ये गुण उन्हें उनके परिवार और प्रारंभिक संस्कारों से मिला था।
2: प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें इतिहास पढ़ना पसंद था, राजनीतिक घटनाओं को समझना पसंद था, समाज में हो रहे परिवर्तनों को देखना और उनके कारणों पर विचार करना पसंद था। वे उन युवाओं में से एक थे जो केवल नौकरी या करियर के बारे में नहीं सोचते थे। वे ये भी समझना चाहते थे कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है और आम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनकी सोच सामान्य विद्यार्थियों से अलग दिखाई देने लगी थी। उनके भीतर एक जागरूक नागरिक आकार ले रहा था।
1: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। आज के समय में विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बड़ी बात थी। यात्रा लंबी होती थी, संपर्क सीमित होते थे और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना केवल पढ़ाई का अवसर नहीं बल्कि एक नई दुनिया को देखने का अवसर भी होता था। युवा वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे। शायद उन्हें स्वयं भी उस समय ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये यात्रा उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, क्योंकि आयरलैंड में उन्हें केवल डिग्री नहीं मिली, उन्हें एक दृष्टि मिली, उन्हें एक विचार मिला, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिला जिसने आगे चलकर उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया।
2: जब वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे तब वहां का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उग्र और सक्रिय था। आयरलैंड स्वयं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में राष्ट्रीय चेतना की लहरें थी, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, राजनीतिक बहसें चल रही थी, युवा सड़कों पर थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। युवा गिरी ने पहली बार इतने व्यापक जन आंदोलन को निकटता से देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो साधारण लोग भी इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा था, लेकिन आयरलैंड में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीते हुए देखा है।
1: आयरलैंड में बिताए गए वर्षों ने उनके भीतर केवल राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं जगाई बल्कि सामाजिक न्याय की समझ भी विकसित की। यहीं उन्होंने श्रमिक आंदोलनों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं। वो केवल वेतन की बात नहीं करते थे, वो सम्मान की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, समान अवसरों की बात करते थे। इन आंदोलनों ने युवा गिरी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समाज की प्रगति केवल बड़े नेताओं या बड़े उद्योगों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में होती है। यही वो विचार था जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना।
2: आयरलैंड के अनुभवों ने उनके भीतर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन भागीदारी के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। वे समझ चुके थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब वे भारत में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उनका दृष्टिकोण केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था। वे संगठन, संवाद और जनशक्ति पर भी उतना ही बल देते थे। दरअसल आयरलैंड में ही उनके भीतर वह नेता जन्म ले चुका था जिसे भारत आने वाले दशकों में जानने वाला था।
1: लेकिन आयरलैंड में उनका समय केवल अध्ययन और अवलोकन तक सीमित नहीं रहा। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और राजनीतिक रुचियों ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रश्नों पर खुलकर विचार रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश अधिकारियों की नजर उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अंततः उन्हें आयरलैंड छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन जब वे वापस लौटे तब वो केवल कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे जागरूक भारतीय बन चुके थे जिसके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प आकार ले चुका था।
2: भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनके सामने एक सफल पेशेवर जीवन का रास्ता खुला हुआ था। वे चाहते तो एक प्रतिष्ठित वकील बन सकते थे, सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि उस समय भारत का वातावरण तेजी से बदल रहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे समय में वीवी गिरी स्वयं को उस संघर्ष से अलग नहीं रख सके।
1: महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, जन भागीदारी और सामाजिक न्याय, ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, ये जीवन जीने की एक पद्धति थे। वीवी गिरी ने इन विचारों को गहराई से जाना और उनसे प्रभावित भी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की, सभाओं में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे।
2: स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं था। उस समय इसका अर्थ था निगरानी, गिरफ्तारी, जेल, आर्थिक असुरक्षा और अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयां। लेकिन वीवी गिरी उन लोगों में से नहीं थे जो कठिनाइयों से पीछे हट जाएं। उन्होंने जेल यात्राएं की, संघर्षों का सामना किया और हर चुनौती को राष्ट्र सेवा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। और शायद यही सोच आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी से श्रमिक नेता बनाने वाली थी।
1: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। यदि देश के श्रमिक, किसान और आम नागरिक सम्मानजनक जीवन न जी सके तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में शामिल कर दिया, जिसने लाखों मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की भूमिका तैयार की।
2: स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान वीवी गिरी ने भारत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने केवल राजनीतिक गुलामी को नहीं देखा बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता को भी देखा जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं था। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक, खदानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग, ये सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे थे लेकिन उनकी अपनी स्थिति अक्सर संघर्षपूर्ण रहती थी। वीवी गिरी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। यही सोच उन्हें श्रमिक आंदोलन की ओर लेकर चली गई और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
1: दोस्तों, आज जब हम वीवी गिरी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें भारत के चौथे राष्ट्रपति की याद आती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से बहुत पहले वो भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते थे। दरअसल मजदूरों और कर्मचारियों के बीच उनका जो विश्वास था वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी थी। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो केवल मंच से भाषण देते हों, वो सीधे लोगों के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और फिर उन समस्याओं को व्यवस्था के सामने पूरी मजबूती से रखते थे। शायद यही कारण भी था कि श्रमिक उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते थे।
2: 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का भारत तेजी से बदल रहा था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, नई फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थी, लेकिन इन विकास कार्यों के पीछे काम करने वाले लाखों श्रमिकों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। कार्य के घंटे लंबे थे, सुरक्षा मानकों की कमी थी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नगण्य थी और सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वीवी गिरी ने यह समझा कि यदि इन लोगों को संगठित नहीं किया गया तो उनकी समस्याएं कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। यहीं से उन्होंने श्रमिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया।
1: उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों के बीच रहा। रेलवे उस समय केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो भारत की आर्थिक धड़कन भी थी, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा माध्यम थी, और लाखों कर्मचारी इस व्यवस्था को चलाने में दिन रात जुटे रहते थे। लेकिन इन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। वीवी गिरी ने रेलवे कर्मचारियों के बीच जाकर उनके जीवन को समझा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी ये कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं को केवल सुना नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धीरे धीरे वो रेलवे कर्मचारियों के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हो गए।
2: रेलवे यूनियन के साथ काम करते हुए वीवी गिरी ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। उन्होंने देखा कि श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, वे सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं, वे भागीदारी से भी जुड़ी हुई हैं, वे प्रश्न से भी जुड़ी हुई हैं कि किसी संस्था में निर्णय लेते समय उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो वास्तव में उस संस्था को चलाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे गरिमा, भागीदारी और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया। यह उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील सोच थी।
1: और फिर क्या, धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो केवल संघर्ष की भाषा नहीं बोलते थे, वो संवाद की भाषा भी जानते थे। वो केवल विरोध की बात नहीं करते थे, वो समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्थायी टकराव किसी के भी हित में नहीं है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और संवाद बनाए रखें तो उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं और श्रमिकों का जीवन भी बेहतर हो सकता है।
2: यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में पूरे देश ने गिरी अप्रोच के नाम से जाना। आज भी औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अवधारणा का उल्लेख करते हैं। गिरी अप्रोच का मूल आधार था संवाद, विश्वास और सहयोग। वीवी गिरी का मानना था कि उद्योग, श्रमिक और सरकार ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनमें सहयोग होगा तो विकास होगा, यदि इनमें अविश्वास होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी माना गया।
1: वो अक्सर कहा करते थे कि हड़ताल किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकती, हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते के प्रयास होने चाहिए, मध्यस्थता के प्रयास होने चाहिए, और यदि उसके बाद भी न्याय ना मिले तभी संघर्ष का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। ये दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में स्थापित करता था। श्रमिक उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे, और उद्योग जगत भी उनका सम्मान करता था क्योंकि वो संवाद और स्थिरता के महत्व को समझते थे।
2: यही कारण है कि वीवी गिरी को केवल एक ट्रेड यूनियन नेता कहना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। विश्रम संबंधों के एक गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज जब हम औद्योगिक शांति, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक भागीदारी जैसे विषयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी केवल आंदोलनकारी नेता ही नहीं थे बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त किया। उनकी पुस्तक केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री और जॉब्स फॉर आवर मिलियंस, ये पुस्तकों में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार रखा। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि वो केवल आंदोलन के नेता नहीं थे, वो नीति और सिद्धांत दोनों को समझने वाले विचारक भी थे।
2: 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। देश को नई संस्थाएं बनानी थी, नई नीतियां बनानी थी, और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को समझता हो। वीवी गिरी उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई।
1: दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सीलोन अर्थात वर्तमान श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ये भारत के विश्वास का प्रतीक थी। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था। वीवी गिरी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी व्यवहार कुशलता, संतुलित दृष्टिकोण और संवाद की क्षमता यहाँ भी बहुत काम आई।
2: उच्चायुक्त के रूप में सफलता के बाद उन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी मानो उनके पूरे जीवन अनुभव का स्वाभाविक विस्तार थी। वर्षों तक श्रमिकों के बीच काम करने वाला व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक नीतियों को सुधार सकता था। उन्होंने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे।
1: इसके बाद वीवी गिरी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में उनकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण थी कि वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम किया। वे विवादों से दूर रहते थे। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करती रहें। उनकी निष्पक्षता और संतुलन की व्यापक सराहना की गई।
2: इन सभी भूमिकाओं के दौरान एक बात कभी नहीं बदली, चाहे वे श्रमिक नेता रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, वे हमेशा स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही कारण था कि सार्वजनिक जीवन में उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई।
1: और फिर आया वर्ष 1967। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये केवल एक संवैधानिक पद नहीं था, ये उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, उनके अनुभव, उनकी निष्ठा और उनके योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। लेकिन इतिहास ने उनके लिए अभी एक और बड़ी भूमिका तय कर रखी थी, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में स्थान दिलाने वाली थी।
2: 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वीवी गिरी भारतीय सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च पदों में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा भी शेष थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाने वाली थी, और ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही नाटकीय भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा दशकों बाद भी की जाती है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐसी ही एक घटना है। यह केवल राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा थी, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे वीवी गिरी।
1: 3 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भी वीवी गिरी की पहचान नहीं बदली। वो पहले ही की तरह सरल रहे, पहले की तरह सहज और पहले की तरह आम लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सम्मान से अधिक जिम्मेदारी का पद था। वो मानते थे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया।
2: उनके कार्यकाल के दौरान भारत अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बना। देश आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, नई नीतियां बन रही थी, नए कार्यक्रम शुरू हो रहे थे और लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर विकसित हो रही थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका संतुलन, धैर्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता की रही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति पद दलगत राजनीति से ऊपर बना रहे।
1: लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे श्रमिकों और आम लोगों के मुद्दे से हट गए होंगे या उन्हें भूल गए होंगे, तो ये उनकी प्रकृति को समझने में शायद भूल होगी। उनकी जड़ें हमेशा समाज के उसी वर्ग से जुड़ी रहीं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके मेहनतकश लोगों में होती है। मशीनें, इमारतें और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें जीवंत बनाने वाला श्रम ही होता है। ये विचार उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनके साथ बना रहा। 1974 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका सम्मान और प्रभाव बना रहा। लोग उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन के हर चरण में समाज के कमजोर और मेहनतकश वर्गों की आवाज को महत्व दिया। उनका सार्वजनिक जीवन किसी एक पद की उपलब्धि तक सीमित नहीं था, वो एक सतत यात्रा थी और वो थी जनसेवा की यात्रा।
2: उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल इसलिए नहीं था कि वे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, यह सम्मान उनके पूरे जीवन की साधना का सम्मान था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान, एक श्रमिक नेता के रूप में उनका संघर्ष, एक विचारक के रूप में उनकी दृष्टि, एक प्रशासक के रूप में उनकी निष्ठा और एक राष्ट्र नायक के रूप में उनकी सेवाएं, इन सभी का समग्र सम्मान था भारत रत्न।
1: लेकिन शायद वीवी गिरी स्वयं इस सम्मान को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास था। उन लाखों श्रमिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना, उन नागरिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देखा, और उस राष्ट्र का विश्वास जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी।
2: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी उन चुनिंदा भारतीय राष्ट्रपतियों में से हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान राजनीतिक नहीं बल्कि श्रमिक आंदोलन से थी। विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकला कोई नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा हो। यही बात उनके जीवन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसेवा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
1: आज जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके अनेक विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। श्रमिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, संवाद आधारित औद्योगिक संबंधों की बात हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात हो, हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें मानव गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों शामिल हों।
2: युवा पीढ़ी के लिए भी वीवी गिरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके मूल्यों से होती है।
1: 24 जून 1980 को वीवी गिरी इस संसार से विदा हो गए। उनके निधन के साथ भारतीय सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। देश ने एक अनुभवी राजनेता को खोया, एक स्वतंत्रता सेनानी को खोया, एक श्रमिक नेता को खोया, लेकिन उनके विचार, उनके मूल्य और उनका योगदान आज भी हमारे साथ हैं। समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं रहते। वो राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वीवी गिरी ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
2: आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें केवल एक पूर्व राष्ट्रपति का स्मरण नहीं करना चाहिए, हमें उस युवा छात्र को भी याद करना चाहिए जिसने आयरलैंड की धरती पर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का महत्व समझा। हमें उस स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उस श्रमिक नेता को भी याद करना चाहिए जिसने मजदूरों की आवाज को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। और हमें उस राष्ट्र नायक को भी याद करना चाहिए जिसने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
1: वीवी गिरी आज भी जीवित हैं। हर उस श्रमिक के संघर्ष में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, हर उस युवा के सपनों में जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हर उस नागरिक की चेतना में जो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति पर विश्वास करता है, और हर उस भारतीय के हृदय में जो ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीवी गिरी का जीवन संघर्ष की कहानी है, सेवा की कहानी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये उस विश्वास की कहानी है कि सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के इतिहास को बदल सकते हैं।
2: तो भारत विभूति के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपने जाना भारत के चौथे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के बारे में। भारत विभूति कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन पुष्पक श्रीवास्तव और वाचन मैं दीपेश
1: और मैं मनीषा।
2: इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
3: 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को अगर भील विद्रोह के नाम कर दिया जाए तो उत्तरार्ध आ गिरता है भील महानायक टंट्या की झोली में। टंट्या जिसके बगैर निमाड़ का इतिहास अधूरा है, टंट्या जिसके बगैर भीलों का अस्तित्व अधूरा है। कहते हैं कि अंग्रेजों से टंट्या की भिड़ंत मात्र 13 साल की उम्र में हुई थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मांडव का किला देखने गया। उन दिनों अंग्रेजी पुलिस का इतना आतंक था कि निगरानी चौकी पर थानेदार का टोप टांग दिया जाता और लोग उसी को सलाम करते। टंट्या ने न सिर्फ टोप को सलाम करने से इनकार किया बल्कि थानेदार पर तीर कमान तान कर टोप को सिर पर लगाने के लिए मजबूर भी किया। जबर टंट्या पर जबरदस्ती नामुमकिन थी। निर्भीकता, साहस और स्वाभिमान का दूसरा नाम था टंट्या।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: इस उल्टी से यहाँ रख देता हूँ।
1: अरे अरे हम लोग पहुँच गए हैं भाई। दिव्या, मनोज, नीचे उतरो बस से।
2: पहले मैं उतरूंगा।
3: अरे अरे अरे अरे, आराम से बेटा, आराम से, चोट ना लगे। सुनिए जी, बारिश रुकने तक यही कहीं पास में रुक जाए तो अच्छा रहेगा।
0: अरे वो सामने मुझे एक चाय की दुकान नजर आ रही है, वहीं रुकते हैं, बच्चे कुछ खा भी लेंगे।
3: हाँ, ये ठीक रहेगा।
2: माँ देखो ना, दिव्या ने मुझे पहले उतरने नहीं दिया।
3: अरे अरे अरे बेटा, बहन से झगड़ा नहीं करते। देख, चलो चलो आओ आओ।
0: अरे चलो मत झगड़ा, चलो चलो चलो शाबाश, चलो आओ।
4: अरे चलो ना बेटा। आइए आइए आइए, गजबीए काका की चाय की दुकान पर आपका स्वागत है। बैठो बच्चों, बैठो बैठो बैठो
0: बैठो बैठो बैठो।
4: शाबाश।
2: क्यों दिव्या, हाँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उतरने दिया?
5: देखो भैया, तुमने फिर झगड़ा शुरू किया। झगड़ा करना बुरी बात है।
2: तुमने फिर भाषण शुरू कर दिया।
5: अरे मैं तो शांति की बात कर रही थी।
0: तुम लोग फिर शुरू हो गए, झगड़ा मत करो।
4: बच्चे हैं बच्चे। बच्चों ये लो तुम्हारे लिए बढ़िया बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, और तुम्हारे माँ पिताजी के लिए चाय बनाता हूँ, ठीक है?
2: ये बिस्कुट खाकर ना फिर शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देगी।
5: क्यों नहीं, मैं तो बड़ी होकर भी पूरी दुनिया को शांति का संदेश दूंगी। हाँ।
2: एक लड़की की बात सुनेगा कौन?
4: ऐसे मत कहो बेटे, देखो हमारे देश की महिलाओं ने बड़े बड़े काम किए हैं।
5: हाँ, सुना?
4: देश को स्वतंत्र कराने जैसे बड़े काम में भी उन्होंने बराबर की भागीदारी की है, और पूरे विश्व के सामने भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी भी निभाई है।
3: लगता है काका आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं।
6: अरे भाई, गजबिया काका से ही नई पीढ़ी के लोगों को देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है।
3: फिर तो हमें भी किसी क्रांतिकारी के बारे में बताइए ना।
0: हाँ काका, बताइए ना, ताकि हमारे बच्चों को भी स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों को जानने का अवसर मिले।
4: अच्छा भाई, बताता हूँ। इस बिटिया की बात सुनकर मुझे सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित का ध्यान आ रहा है। एक ऐसी भारतीय महिला जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद तक पहुंची। उस समय हमारा भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रत्येक देशभक्त अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र कराने के संग्राम में जुटा हुआ था। हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। वो अत्याचार जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था।

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: तुम देश के साथ गद्दारी किया है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी।
0: ये देश हमारा है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। व्यापारी और मेहमान बनकर आए और हमारे हमारे देश पर कब्जा कर लिया। वंदे वंदे।
1: तुम अभी नौजवान हो, हम तुम्हें माफ कर सकता है। तुम अपने साथियों का पता बता दो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगा।
0: जीवन भारत माता की पूजा वेदी पर अर्पण करने के लिए होता है, देश के दुश्मनों के पास गिरवी रखने के लिए नहीं।
1: इस क्रांतिकारी की आवाज को हमेशा के लिए दबा दो।
0: वंदे मातरम।

0: जब देश में ऐसा वातावरण था तभी उस कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वरूप कुमारी। दिन था 18 अगस्त सन 1900।
1: मेरी प्यारी सी बहन, इधर देख।
2: मेरी उंगली क्यों जवाहर? लगता है बहन के जन्म से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हुई है।
1: खुशी क्यों नहीं होगी, मुझे भैया कहने वाली एक प्यारी सी बहन जो आ गई है। ये देखो। इधर देख।
0: ये वही जवाहर थे जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वो 11 वर्ष के थे जब उन्हें छोटी प्यारी बहन स्वरूप कुमारी का उपहार मिला। माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी और पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, जो एक नामी वकील थे। वो अपनी माता की ही तरह सुंदर थी। जन्म पर उन्हें नाम दिया था ट्रम्पेट, याने तुरही भोपू। शिक्षा योग्य होने पर स्वरूप कुमारी के लिए घर पर ही शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनके लिए योग्य शिक्षक भिजवाया।
1: गुरु जी, रामायण को पढ़कर हम क्या जानेंगे?
3: बिटिया स्वरूप, रामायण हमारी सच्ची भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है।
1: हमारी संस्कृति?
3: हाँ बिटिया, हमारी संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है। बेटा, इससे हमें ये पता चलता है कि समाज कैसे चलना चाहिए। एक व्यक्ति का अपने परिवार, समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश में सदा से ही प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया है। यही तो प्रजातंत्र है।
1: गुरु जी, प्रजातंत्र क्या होता है?
3: देखो बिटिया, जहां देश की सरकार देश की प्रजा की भलाई के लिए काम करती है, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है, वही प्रजातंत्र होता है।
1: गुरु जी, मैंने उस दिन सुना बाबा कह रहे थे कि अंग्रेज सरकार हम भारतवासियों पर बहुत अत्याचार कर रही है, क्रांतिकारियों को पकड़कर कठोर यातनाएं दे रही है।
3: हाँ बिटिया, वो बाहर से आए हैं और हमारे देश को अधीन कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सभी सच्चे देशभक्त हर तरह की यातनाएं सहकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम कर रहे हैं। देश में फिर से राम राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं बिटिया।
1: मैं भी राम राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करूंगी गुरुजी।
3: अवश्य करना बिटिया, अवश्य करना। राम राज्य में महिलाओं को बराबर का स्थान दिया जाता है।
1: जी गुरुजी।

0: रामायण के प्रशिक्षण के साथ ही घर के देश प्रेमी वातावरण ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया। वो स्वयं में एक मेधावी छात्रा थी। सन 1916 में उन्हें एक निबंध लिखने पर पुरस्कार मिला।
1: अच्छा।
0: और उसी वर्ष उनके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना हुई।
1: वो क्या?
0: उन्हें लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला।

0: बापू।
1: हाँ स्वरूप बिटिया।
0: आपसे एक बात पूछूं बापू?
1: अवश्य पूछो बिटिया।
0: इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने सिर झुकाते हैं, आप हर तरह की सुविधा ले सकते हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं लेते। बापू, इस तरह नंगे शरीर क्यों रहते हैं?
1: इसका भी एक कारण है बिटिया। जब मैं भारत आया तो मेरे गुरुजी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने मुझे भारत भ्रमण करने के लिए कहा, जिससे मैं भारत की जनता की दुर्दशा को सही तरह जान सकूं। और जब मैंने भारत की निर्धन और लगभग निर्वस्त्र जनता को देखा तो अपने कपड़े बोझ और शर्म से भरपूर लगने लगे। और बस तभी से मैंने खादी के एक टुकड़े से अपने शरीर को ढांप लिया।
0: क्या हमारे देश की जनता की हालत बहुत खराब है बापू?
1: हाँ बिटिया, उनकी दशा को जानने के लिए तुम्हें उनके निकट जाना होगा।
0: मैं अवश्य जाऊंगी बापू, मैं भी देश के लिए काम करूंगी।
1: अवश्य करो बिटिया, अवश्य करो। देश के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पहले देश को स्वतंत्र कराना, फिर राम राज्य की स्थापना करना।
0: मैं राम राज्य के बारे में जानती हूँ बापू।
1: अच्छा, मोतीलाल जी, आपकी बिटिया बहुत होनहार है। इसे साबरमती आश्रम भेज दीजिए, वहाँ ये भी देश सेवा में अपना योगदान देगी।
2: तो इस तरह स्वरूप कुमारी को साबरमती आश्रम भेज दिया गया और वहीं उनकी देश सेवा की यात्रा आरंभ हुई।
3: बहनों, बाबूजी ने आह्वान किया है कि विदेशी वस्त्रों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अंग्रेज हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर अपनी वस्तुएं हमारे देश में डाल रहे हैं। हम उनकी वस्तुएं खरीद कर अपने देश का धन बाहर नहीं जाने देंगे। हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे,
4: जलाएंगे, होली जलाएंगे।
3: विदेशी माल और शराब के अड्डों पर धरना देंगे,
4: बिल्कुल देंगे।
3: हम उन अत्याचारियों की योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे,
4: कभी सफल नहीं होने देंगे।
3: तो चलो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का समय आ गया है।
4: हम अपने देश के प्रति नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे।

0: इस तरह केवल 16 वर्ष की उम्र में ही स्वरूप कुमारी ने देश के स्वाधीनता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान आरंभ कर दिया। हाँ, इन्हीं आंदोलनों के दिनों में उनकी भेंट रणजीत पंडित नामक एक गुजराती युवक से हुई। वो कोलकाता में वकालत करते थे और उन्होंने कश्मीर के अमर कवि कलहण की राज तरंगिनी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। स्वरूप और रणजीत ने विवाह सूत्र में बंधने का निर्णय ले लिया। 1921 में महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से ये काम संपन्न हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार विवाह के बाद स्वरूप कुमारी का नाम बदलकर विजय लक्ष्मी पंडित रख दिया गया।
1: अच्छा।
0: परंतु उनकी राह नहीं बदली। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान पहले की भांति बना रहा।
2: देशवासियों, ब्रिटिश साम्राज्य ने राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत की यात्रा पर भेजा है। वो हमारी किसी भी मांग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम भारतीयों को अपने देश का शासन सौंपने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनकी मंशा गलत है। बापूजी के आदेश पर पूरे देश में उनकी यात्रा का विरोध किया जाएगा। हमें यहाँ राजकोट में ये विरोध करने का आदेश मिला है। हम काले झंडों के साथ यहाँ एक जुलूस निकालेंगे और यदि अंग्रेज सरकार ने चाहा तो गिरफ्तारियाँ भी देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्वरूप कुमारी एक संपूर्ण महिला थी। सक्रिय देश सेवा के साथ ही उनका पारिवारिक जीवन भी चलता रहा। सन 1923 में उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, परंतु कुछ ही महीनों बाद वो चल बसी। आगे चलकर उन्हें दो और पुत्रियों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1926 में वो अपने पति के साथ यूरोप की यात्रा पर गईं। वहां से लौटने के बाद उनके पति श्री रणजीत ने अपनी वकालत इलाहाबाद में ही आरंभ कर दी। सन 1929 में लाहौर में अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसके साथ ही स्वरूप कुमारी ने, जो अब विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी जाती थी, स्वाधीनता संग्राम में और अधिक समय देना आरंभ कर दिया।
3: अंग्रेजों के अत्याचार तो लगातार बढ़ते ही जा रहे।
4: हाँ भाई, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले किसी नेता को नहीं छोड़ा, सभी को जेलों में ठूंस दिया है।
3: विजय लक्ष्मी जी के पति रणजीत जी को भी तो नैनी जेल में रखा गया है।
4: उससे भी बुरी बात ये है कि ये अंग्रेज महिलाओं के प्रति संवेदना की भावना नहीं रखते। विजय लक्ष्मी जी को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूरे एक साल के कठोर कारावास की सजा दी है।
3: अरे भैया, जब किसी चीज की अति होती है तो उसे समाप्त होना ही होता है। तुम देखना, देशभक्त अब अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर ही मानेंगे।
4: हाँ।
0: जेल से बाहर आने के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने अपने पति के साथ नगर पालिका बोर्ड के चुनाव में विजय प्राप्त की। फिर स्वायत्तता विधेयक पास हुआ, जिसमें भारतीयों को शासन में भागीदारी देने की बात कही गई।
1: अच्छा?
0: बेटा, जो आज उत्तर प्रदेश है ना,
1: हाँ?
0: तब ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा?
0: हाँ, वहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने और सुश्री विजय लक्ष्मी पंडित को स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और वो आधुनिक भारत की पहली महिला मंत्री बनी।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसी समय उन्होंने पंचायत राज विधेयक का मार्गदर्शन किया और संविधि पुस्तिका पर यह विधेयक रखा गया। लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन युद्ध में घिर गया था। उसने भारत की जनता और भारत के नेताओं से सलाह किए बिना ही भारत को युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया। इसके विरोध में सभी भारतीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिए। नाराज अंग्रेज सरकार ने सभी को बंदी बना लिया। विजय लक्ष्मी पंडित भी उनमें शामिल थी।

0: इसी बीच सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया। एक बार फिर गिरफ्तारियां हुई। विजय लक्ष्मी पंडित को भी जेल में डाल दिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब होने पर सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उनके पति श्री रणजीत पंडित भी एक अलग जेल में बंद थे। हृदय रोग के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। परंतु बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद सन 1944 में उनका निधन हो गया। विजय लक्ष्मी जी अकेली पड़ गईं। उस समय के संयुक्त परिवार के नियमों के अनुसार उन्हें पुत्र न होने के कारण पारिवारिक संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के इस दर्द को उन्होंने समझा और इसके लिए लंबा संघर्ष भी किया, पर उस कठिनाई में भी उन्होंने देश सेवा का काम नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उन्होंने वहां जाकर सेवा कार्य आरंभ किया। अनाथ बच्चों के लिए बाल कोष की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस निधि के लिए धन जुटाया। उनके इस काम से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए।
1: स्वरूप
2: बापू,
1: आज भारत को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखे। ब्रिटिश सरकार के गलत प्रचार के कारण भारत की सही तस्वीर उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये काम संभालो।
2: जी बापू।
0: और उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने का काम संभाला। आगे चलकर यही उनका मुख्य काम और उनकी पहचान बन गया।
2: अच्छा।
0: द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, पर ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना आरंभ कर दिया, जो अपने तरीके से देश के स्वाधीनता संग्राम में योगदान कर रहे थे। बस भारत की जनता भड़क गई।
3: आजाद हिंद फौज के सैनिकों को
4: मुक्त करो,
5: मुक्त करो।
3: आजाद हिंद फौज के सैनिकों को
5: मुक्त करो,
4: मुक्त करो।
0: देश की ओर से भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली जैसे नामी वकीलों ने पक्ष संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजय लक्ष्मी जी ने भारत का पक्ष रखा। आखिर ब्रिटिश सरकार को आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ना ही पड़ा। फिर 1946 में एक बार फिर विजय लक्ष्मी जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और फिर से अपना पुराना मंत्रालय संभालने लगी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। इसके साथ ही उनकी देश सेवा और भी बढ़ गई, पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवश्यकता थी। गांधी जी की सलाह पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेता बनाकर न्यूयॉर्क भेजा गया। उसके बाद उन्हें रूस और फिर अमेरिका और इंग्लैंड का राजदूत बनाया गया।
2: अच्छा।
0: वो विश्व की पहली महिला राजदूत बनी। जब वो अपना कार्यकाल समाप्त कर भारत लौटी तो 1952 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने की उनकी जिम्मेदारी बनी रही। और फिर 1953 का वो दिन आया जो भारत के लिए गौरव से भरा था। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया।
6: मैं भारत के लिए किसी भी पक्षपात की अपेक्षा नहीं करती और न ही दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय प्रवासियों के लिए कोई उपकार। मैं चार्टर के प्रमाणित उल्लंघन पर इस महासभा के पंच निर्णय की मांग करती हूँ।
0: वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए पहली महिला और एकमात्र भारतीय सदस्य थी। उन्होंने भारतीय महिला की शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद वो इंग्लैंड और स्पेन की राजदूत भी बनी।
7: अच्छा?
0: हाँ, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाला। फिर देश को भारी क्षति हुई।
7: क्या?
0: जवाहरलाल जी का निधन हो गया। विजयलक्ष्मी जी उनकी सीट के लिए हुए उपचुनाव में विजयी होकर लोकसभा पहुंची। इस तरह वे स्वतंत्रता के बाद भी देश सेवा में लगी रहीं। पर व्यक्तिगत थकान के कारण उन्होंने लोकसभा से त्याग पत्र दे दिया और देहरादून में रहने लगी। वहीं 1 दिसंबर 1990 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हर वर्ग, हर उम्र और हर प्रांत की महिलाओं की बराबर भागीदारी थी। स्वतंत्र भारत सदैव उन महिला क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित एक ऐसी क्रांतिकारी थी।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग।

0: हिंदुस्तान हमारा, स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण अपने रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।

0: ये प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में विश्व योग और संगीत दिवस के अवसर पर।
1: और आपकी तालियों के साथ एक बार पुनः इन कलाकारों का स्वागत हो। और बस तलीन त्रिवेदी युवा कलाकार तबले पर संगत कर रहे हैं। अपने नाना जी से इन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और अब अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और यह मंचम पुनः प्रदक्षिणा जी आपको सौंप रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं प्रदक्षिणा भट्ट आज आप सभी के समक्ष राग यमन कल्याण प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने हमें बार बार चेताया है कि हम मनुष्य हैं। भगवान ने हमें विचार शक्ति इसलिए दी है कि हम उसका यथा योग्य इस्तेमाल करें, इसलिए नहीं कि जिस प्रकार पशुओं को चाहे जो कोई हांक ले जाता है उसी प्रकार कोई भी जोर शोर के साथ कुछ कहने लगे और हम चुपचाप उसके पीछे हो लें। इसीलिए हमें अपने अतीत और वर्तमान का सही मूल्यांकन कर उन्हीं के आधार पे भविष्य की योजना बनानी चाहिए। हमें केवल भावनाओं के द्वारा परिचालित नहीं होना चाहिए।
1: स्वामी जी के अनुसार सबसे आवश्यक बात है चरित्र। चरित्र के बिना कोई भी महान कार्य साध्य नहीं होगा। भारत का उत्थान चरित्रवान भारतीयों के द्वारा ही संभव होगा। इसके लिए हमें कई बलिदान भी देने होंगे। इस प्रकार के कार्यों के अध्ययन के लिए विवेकानंद साहित्य अत्यंत मार्गदर्शक सिद्ध होगा। वो हमें भारतीय संस्कृति एवं भारतीय आदर्शों की महानता का परिचय करा देगा। वे कहते हैं,
2: तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। ब्राह्मणेतर जातियों से मैं चाहता हूं ठहरो, जल्दी मत करो। ब्राह्मणों से लड़ने का मौका मिलते ही उसका उपयोग न करो, क्योंकि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हो। समाचार पत्रों से कहा और इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय न करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते न रहकर जो कि पाप है उससे लड़े। ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो, बस तभी तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध होगा।
0: उन्होंने हमें बार बार फटकारा है, मुर्दा कहा है, ममी कहा है, ताकि हम उज्जीवित हो उठें।
2: तुम ऊंची जात वाले क्या जीवित हो? तुम लोग हो 10,000 वर्ष पीछे के ममी, जिन्हें सचल शमशान कहकर तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने घृणा की है। भारत में जो कुछ वर्तमान जीवन है वो उन्हीं में है, और सचल शमशान हो तुम लोग। तुम लोगों की अस्थिमय अंगुलियों में पूर्व पुरुषों के संचित कुछ अमूल्य रत्नांगुलियां हैं। तुम्हारे दुर्गंधित शरीरों को भेंटती हुई पूर्व काल की बहुत सी रत्न पेटिकाएं सुरक्षित हैं। उन्हें उत्तराधिकारियों को दो, जितने शीघ्र दे सको दे दो। तुम शून्य में विलीन हो जाओ और फिर एक नवीन भारत निकल पड़े।
1: स्वामी जी भविष्य दृष्टा थे, ये उन्होंने समझ लिया था।
2: ये निम्न श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर होने वाले तुम लोगों के अत्याचारों को समझ लेंगे, तब उनकी फूंक से ही तुम लोग उड़ जाओगे। उन्हीं ने तुम्हें सभ्य बनाया है, उस समय वे ही सब कुछ मिटा देंगे। इसलिए कहता हूं, इन सब निम्न जाति के लोगों को विद्यादान ज्ञान दान देकर इन्हें नींद से जगाओ, वे अवश्य जागेंगे। तब वे भी तुम लोगों के लिए उपकरों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हर एक अभिजात्य वर्ग का कर्तव्य है कि अपने कुलीन तंत्र की कब्र वो आप ही खोदे, और जितना शीघ्र इसे कर सके उतना ही अच्छा है। जितनी ही वो देर करेगा उतनी ही वो सड़ेगी और उसकी मृत्यु भी उतनी भयंकर होगी। अतः ये ब्राह्मण जाति का कर्तव्य है कि भारत की दूसरी सब जातियों के उद्धार की चेष्टा करे।
0: उन्हें स्वार्थपरता से घृणा थी। स्वार्थी लोगों को स्वामी जी बार बार चेताया करते थे कि वे निस्वार्थ बने, सबको साथ लेकर आगे बढ़े।
2: जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघाती समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को स्वयं की तरह देखना, क्या यह वाक्य केवल पोथी में निबद्ध रहने के लिए है? लोग गरीबों को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकते, वे फिर मुक्ति क्या दे सकते हैं? दूसरों के श्वास प्रश्वासों से जो अपवित्र बन जाते हैं, वे फिर दूसरों को क्या पवित्र बना सकते हैं? अस्पृश्यता एक प्रकार की मानसिक व्याधि है, उससे सावधान रहना।
1: सभी भारतीय हमारे अपने हैं, उन्हें भी जीने का हक चाहिए।
2: उठो और अपना पौरुष प्रकट करो, अपना ब्राह्मणत्व दीप्त करो, प्रभु भाव से नहीं, अंधविश्वासों और पूर्व पश्चिम के प्रपंचों के सहारे पनपने वाले विकृत घातक अहम भाव से नहीं, बल्कि सेवक की भावना के साथ दूसरों को ऊपर उठाकर। धन विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने में समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधा रहनी चाहिए। सभी विषयों में स्वाधीनता यानी मुक्ति की ओर अग्रसर होना ही पुरुषार्थ है। जो सामाजिक नियम इस स्वाधीनता के स्फुरण में बाधा डालते हैं वे ही अहित कर्म हैं, और ऐसा करना चाहिए जिससे वे जल्द नाश हो जाएं। जिन नियमों के द्वारा सब जीव स्वाधीनता की ओर बढ़ सकें उन्हीं की पुष्टि करनी चाहिए।
0: पहले श्रेष्ठ वस्तु का दान करो, बचे हुए को अपना कहो। गण देवता की पूजा ही सच्ची पूजा है।
2: प्रत्येक वस्तु का अग्रांश दीनों को देना चाहिए, अवशिष्ट भाग पर ही हमारा अधिकार है। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। वर्शिप ही इस संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थक है, अंग्रेजी के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं ये ही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं को हम देख नहीं पाते उनके पीछे तो हम बेकार दौड़े, और जिस विराट को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही ना करें।
1: स्वामी जी कहते हैं हर जीव में ईश्वर का अंश है, उसकी अवहेलना मत करो। मानव देह ही सबसे सुंदर सृष्टि है, उसी में ईश्वर का वास है।
2: अतएव हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं। जो जीवों पर दया करता है वही व्यक्ति ईश्वर की सेवा कर रहा है। यदि तुम अपने भाई मनुष्य की, नर ईश्वर की उपासना नहीं करते तो उस ईश्वर की कल्पना कैसे कर सकोगे जो अव्यक्त है? किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है।
0: ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप विद्यमान है, प्रेम दया भक्ति और सेवा यही बीज मंत्र हैं।
2: अपने तन मन और वाणी को जगद्धिताय अर्पित करो। तुमने पढ़ा है मात्र देव भव पितृ देवो भव, अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो। परंतु मैं कहता हूं दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव, गरीब निरक्षर मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो, इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो। मैं अच्छी तरह जानता हूं भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों की बलि चाहती है। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है।
1: उन्हें युवकों से बहुत आशा थी। भविष्य का भारत गढ़ने के लिए उन्होंने उन्हीं का आह्वान किया था।
0: अपने को दुर्बल मत समझो, मत सोचो हम क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो।
2: गांव गांव तथा घर घर में जाकर लोकहित एवं ऐसे कार्यों में आत्मनियोग करो जिससे कि जगत का कल्याण हो सके। चाहे अपने को नरक में क्यों ना जाना पड़े, परंतु दूसरों की मुक्ति हो। अरे मृत्यु जब अवश्यम भावी है तो ईंट पत्थरों की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना क्या अच्छा नहीं? तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी ये देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी।
1: निस्वार्थ सेवा करना यही मूल मंत्र है। भगवान को ढूंढ रहे हो? आओ मैं बताता हूं वो कहां है।
2: केवल वही व्यक्ति सब की अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वो भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो? ईश्वर को कहां ढूंढने चले हो? ये सब गरीब दुखी निर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं है? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते? गंगा तट पर कुआं खोदने क्यों जाते हो? प्रेम की असाध्य साधनी शक्ति पर विश्वास करो।
0: अपना धर्म समझकर कर्म करो, निष्काम कर्म में ही मुक्ति है।
2: हम धन्य हैं जो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनके लिए कर्म करें, उनको सहायता देने के लिए नहीं। इस सहायता शब्द को मन से सदा के लिए निकाल दो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। ये सोचना कि तुम सहायता कर सकते हो महा अधर्म है, घोर ईश निंदा है। केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो। दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए। अपनों की मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारी मुक्ति के माध्यम है, ताकि हम रोगी पागल कोढ़ी पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें। अपने को भूल जाओ, आस्तिक हो या नास्तिक, प्रत्येक के लिए यही प्रथम पाठ है। जब तुम सुख की कामना समाज के लिए त्याग सकोगे तब तुम भगवान को पा सकोगे।
1: विवेकानंद जी ने लिखा है, क्या तुम अंधेरे में भटक रहे हो? प्रार्थना करो, प्रकाश दिख जाएगा।
2: आओ हम सब प्रार्थना करें। हे कृपामय ज्योति, पथ प्रदर्शन करो और अंधकार में से एक किरण दिखाई देगी। पथ प्रदर्शक कोई हाथ आगे बढ़ जाएगा। जो दारिद्र पुरोहित प्रपंच तथा प्रबलों के अत्याचारों से पीड़ित हैं, प्रत्येक आदमी दिन रात प्रार्थना करें, मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा उन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना पसंद करता हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक हूं और न सिद्ध पुरुष हूं। मैं निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। ये 20 करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और मूर्खता के दलदल में फंसे हैं, उनके लिए किसका हृदय रोता है? कौन उनके दुख में दुखी है? ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं, ये ही तुम्हारे इष्ट बने। निरंतर इन्हीं के लिए सोचो, इन्हीं के लिए काम करो, इन्हीं के लिए निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएगा।
0: संवेदनशील बनो, दूसरों के दुख के बारे में सोचो, अपना दुख भुलाने के लिए दूसरे के दुखों को दूर करने की कोशिश करो।
2: बड़े काम करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहला है हृदय की अनुभव शक्ति। क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम ये सब सोचकर बेचैन हो जाते? क्या इस भावना ने तुम्हें निद्राहीन कर दिया है? क्या ये भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या ये भावना तुम्हारे रक्त के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया? क्या ईश्वर की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि हां, तो जानो तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हां, केवल पहली ही सीढ़ी पर। क्या इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है? क्या लोगों की भर्त्सना ना कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? क्या स्वदेश वासियों को उनकी इस जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है?
1: थको मत, हारो मत, बैठो मत, चलते चलो। कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो।
2: किंतु इतने से ही पूरा ना होगा। क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो? यदि सारी दुनिया हाथ में नंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? फिर भी तुम उसके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे? क्या तुम में ऐसी दृढ़ता है? यदि तुम में ये तीन बातें हैं, तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है, जिससे उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्य में परिणित हो जाए, उसी के लिए प्रयत्न करो। मेरे साहसी महान सदाशय बच्चों, काम में जी जान से लग जाओ। नाम, यश अथवा अन्य तुच्छ विषयों के लिए पीछे मत देखो। स्वार्थ को बिल्कुल त्याग दो और कार्य करो। आगे बढ़ो। हमें अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तभी महान कार्य संपन्न होगा।
0: पुरुषार्थ की जरूरत है। बाधाएं तो आएंगी ही, उसे लांघना ही पुरुषार्थ है। स्वामी जी लिखते हैं,
2: मेरे बच्चे, मैं जो चाहता हूं वो है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो। बल, पुरुषार्थ, क्षात्र वीर्य और ब्रह्म तेज, आज्ञा पालन के गुण का अनुशीलन करो, लेकिन अपने धर्म विश्वास को न खो। गुरुजनों के अधीन हुए बिना कभी भी शक्ति केंद्रीभूत नहीं हो सकती, और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता। जो कुछ असत्य है उसे पास न फटकने दो, सत्य पर डटे रहो। बस तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे, पर सफल हम अवश्य होंगे। इस तरह काम करो कि मानो तुम में से हर एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा है।
1: स्वामी जी हमेशा आशा की वाणी सुनाते रहे, निराशा ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं।
2: नीति परायण तथा साहसी बनो, अंतःकरण पूर्ण दया शुद्ध रहना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो, प्राणों के लिए भी कभी न डरो। धार्मिक मत मतांतरों को लेकर व्यर्थ में माथा पच्ची मत करो, कायर लोग ही पाप आचरण करते हैं, वीर पुरुष कभी पाप अनुष्ठान नहीं करते, यहां तक कि कभी वे मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। इन दो चीजों से बचे रहना, क्षमता प्रियता और ईर्ष्या, सदा आत्मविश्वास का अभ्यास करना।
0: आशा, आशा और आशा, अच्छे की आशा, भारत को गौरवान्वित देखने की आशा, इसी आशा के सहारे वे कार्य करते गए। उन्होंने कहा था,
2: फिर से काल चक्र घूम कर आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति प्रवाह निस्तृत हो रहा है जो शीघ्र ही समस्त जगत को प्लावित कर देगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा गरीब लोग सुखी होंगे। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वो जड़ की शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, वो भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वो केवल सो रही है। अतः यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल करना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की।
1: स्वामी जी को भारत की भावी पीढ़ियों पर विश्वास था। उन्होंने उन्हें बार बार उसी अग्नि मंत्र में दीक्षित करना चाहा है, उठो, जागो, जागो।
2: पहले आदमी, मनुष्य उत्पन्न करो। हमें अभी मनुष्यों की आवश्यकता है, और बिना श्रद्धा के मनुष्य कैसे बन सकते हैं। उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: वर्ष

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बज चुके हैं। रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण सेवा का सफर आज यहीं तक। कल प्रातः फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति। जय हिंद।